एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 41 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। ये गणेश वंदना सुनिए उदित नारायण के स्वर में।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। लीजिए सुनिए चंद्रकांत गंधर्व के स्वर में ये भक्ति वंदना।

0: इसी भक्ति गीत के साथ हमारा आज का आस्था के स्वर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: आस्था के स्वर।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
1: यह तो हम सभी ने बचपन से ही पढ़ा हुआ है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य इस समाज की एक इकाई है। मनुष्य समाज में परिवार के समूह में निवास करता है और इस परिवार की बुनियाद है रिश्ते। यह रिश्ते पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन कई तरह के होते हैं और हर रिश्ते की अपनी एक अलग ही खूबसूरती होती है। लेकिन इसके साथ ही साथ हर रिश्ता किसी न किसी मर्यादा में बंधा होता है और मर्यादा का यह बंधन उन रिश्तों को और भी अधिक परिष्कृत करता है। लेकिन रिश्ते सिर्फ खून के ही नहीं होते। इन रिश्तों के अलावा भी अनेकों ऐसे रिश्ते हैं जिनका महत्व कभी कम नहीं होता, जैसे पड़ोसियों का रिश्ता। बाइबल में कहा गया है कि अपने पड़ोसी से अपने समान ही प्रेम करना चाहिए। पड़ोसियों का रिश्ता इस नज़रिए से भी अहम है कि अगर आप पर अचानक कभी कोई मुसीबत आ जाती है और आपके सगे संबंधी कहीं और रहते हैं तो एक पड़ोसी आपके काम आता है। इसी तरह एक रिश्ता मित्रता का भी होता है जो कि अत्यंत पवित्र होता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम माता जानकी की खोज करते हुए अपने अनन्य भक्त महावीर हनुमान से मिलते हैं तब वो

0: उनकी मुलाकात वानर राज सुग्रीव से करवाते हैं। जब श्रीराम और सुग्रीव एक दूसरे की सहायता के लिए उद्धत होते हैं तो सर्वप्रथम हनुमान जी उन्हें अग्नि को साक्षी मान मित्रता के बंधन में बांध देते हैं। इसी तरह श्री कृष्ण सुदामा का संबंध भी मित्रता का अनुपम उदाहरण है। जहाँ त्रैलोक्य के स्वामी अपने निर्धन मित्र को सिंहासन पर बैठाकर उसके पैर पखारते हैं, उसके लाए चावल का भोग प्रेम पूर्वक लगा उसकी दरिद्रता हर लेते हैं, और जब बात मित्रता की हो रही हो तो उसमें कर्ण दुर्योधन का जिक्र ना आए यह संभव ही नहीं है। महाभारत के निर्णायक युद्ध के पहले ही अंगराज कर्ण को यह पता चल जाता है कि अर्जुन सहित सभी पांडव उनके अपने भाई हैं, किंतु उसके उपरांत भी कर्ण अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करते हुए वह महान धनुर्धर वीर गति को प्राप्त हो इस संसार में मित्रता के पवित्र रिश्ते को अमर कर जाता है। इसी तरह गुरु शिष्य के रिश्ते का भी समाज में बड़ा मूल्य है। वो चाहे आरुणि की गुरु भक्ति हो या चाहे स्वामी विवेकानंद का अपने गुरु के प्रति प्रेम, और इसी तरह के अनेकों उदाहरण हैं जो गुरु शिष्य परंपरा को मूर्धन्य बनाते हैं। ठीक ऐसे ही एक अत्यंत पवित्र रिश्ता है भक्त और भगवान का रिश्ता। यह एक ऐसा रिश्ता है जो अन्य सभी पावन रिश्तों को स्वयं में समेटे हुए है। कहा भी गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो स्पष्ट है कि ईश्वर प्रेम के वशीभूत हैं। एक भक्त अपने भगवान को जिस रूप में याद करता है ईश्वर उसे वैसे ही प्राप्त होते हैं। रिश्तों के महत्व को तो आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है, क्योंकि ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब यह देखा गया है कि जिन्हें अपनों का प्यार मिलता है, माता पिता का वात्सल्य, भाई बहन का स्नेह, पति पत्नी बच्चों का प्यार, ऐसे लोग अपने बुरे दौर को आसानी से निकाल लेते हैं। किसी तन्हा व्यक्ति के मुकाबले उनके बुरे हालातों में टूट जाने या अवसाद में जाने के कम मामले देखे गए हैं, और अगर कोई अवसादग्रस्त हो भी जाए तो अपने रिश्तों के बल पर वो शीघ्रतापूर्वक उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर भी आ जाते हैं। अतः मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि रिश्ते अनमोल होते हैं और हमें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख और वाचन अमित मिश्रा का था। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का ये वचन सुनकर कि शूरवीर तो युद्ध में करनी कर दिखाते हैं, मात्र कहकर डींग नहीं मारते, ऋषिवर ने अपना फरसा संभाल लिया। बोले, अब लोग उन्हें दोष ना दें, ये मूर्ख बालक मारे जाने के ही योग्य है। बात बढ़ते देख मुनि विश्वामित्र ने अपने शिष्य के अपराध की क्षमा याचना की। कहा, बालकों के दोष गुण को साधुजन नहीं गिनते। मन ही मन वो हंसे कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। सर्वत्र विजयी होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्हें

कदाचित ये नहीं मालूम कि ये दो कुमार फौलाद की खांड हैं, ईख की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। परशुराम की धमकियों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर कटाक्ष किया कि माता पिता के ऋण तो मुनिवर चुका ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अब हिसाब करने के लिए यदि किसी को बुला लें तो वो थैली खोल दें। मुनि की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचन को आहुति समान जानकर श्री राम ने अनुज को शांत होने का इंगित किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा।
1: किसान भाई बहनों ने राम राम। भाई बहनों ने आज की कृषि चर्चा में हम बात करांगा एक ऐसी फसल का बारा में जे की बाजार कीमत कदी कम नहीं होती है, साथ साथ एक उत्पादन कम खर्चीलो भी छे, नम्रता का स्वास्थ्य कल्याण लाभदायक भी। भाई बहन होनी वो फसल छे क्लस्टर बीन यानी ग्वारफली की। ग्वारफली की खेती किना प्रकार से करनु चाहिए, बीज न की मात्रा, खाद, उर्वरक न एक ही देखभाल से लेकर न एक बाजार भाव तक की सभी जानकारी की बात करांगा हम आज की कृषि चर्चा में। वाचक स्वच्छ प्रणीता जैन को। भाई बहन होनी क्लस्टर बीन यानी ग्वारफली की फसल ख हल्की जमीन में आसानी से लगायो जा सकज। इन्हीं फसल ख पानी की भी कम आवश्यकता रहेज, न पशु भी एक नुकसान नहीं पहुँचाता है। जिना क्षेत्र में कम पानी बसज जैसे ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, इनमें ई फसल बहुतायत में ली जाएज। न जहाँ तक बात करा हमारा निमाड़ क्षेत्र की, तो हमारा यहाँ भी हल्की पथरीली या फिर जंगली क्ष में कम पानी में भी इन्हीं फसल ख लियो जा सकज। ग्वारफली की बुआई को मुख्य समय जून का आखिरी सप्ताह से लेकर न जुलाई का दूसरा सप्ताह तक रहेज। न गर्मी में इन्हीं फसल का फरवरी का दूसरा सप्ताह से लेकर न मार्च का दूसरा सप्ताह तक लगायो जा सकज। ग्वारफली एक लाभकारी फसल छे जेख निमाड़ क्षेत्र में सामान्यतया उत्पादन नहीं कियो जाएज। तो यदि हमारा किसान भाई ई फसल इन्हीं बार बोनू चाहता हो तो सबसे पहले इनका बीज न की व्यवस्था करी।

0: इनकी उन्नत किस्म नंबर 6 HG 563, HG 365 ना ऊंची बढ़ने वाली किस्म नंबर 6 RCD 1033 और RCD 1066। ग्वारफली की खेती का लैंड बहुत ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता नहीं रहती है। खेत की जुताई का बाद 2 बोरी सुपरफास्फेट, 15 किलो यूरिया न 15 किलो पोटाश प्रति एकड़ की आवश्यकता रहे। एकामा अलग सी अन्य खाद उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि ई दलहनी फसल छे न ई मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का बढ़ावा जस सही। इन्हीं फसल में कीट व्याधि न भी नहीं का बराबर लगज, पर कभी कभी ज़्यादा जल भराव का कारण फफूंदी लगी सकज। एकालेंड साफ पाउडर 2 ग्राम प्रति एकड़ का हिसाब से बीजोपचार करने का बाद एक ही बुआई करनी चाहिए। एक ही बुआई चना या सोयाबीन की बुआई की तरह ही की जाए। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर न पौधा से पौधा की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। न बीज दर 2.5 एकड़ पर 25 किलो रखी सकांज। न खेत में जल निकासी की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। ग्वारफली में कोई व्याधि नहीं लगती है, पर कभी कभी फूल आने से पहले रस चूसक कीट या माहू लगी सकज, तब रस चूसक कीट की दवा डालनू पड़ज। इन्हीं फसल को बाजार भाव सदा ऊंचो रहे। ग्वारफली को उपयोग पेट्रोल ईंधन का परिष्कृत करने में लगज। दवाई न का खोल भी ग्वारफली का गमसी बनज। कपड़ा उद्योग में न अन्य उद्योग न भी एक ही मांग अधिक रहेज। यदि हमारा किसान भाई इन्हीं फसल का लेवज तो बाजार में एक ही मांग न एक ही कीमत अच्छी मिलेगी। इन्हीं फसल का वसा तो हम गर्मी में भी ले सकांज, पर बरसात का दिन में खेत न जल भराव नहीं होना चाहिए। न कम वर्षा या अनावृष्टि समय फूल आने से पहले न फली बनता समय पानी की आवश्यकता रहे। एक अलावा कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा किसान नख ग्वारफली की खेती ओका फायदा न बीज उपलब्ध कराने को प्रयास भी करी रही। तो हमारा किसान भाई जरूर से ग्वारफली की खेती करने का बारे में सोच, न एक ही खेती करी कर कम लागत में अधिक मुनाफो भी कमाव। तो आज की कृषि चर्चा में बस इतनोज। राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। आज का विषय था ग्वारफली की खेती। वाचक स्वर प्रणीता जैन का था। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 7 बजे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुने भेंटवार्ता, रेल सेवा में नारी शक्ति की भूमिका। इस विषय पर हमने बात की है रेलवे गार्ड अंकिता सूर्यवंशी से। आपसे बात की है दीपमाला शिंदे ने। सुबह 7:20 पर होगा हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे करिश्मा कपूर, सलमान खान, सनी देओल और तब्बू अभिनीत फिल्म जीत।

सुबह 8:15 और सुबह 10:05 पर सुनिएगा निमाड़ी लोकगीत। सुबह 8:30 पर होगा आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीते गीत। सुबह 9 से 10 तक राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।

सुबह 10:35 पर नारी जगत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वार्ता जल एवं जल स्रोतों का संरक्षण। वार्ताकार होंगी बीना शाह। साथ ही सुनिएगा चर्चा विश्व नेत्रदान दिवस पर और आज की रेसिपी होगी नींबू पुदीना की शिकंजी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विवरण। हमारी शाम की सभा में शाम 5:30 पर सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग। शाम 6 बजे होगा युवा वाणी कार्यक्रम और शाम 6:30 पर आने लीजिएगा फिल्म संगीत का।

शाम 7:21 पर सुनिएगा खेती गृहस्थी कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे आप सुन सकते हैं सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के संबंध में विभिन्न विषयों पर NSD आकाशवाणी द्वारा एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 8:35 से राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे और रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

आज की ताज़ा खबर में प्रस्तुत है आज प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां। खंडवा जिले के सभी विकास खंडों नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 14 जून के बीच जन कल्याण शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र लोगों की पहचान कर पंजीयन किया जाएगा। शिविर में आयुष्मान भारत, आयुष्मान वय वंदना, पीएम सूर्य घर, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाएं शामिल रहेगी।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर जिला अस्पताल और जिले के स्वास्थ्य केंद्रों पर मंगलवार को शिविर आयोजित किए गए। स्वास्थ्य संस्थाओं में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष ANC प्रसव पूर्व जांच शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा 1015 से अधिक गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया गया।

नवीन शिक्षा सत्र 16 जून से प्रारंभ हो रहा है। बूंदी सांदीपनी विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, इनकी पूर्ति अतिथि शिक्षकों की भर्ती से की जाएगी। नियमित शिक्षकों की भर्ती शासन स्तर पर होगी।

एक्सपेरिमेंट लर्निंग प्रोग्राम के तहत खाद्य विभाग ने युवा प्रशिक्षकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा गेहूं के उपार्जन और भंडारण से जुड़ी प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण सेंट्रल वेयरहाउस खंडवा कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया।

0: अब कुछ खेल समाचार। इंडिया ए की टीम ने श्रीलंका ए को रोमांचक मुकाबले में 8 रन से हराकर ट्राई सीरीज की शानदार शुरुआत की। दाम्बुल के मैदान पर भारतीय टीम की ओर से 278 रन का लक्ष्य दिया गया। श्रीलंका की टीम 48.5 ओवर में 269 रन पर सिमट गई। भारतीय टीम ने 8 रनों से जीत दर्ज की। अब एक नज़र मौसम के हाल पर। कल दिन का अधिकतम तापमान रहा 40.1 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान रहा 25.0 डिग्री सेल्सियस। ये थी आज प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां। समाचार संकलन पूजा पाटीदार का था।
1: आज की ताजा खबर।

0: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 7 बजे हैं। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुने भेंटवार्ता, रेल सेवा में नारी शक्ति की भूमिका, इस विषय पर आज हमने बात की है रेलवे गार्ड अंकिता सूर्यवंशी से। आपसे बात की है दीपमाला शिंदे ने। नमस्कार श्रोताओं, आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं और उन क्षेत्रों में भी अच्छा खासा दखल रख रही हैं जो पहले पुरुष प्रधान माने जाते थे। ऐसी सफलता की कहानी लिखी है हमारी आज की मेहमान ने। जानते हैं आज हमारे साथ में कौन है। आप सर्वप्रथम अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दीजिए।
1: आप सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम पूर्ण नमस्कार। मेरा नाम अंकिता सूर्यवंशी है और मैं खंडवा के निवासी हूँ। वर्तमान में मैं मध्य रेल के भुसावल मंडल में खंडवा स्टेशन पर बतौर मालगाड़ी प्रबंधक कार्यरत हूँ।
0: अंकिता जी, जैसे आपने बताया कि आप बतौर मालगाड़ी प्रबंधक खंडवा में पोस्टेड हैं, हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि ये जॉब थोड़ी चैलेंजिंग होती है।
1: बिल्कुल।
0: आपने कैसे तैयारी, मतलब आपका यही लक्ष्य था पहले से कि मुझे रेल मालगाड़ी में रेलवे?
1: अक्सर सब मुझसे ये सवाल जरूर पूछते हैं, तो बड़ी ईमानदारी से मैं कहती हूँ कि लक्ष्य तो नहीं ही था, परंतु कहते हैं ना, नियति जो चाहती है वो होकर रहता है, तो बस वैसे ही कुछ हुआ था। तो मैं, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आती हूँ, जब रेलवे में आने से पहले कह लीजिए कि मुझे बहुत आभास इन सब बातों का नहीं था, कौन से पद होते हैं, क्या कार्य की प्रकृति होती है। मालगाड़ी प्रबंधक बनना मेरा सपना तो नहीं था, लेकिन जब अब मैं आ गई हूँ तो निश्चित ही मुझे बड़ा हर्ष है इस बात का। रही बात तैयारी की मैडम, तो 2015 में RRB का नोटिफिकेशन आया था, उसको क्वालिफाई करके उसके एग्जाम देकर फिर मैं इस पद पर चयनित हुई हूँ।
0: आपकी जो शिक्षा है, थोड़ा सा उस बारे में हमारे विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में मेरी जो स्कूली शिक्षा थी, शुरुआती बालाघाट जिला मध्य प्रदेश से हुई है, केंद्रीय विद्यालय की मैं छात्रा रही हूँ। उसके पश्चात AIEEE के एग्जाम दी, इसको क्वालिफाई करके मैं इंजीनियरिंग, मैंने अपनी पुणे यूनिवर्सिटी से की है। पुणे यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने के बाद गेट का एग्जाम दिया, वहां से गेट क्वालिफाई करके मैंने MTech किया और फिर ये RRB का एग्जाम देके मैं रेलवे में आई हूँ।
0: जी, थोड़ा सा पारिवारिक पृष्ठभूमि के भी बारे में बताइए हमारे श्रोताओं।
1: पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बड़ी अच्छी है, क्या ही कह लो। ऐसा था कि बहुत छोटी उम्र में इकलौती बेटी थी मैं अपने माता पिता की, और जब मैं 7 वर्ष की थी तभी मेरे पिताजी का एक रोड एक्सीडेंट में देवलोक गमन हो गया। उसके बाद क्योंकि मेरी, हम एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते हैं, महिलाओं का उस वक्त काम करना इतना अच्छा नहीं माना जाता था, परंतु मेरे फादर के डेथ के बाद मेरी मदर ने काम करना शुरू किया, उन्होंने स्कूल में अध्यापन का कार्य शुरू किया और

0: और उसके चलते ही उन्होंने बड़ी कष्टों का सामना करते हुए मुझे पढ़ाया यहाँ पर। मैं क्योंकि अब वो इस संसार में नहीं है, मेरी मम्मी भी कोविड वेव में वो नहीं रही,
1: जी
0: उनसे उनका साथ छूट गया। उन दिनों उन्होंने बहुत कम वेतन का एक जॉब किया, एक छोटे से स्कूल में पढ़ाया, 300 रुपये। हालांकि मेरी माताजी पोस्ट ग्रेजुएट थी और काफ़ी वेल एजुकेटेड भी थी, तो बहुत कम वेतन लेकर, 300 रुपये महीना का सैलरी उनका था उस वक्त, तो उसको लेकर के उन्होंने मुझे एक बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालय में, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी थी, उन्हें ऐसा लगा कि बेटी है इकलौती, उसे तो मुझे किसी भी तरह से, शादी तो तभी होगी जब पढ़ाई अच्छी
1: जी
0: होगी। उनका बहुत, मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझसे कई गुना ज़्यादा एम्बिशियस मेरी मम्मी थी।
1: जी
0: उन्होंने ये भी कहा था कि जब शादी मैं अपनी बेटी की उसी वक्त उसी शर्त पे करूँगी जब वो खुद कमाने लगेगी, वरना मैं उसकी शादी भी नहीं करूँगी।
1: जी तो आपका जो बचपन है कठिनाइयों से गुजरा
0: बहुत
1: है, तो
0: कठिनाइयों से, फिर जब उन्होंने, मैडम वो छोटा सा उनका सैलरी था, जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उसकी फीस लगभग उसकी दुगनी, 650, ये मैं बात आपको बता रही हूँ सन 2001 की, जब मैं स्टैंडर्ड 5th में आई थी यहाँ पर, अपने बालाघाट आई थी। पर होता है ना कि आपके बस जहाँ चाह है वहाँ राह है
1: जी
0: वाली
1: बिल्कुल
0: बात है,
1: बिल्कुल
0: तो बहुत से प्लस माइनसेस करके, थोड़ा फीस कंसेशन लेकर, अन्य बहुत से कुछ हेल्प लेकर वगैरह, लेकिन हमने ये सोच, मेरी माता का ये कहना था कि पढ़ाई का खर्च हम स्वयं वहन करेंगे, मैं कभी ये नहीं सुन पाऊंगी कि मैंने अपने जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाई और मैं अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाई। फिर बहुत सी स्कॉलरशिप्स में मुझे प्राप्त हुई, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्कॉलरशिप मुझे मिली, तो ऐसा है कि एक कदम कदम बढ़ता गया, समय बीतता गया, चीज़ें बनती गई, और एक बहुत अच्छा,
1: मतलब आपने जो सफलता प्राप्त की है आपने उसके लिए काफी संघर्ष किया है
0: बहुत
1: मतलब।
0: संघर्ष किया मैडम। और संघर्षों में अब तो मैं, खैर उन दिनों वो संघर्ष था, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अचीवमेंट है।
1: बिल्कुल सही बात है। आप रेलवे में गार्ड हैं, रेलवे की जो नौकरी होती है वो काफी चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसमें
0: बिल्कुल
1: घंटों का भी कुछ पता नहीं होता है कि कितने घंटे तक आपको नौकरी करना है।
0: जी, जैसा मैंने बताया ये तो मेरे झोली में आ गिरी, लेकिन अब लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती। कारण कई हैं, चैलेंजिंग तो बिल्कुल है, क्योंकि मैं एक फ्रंट एंड रेल एम्प्लॉई हूँ, तो जाहिर सी बात है ट्रैक पर जाना है, गाड़ी को देखना है, बतौर मालगाड़ी प्रबंधक मेरे दायित्वों में सबसे पहले समय पालन और संरक्षा पूर्ण गाड़ी को चलाना, ये मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। तो उसके चलते क्या हुआ कि जो काम मुझे करना होता है उसके लिए मैं बड़ा एक्टिव होती हूँ, और साथ में हमें दूर से देख के ऐसा लगता है, आप जैसे अभी आप मुझसे सवाल कर रही हैं, अमूमन ऐसे बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मैडम अकेले जंगल में गाड़ी खड़ी हो जाएगी, फिर आपको डर नहीं लगता? अब ऐसे जंगल जैसी तो कोई बात रह नहीं गई, और जैसे बहुत सारा हिडन तंत्र इसके पीछे, हिडन सिस्टम है, वॉकी टॉकीज हैं, मोबाइल फोन्स हैं, और जो झंडियाँ दिखाना, हरी झंडी लाल झंडी, इन सब से क्या है, ये कम्युनिकेशन का साधन है। तो आप जब भी खुद को थोड़ा डिस्कम्फर्ट में, या आपको लगे कि कुछ परेशानी है, तो आप बिल्कुल अपने संबंधित स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं, और एक बिल्कुल सुरक्षित माहौल है। देखने वाले को ज़रूर लगता है ऐसा कि कैसे होता होगा, लेकिन ये
1: हाँ,
0: बहुत स्मूथ प्रक्रिया है।
1: कामकाजी महिलाएं हैं तो उनको घर परिवार और नौकरी के बीच में तालमेल बैठाने में काफी संघर्ष करना पड़ता है। आप पारिवारिक जिम्मेदारियां और अपनी नौकरी के बीच कैसे तालमेल बैठाती
0: हाँ मैडम, ये आपने तो मेरे दिल की बात छीन
1: हैं?
0: लिया। बिल्कुल, इसमें तो मैं अपने हस्बैंड को बहुत श्रेय देना चाहूँगी, मेरे पूरे जो ससुराल पक्ष हैं उनका भी विशेष योगदान है, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच बड़ी रखी है, उन्हें पता है कि अगर ये रात में जा रही हैं, ड्यूटी जा रही हैं, तो कभी उन्होंने ये नहीं उसमें ऑब्जेक्शन उठाया। रही बैलेंसिंग के बाद, तो मेरा फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मुझे जाना है उन्हें पता है, तो कभी रोक टोक नहीं होती है, कितने बजे आना कितने बजे जाना, 1.5 घंटे का समय मुझे मिलता है तैयारी करने के लिए एक ड्यूटी के लिए, क्योंकि क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है ना भाई,
1: जी
0: हर दिन एक नया अलग रूटीन होता है, अलग स्केड्यूल होता है,
1: जी
0: तो उसके चलते उन्हें इस बात की जानकारी होती है, तो एक पूरा, जैसे छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो कैसे मम्मी खाना छोटी कर रही होती है, पापा शूज पॉलिश कर रहे होते हैं, कुछ वैसे
1: बिल्कुल
0: माहौल मेरे घर पे होता है,
1: जी
0: लेकिन बिल्कुल उनके अथाह प्रयासों से, मेरी सासू माँ के, मेरे हस्बैंड के, बिल्कुल मैं ड्यूटी तो कर पा रही
1: बहुत
0: हूँ।
1: सौभाग्यशाली हैं आप कि आपको ऐसा ससुराल मिला
0: बिल्कुल
1: है ना। हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं आपको, कि आपकी जो बातचीत है काफ़ी प्रेरणाप्रद लग रही होगी उन्हें, तो हमारे युवाओं को, खासकर हमारे युवा श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? तो अगर उनको रेलवे में गार्ड बनना है, कैसे वो अपनी पढ़ाई करें?
0: जी देखिए, पहले तो मेरे जितने भी युवा श्रोता भाई बहन हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले अपने दिमाग में एक विचार

0: अवश्य रखें कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना ही है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ये आपका दिमाग में पहला एक गोल होना चाहिए कि किसी भी तरह हम किसी और पर पैसे को लेकर आश्रित नहीं रहेंगे। रही करियर की बात, तो रेलवे और ऐसे अन्य संस्थाएं भी हैं, रेलवे में गार्ड के अलावा भी कई पद हैं जो आपके क्वालिफिकेशन, आपके कैलिबर को टक्कर देते हैं, तो उनके बारे में आप थोड़ा जानें। इसके अलावा रेलवेज़ में आने के लिए कोई बाहरी सोर्सेज नहीं है, आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, देकर ही आपको अंदर आना पड़ेगा। तो RRB समय समय पर, RRB का अर्थ है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो समय समय पर परीक्षाएं करवाते रहते हैं, उनका नोटिफिकेशन आता है और उनका बिल्कुल फिक्स सिलेबस होता है कि ये पोर्शन हमें पढ़ना है, कि करंट अफेयर्स की जानकारी और सामान्य का जो GS/GK के करंट है उसका अवेयरनेस होना आपके लिए प्रिपरेशन करने के लिए बेहतर है। और प्रोफाइल को जितना गहराई से हम समझेंगे उतना जल्दी हम उसमें खुद को ढाल पाएंगे और बहुत आसानी से हम बढ़ पाएंगे आगे। तो तैयारी बिल्कुल सबको करनी चाहिए, बहुत अच्छी संस्था रेलवे है और निश्चित ही मुझे नहीं लगता कोई दुखी होता होगा खुद को एक रेल परिवार का सदस्य मानते हुए, जैसे कि मैं हूँ वैसे भी आप हो सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं सभी युवा श्रोताओं से तो ये कहना ही चाहती हूँ कि आप जल्दी जल्दी आ जाएं और आपको बस सफल होता देखकर हम खुश होते रहें।
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन हम क्या करें, समय सीमा के बंधन में बंधे हैं। तो बहुत खुश हुई आपसे बात करके, हमारे श्रोताओं को, हमारी महिलाओं को काफ़ी प्रेरणाप्रद आपकी जानकारी लगी होगी। से बात करने के लिए अंकिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद मैडम।
1: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत भेंटवार्ता, रेल सेवा में नारी शक्ति की भूमिका। इस विषय पर आज हमने बात की रेल सेवा में कार्यरत मालगाड़ी प्रबंधक अंकिता सूर्यवंशी से। आपसे बात की थी दीपमाला शिंदे ने।

हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सबसे अधिक समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। विश्व के नेताओं ने दी बधाई। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को हराया, अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल 26 मई 2014 से आज

0: 10 जून 2026 तक 4,399 दिनों का हो गया है। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर कार्यकाल पर राज्य मंत्रिपरिषद की ओर से बधाई देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस उपलब्धि के लिए आगामी 21 जून तक प्रदेश में कल्याणकारी गतिविधियों से संबंधित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान के अंतर्गत 12 से 18 जून 2026 की अवधि में जिले के प्रत्येक विकासखंड, नगरीय निकाय मुख्यालयों पर जन कल्याण शिविर आयोजित होंगे। इनमें केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाएंगे। तेलंगाना की अदालत में आपराधिक प्रकरण लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। भाजपा की शिकायत पर यह कार्यवाही राज्यसभा निर्वाचन के रिटर्निंग अधिकारी ने की है। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
2: कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जान करके जानकारी छिपाई गई थी, ये एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने का पाप है। असली में अगर आप पे कोई आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में हो तो ये शपथ पत्र के साथ लिख के देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक अपने प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र के साथ, जबकि वो प्रकरण उनके संज्ञान में भी था और प्रकरण के उस होने की जानकारी आज जब चुनाव अधिकारी ने बहस में उनके सामने रखी तब भी उन्होंने एक्सेप्ट किया।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की बैठक भी होगी। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों से मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों तथा सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। बैठक में शामिल प्रतिभागियों ने फर्जी खातों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपाय, पीड़ितों के लिए त्वरित मुआवजा और वसूली तंत्र, डिजिटल संचार प्लेटफॉर्मों का बेहतर प्रबंधन, डिजिटल प्रणाली में अधिक जवाबदेही, अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क से निपटने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी सुझाव दिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए

0: आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहाँ सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पुरुष क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रनों से हराया। रंगिरी दम्बुल्ला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पहली बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। सभी मैच दम्बुल्ला में खेले जाएंगे और फाइनल मैच 21 जून को खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर के शासकीय संभागीय आईटीआई नंदानगर में 11 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी जिले में संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। शिवपुरी में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के सफलतापूर्वक 6 साल पूरे होने के अवसर पर 1 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। आगर मालवा जिले के पात्र हितग्राहियों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। देने के उद्देश्य से 12 से 18 जून तक विकासखंड और नगरीय निकाय स्तर पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। खंडवा जिले के सभी विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 14 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विकसित हमारे शिक्षक ऐप प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और तकनीकी रूप से सक्षम बना रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है एक ही फिल्म कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक ही फिल्म कार्यक्रम में। मैं हूँ दीपमाला और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म। आज हम लेकर आए हैं 1996 की सुपरहिट फिल्म जीत। सनी देओल, सलमान खान, करिश्मा कपूर और तब्बू जैसे सितारों से सजी यह फिल्म प्यार, दोस्ती, संघर्ष और बलिदान की कहानी है। 23 अगस्त सन 1996 को नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी इस फिल्म की कहानी और निर्देशन था राज कंवर का। फिल्म के निर्माता थे साजिद नाडियाडवाला, संवाद लिखे थे अमरीक गिल ने। फिल्म का गीत संगीत उस समय काफी लोकप्रिय रहा और फिल्म के मधुर गीतों को लिखा था समीर ने। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था नदीम श्रवण ने और फिल्म के सदाबहार गीतों को अपने स्वर दिए थे कुमार शानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौड़, सोनू निगम और साधना सरगम ने। ये फिल्म उस वर्ष की सुपरहिट फिल्मों में शामिल रही। फिल्म की कहानी शुरू होती है सनी देओल यानी करण से, एक ऐसा युवक जिसकी दुनिया बंदूक, दुश्मनी और अपराध के इर्द गिर्द घूमती है। लोग उससे डरते हैं।

0: करण के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता है। तब काजल के पिता प्रोफेसर सिद्धांत शर्मा यानी आलोकनाथ करण के खिलाफ गवाही देते हैं। जब यह बात करण को मालूम चलती है तो वह काजल के घर आकर मारपीट करता है। तभी काजल बीच में आकर करण को रोकती है और यहीं पर करिश्मा कपूर यानी काजल की खूबसूरती देखकर करण मंत्रमुग्ध हो जाता है और अपनी सुध-बुध खो देता है।
1: दिल

0: करण को काजल से प्यार हो जाता है और वह हर जगह उसका पीछा करने लगता है। यह सब देखकर काजल के पिता करण की शिकायत पुलिस में कर देते हैं।
1: साहब ले आए उसे।
2: तो तू है, बहुत बुखार चढ़ा है तुझे आशिकी का। मैं लिखता हूं तेरा प्रेम पत्र। क्या नाम है तेरा?
3: करण।
0: यहाँ पुलिस की मार खाते हुए भी करण को हर जगह काजल ही दिखाई देती है।

0: तुलसीबाई यानी तब्बू एक तवायफ है और वह भी करण को बेहद चाहती है। वह करण की जमानत लेकर उसे जेल से छुड़ा लाती है। इधर काजल के प्रेम में पड़ा करण फिर से काजल का पीछा करने लगता है। तब तंग आकर काजल करण से कहती है,
1: क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा, हाँ? क्यों हमें चैन से जीने नहीं देते, मार डालो हमें। हर पल दिल्लत भरी जिंदगी जीने से तो हमारा मर जाना ही अच्छा है।
0: काजल की बातें सुनकर करण चुपचाप वहां से चला जाता है, लेकिन उसके दिलो दिमाग में अब भी काजल छाई हुई है। एक दिन काजल बस से सफर कर रही होती है, संयोगवश करण भी उसी बस में सवार रहता है। बस में कुछ मन चले काजल और उसकी सहेलियों को छेड़ते हैं, तब करण उन्हें बचाता है। यह देखकर काजल करण के प्रति अपनी सोच बदल देती है।
1: इन्होंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, गुंडागर्दी तो ये लोग कर रहे थे, ये बिल्कुल बेकसूर है। इन्होंने जो कुछ भी किया हमारी इज्जत बचाने के लिए किया है।
0: एक दिन काजल करण से मिलती है।
1: ये ताकतवर हाथ 100 आदमियों को एक साथ नहीं मार सकते, लेकिन लाखों लोगों को प्रणाम तो कर सकते हैं। हम चाहते हैं तुम्हारी ताकत किसी अच्छे काम आए। मैं तुम्हें बिल्कुल बदला हुआ देखना चाहती हूँ करण। हमें घिन आती है ऐसी जिंदगी से जो जुर्म और गुनाह से सनी हुई हो। छोड़ दो ये सब प्लीज, हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए। वादा करो करण, तुम ये सब छोड़ दोगे, वादा करो।
0: काजल की खुशी और प्यार की खातिर करण पूरी तरह से अपने आप को बदल देता है और अपराध जगत से नाता तोड़कर इज्जत की जिंदगी बिताने का फैसला ले लेता है। काजल और करण प्रेम की राह पर चल पड़ते हैं।
2: कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है, तुमने भी मेरे लिए इतना...
1: क्योंकि तुम मेरे अपने हो, हम भी तो तुमसे प्यार करते हैं।
2: मुझे छोड़ के मत जाना काजल, मैं जी नहीं पाऊंगा।
1: हम तुम्हें बिखरने नहीं देंगे, वादा करते हैं।

0: काजल का प्यार करण को पूरी तरह से बदल देता है, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सलमान खान यानी राजनाथ सहाय, जिसे राजू भी कहते हैं, वह काजल के पिता के दोस्त रमाकांत सहाय यानी दिलीप ताहिल का बेटा है, जो बचपन से ही काजल से प्यार करता है। दोनों के पिता उनका रिश्ता तय कर देते हैं। काजल अपने पिता को करण और अपने रिश्ते के बारे में बताती है।
1: हम किसी और से प्यार करते हैं पापा।
2: काजल, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? इतना बड़ा राज तुमने मुझसे छुपा कर रखा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं रमा को वचन दे चुका हूँ।
1: वचन में तो हम भी बन चुके हैं पापा, कभी न टूटने वाला बंधन। हम करण के बगैर जिंदा नहीं रह सकते।
2: तुम मौत को गले लगाना चाहती हो, छोड़ दो उसे।
1: हम सब कुछ छोड़ देंगे, ये घर, ये दुनिया, ये जिंदगी, लेकिन करण को नहीं।
0: यह बात सुनकर काजल के पिता को सदमा लगता है और उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। अपने पिता की खुशी के लिए काजल यह रिश्ता स्वीकार कर लेती है।
3: हमें माफ कर दीजिए, हम आपके बिना जी नहीं सकते। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तो आप हैं। आप जो चाहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। अगर आप ही हमसे रूठ गए तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे पापा, कभी माफ नहीं कर पाएंगे।
0: जब करण को इस बात का पता चलता है तो वह काजल के घर जाता है। तब काजल दिल पर पत्थर रखकर करण को अपने जीवन से चले जाने को कहती है।
1: चले जाओ यहाँ से।
2: क्या?
1: हम कहते हैं चले जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ कभी नहीं आना। गो अवे, आखिर तुम्हारा हमारा रिश्ता ही क्या है?
2: रिश्ता विश्ता मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
1: हमारी शादी हो रही है उस लड़के से जिसे हमारे पिता ने चुना है, हमने चुना है अपनी मर्जी से।
2: अपनी मर्जी से? तो फिर क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों मुझे बदला? क्यों बनाया मुझे ऐसा? क्यों दिखाई मुझे वो खुशियां, वो प्यार, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि वो सब झूठ था और सच ये है कि आज तुम किसी और की बनना चाहती हो? काजल, मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता।
1: Don't touch me. हम किसी दूसरे की अमानत है।
0: काजल की बातें करण का दिल तोड़ देती है और उसे यह सुनकर धक्का लगता है, लेकिन वो उससे कहता है,
2: नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। काजल, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले।
0: जब काजल की बारात निकल रही होती है तब करण राजू को मारना चाहता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह काजल को भी खो देगा और वह अपना इरादा बदल देता है और इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है। काजल अपने अतीत को पीछे छोड़कर राजू के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है।

0: इधर राजू के पिता और उसके मामा गजराज चौधरी अपने अनैतिक कारोबार को राजू को सौंपना चाहते हैं। राजू इस बात से अनजान है और वह काजल के साथ बेहद खुश अपना जीवन गुजार रहा है।
1: फैंटास्टिक, फैंटास्टिक भाई साहब, मैंने राजू को इतना खुश कभी नहीं देखा है।
2: अरे इससे भी ज्यादा खुशी तो तुम्हें उस दिन होगी रमा, जब हमारा राजू हमारे कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाएगा।
1: मगर भाई साहब, जिस दिन राजू को हमारे कारोबार की सच्चाई का पता चलेगा।
2: नहीं नहीं,
1: क्या होगा?
2: कुछ नहीं होगा रमा, आखिर वो हमारा खून है। जो रास्ता हमने उसके लिए चुना है उससे पीछे वो कभी नहीं हटेगा।
3: You're right, मामा जी, दे दिया ना झटका।
2: तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे बेटा, भाई अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी तो तुमने संभाल ली, अब हमारे कारोबार की बागडोर भी तुम्हारे हाथ सौंप रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक।
3: डोंट वरी मामा जी, राजू हर काम इंतहा की हद तक करता है, मोहब्बत की तो इंतहा तक, और अब बिजनेस भी संभालूंगा तो एकदम।

0: एक दिन राजू के पिता रमाकांत सहाय की फैक्ट्री में अवैध रूप से बारूद रखा होने के कारण वहां आग लग जाती है। और जब राजू को अपने पिता और अपने मामा के इस अनैतिक कारोबार के बारे में पता चलता है तो वह अपने पिता से कहता है,
1: आज मुझे आपको अपना बाप कहते हुए शर्म आती है। मिस्टर रमाकांत सहाय,
2: तुम्हें शर्म आने लगी है मुझे अपना बाप कहने में? क्योंकि मैं गैर कानूनी काम, ड्रग्स, हथियार, मौत का व्यापार करता हूँ। देशद्रोही हूँ मैं। हाँ मैं हूँ, देशद्रोही हूँ मैं, देशद्रोही हूँ मैं। अब राज खुली गया है तो सुन, हमारी दुनिया दौलत और मौत का वो चक्रव्यूह है जिसमें एक बार दाखिल हो जाओ तो कोई वापसी नहीं, समझे? तुम इस दुनिया में दाखिल हो चुके हो मिस्टर राजनाथ सहाय।
0: यह बातें काजल सुन लेती है और वह राजू से कहती है,
3: नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें वो कमाई जिसके पैसे पैसे में से बेगुनाह इंसानों का लहू टपक रहा हो।
1: काजल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब मुझसे अनजाने में हुआ है।
3: अनजाने में ही सही, लेकिन दूसरों की जान लेने में आप हिस्सेदार तो बने, और आपके साथ साथ हम भी इस पाप में शामिल हो गए। इस महल की छत के नीचे रहती रही, जिसके हर एक ईंट के नीचे ग्लास दबी हुई है, इस मुर्दा घर में गूंज रही चीखों से हमारा दम घुटता है। दम, आखिर हमारा कसूर क्या है?
1: कसूर न मेरा है ना तेरा, कसूर हमारे दामन का है जिसमें फूल भी गिरे तो कांटे बन गए। मैंने कुछ नहीं किया काजल, कुछ नहीं किया मैंने।
3: अरे आपने तो हमारे जीने का मकसद ही चुटला दिया राजू। मां बनने से पहले ही हमारे दूध में जहर घोल दिया, हंसने हंसाने की बातें करते करते हमें इतना रुला दिया कि आंसुओं के सैलाब में हमारे प्यार का आशियाना ही बह गया। और ये हमारी कोख में पल रही इस नन्ही सी जान को हम ऐसी दुनिया देंगे जिसमें पलकर वो एक देशद्रोही दरिंदा बनेगा, और हम होंगे उस दरिंदे की बदनसीब माँ। एक दिन लाशों के ढेर पर बैठे हुए हम अपने बच्चे के शरीर पर गोलियां उतरते देखेंगे। अगर जुर्म की दुनिया का अंजाम ऐसी ही दर्दनाक मौत है तो इसे जिंदगी देने का क्या फायदा? नहीं, नहीं चाहिए हमें ये बच्चा, नहीं चाहिए हमें ये बच्चा, नहीं चाहिए हमें ये बच्चा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं
1: नहीं काजल, नहीं नहीं काजल, बस करो काजल, बस करो,
3: नहीं चाहिए,
1: नहीं काजल, नहीं, बस करो काजल, मैं छोड़ दूंगा ये दुनिया, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं अपने बच्चे को उसकी विरासत में वो नहीं दूंगा जो मुझे मेरे बाप ने दिया है। उसकी विरासत में होंगे तेरे सपने, उसकी विरासत में होंगे मेरे सपने जो हम दोनों ने मिलकर संजोए। मैं वादा करता हूं काजल, मैं वादा करता हूं हमारा बच्चा इस जुर्म की दुनिया में नहीं पैदा होगा, हमारा बच्चा इस जुर्म की दुनिया में आंखें नहीं खोलेगा, नहीं खोलेगा आंखें।
0: तब राजू काजल के साथ अपने पिता का घर छोड़ देता है। राजू को अपने गैर कानूनी कामों में बाधा बनते देख राजू के मामा अमरीश पुरी यानी गजराज चौधरी उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। इधर काजल के अपने जीवन से चले जाने के बाद करण वापस अपराध जगत से जुड़ जाता है और इस बार उसे राजू को मारने का जिम्मा सौंपा जाता है। लेकिन जब करण को यह बात पता चलती है कि राजू कोई और नहीं काजल का पति

0: है तो वह काजल की खुशी चुनता है और राजू और काजल के जीवन की रक्षा करने का प्रण ले लेता है। राजू पर जानलेवा हमला होता है, तब करण राजू की रक्षा कर उसे घर लेकर आता है। जब यह बात काजल को पता चलती है तो वह उससे कहती है,
1: हमें माफ कर दो।
2: माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं वहां देर से पहुंचा, वरना गजराज के आदमी राजू को छू भी नहीं पाते।
1: कितने गलत थे हम, आज तक हम यही समझते रहे कि तुम हमारे सुहाग को उजाड़ना चाहते हो, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि तुम हमेशा अपनी जान को खतरे में डालकर हमारे सुहाग को बचाते रहे। हम उसे ही दुश्मन समझते रहे जो हमारे लिए मसीहा था। हम मानते हैं हमने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, लेकिन उस वक्त हम ऐसे दो राहें पर खड़े थे जहां हमें अपने पापा की जिंदगी और तुम्हारे प्यार में से किसी एक को चुनना था। पिता की जिंदगी को बचाना हमारा फर्ज था, हमने उसे अपना धर्म समझकर निभाया, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ हमारा रिश्ता टूट गया।
2: हमारे बीच जो कुछ भी था उसे भूल जाओ, वो गुजरा हुआ कल था।
0: काजल और करण की बातें राजू भी सुन लेता है और वह करण से कहता है,
3: डेस्टिनी, तकदीर, किस्मत, कुछ नहीं, शतरंज की पिसात है और हम सब सिर्फ मोरे। कमाल का खिलाड़ी ऊपर वाला, उसके एक इशारे से रिश्ते बनते हैं, बन के टूटते हैं और हम सब बिखर जाते हैं। सिर्फ एक चीज है जो हम सबको हम सबसे जोड़े रखती है, वो है मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत। दोस्त, अगर इस दुनिया में मोहब्बत ना होती तो कुछ भी ना होता। मुझे आज पता चला है कि तुम मुझे क्यों बचाते रहे। काजल, जिस दिन से मैंने इसके गले में मंगलसूत्र डाला है, इसने उसे धर्म मान के निभाया है। पत्नी बनकर यह सिर्फ एक हिंदुस्तानी औरत ही कर सकती है। काजल, मैं तुम दोनों की अतीत की इज्जत करता हूं। इस छोटी सी दुनिया में तुम बहुत बड़ा दिल रखते हो दोस्त, ये सब तो कोई एक देवता ही कर सकता है।
2: पत्थरों की इस दुनिया में देवता बनना तो बहुत आसान है, इंसान बनना बहुत मुश्किल। तुम एक नेक इंसान हो राजू।
3: काजल, अगर हमारे यहां बेटा हुआ ना तो हम उसका नाम करण रखेंगे। हे, तुम रो क्यों रही हो? अगर तकदीर हमारी दुश्मन हुई तो क्या हुआ, हम तो एक दूसरे के दोस्त हैं, हम संभालेंगे एक दूसरे को।
0: तभी राजू के घर पर गजराज चौधरी जानलेवा हमला करता है। राजू और करण मिलकर इन हमलावरों का मुकाबला करते हैं। इसी बीच काजल को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। करण दोनों को बचाते हुए सुरक्षित जगह पर ले जाता है। इस लड़ाई में गजराज चौधरी राजू को मारना चाहता है, लेकिन बीच में करण आ जाता है और राजू को बचाते हुए अपने जीवन का बलिदान दे देता है।
4: करण भाई!
5: करण भाई!

इस फिल्म में सहायक भूमिकाओं में थे अमरीश पुरी, आलोक नाथ, दिलीप ताहिल, मोहन जोशी, दीपक शिर्के, जॉनी लीवर, आशीष विद्यार्थी और राजीव वर्मा। आपको हमारी आज की एक ही फिल्म कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। अब कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए दीपमाला को।

अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म। आज आपने सुनी फिल्म जीत की कहानी और गीत संगीत, प्रस्तुति दीपमाला शिंदे की थी। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड

0: तोड़ दिया है जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।

0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
3: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
2: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा।

0: ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था। हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
1: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में दो जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
0: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 225,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है निमाड़ी लोक संगीत। आज निमाड़ी लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे साधना उपाध्याय और साथियों से निमाड़ी लोकगीत।

0: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
1: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
0: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
1: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
2: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
3: आप सुनी रहे आज निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
4: आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं निमाड़ी लोक संगीत। आज आप सुन रहे हैं साधना उपाध्याय और साथियों से निमाड़ी लोक गीत।

0: निमाड़ी लोक संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज आप सुन रहे थे साधना उपाध्याय और साथियों से निमाड़ी लोकगीत। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
1: आपके मीत ये गीत।
0: आपके मीत ये गीत सुन रहे सभी श्रोताओं का स्वागत है इस कार्यक्रम में, और आज आपके साथ हूं मैं दीपमाला। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार, और चलिए सिलसिला शुरू करते हैं आपके फरमाइशी ईमेल्स का। पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी और अमीना बी मंसूरी, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा, शासीनगर बीट से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया, सईराज, विशाल सपकाल, आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, रामभाव तांदल, छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा और तुलसी और दिशा, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार, खंडवा से है बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिकरा डावर और बेबी आयशा खत्री, ग्राम जामली कला से माणकचंद राठौर, पुष्पाबाई राठौर, प्रियांशी और दिव्यांश राठौर, ग्राम छेगांव देवी जिला खंडवा से अशोक वागे, वंदना वागे और कान्हा वागे, जवानगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना अश्विनी और विपुल कामड़े, नीपानगर से भुदियाल शिवदेव, शिवा, बसंतीबाई और गणेश शिवदेव, खंडवा से श्यामाबाई रायकवार, ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाक से साक्षी ऋतुराज और पूर्णिमा पटेल, वंदन नगर इंदौर से है नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक और परी खर्चे, बड़ाबम चौक खंडवा से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू, बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, बीना मस्किन, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और केशु रिधान खुराना, खंडवा से राधेश्याम यादव, श्रीमती प्रभा यादव, भारती यादव, शालिनी यादव, कामेश यादव, राहुल यादव, बड़वा से ही श्रीमती भारती कुशवा, मनीष कुशवा, पार्थ कुशवा और अनवी कुशवा, अंबागढ़ चौक की छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सभी, आना सोरेहान, नारायणपुर बाबा बट्टी पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, झिनिया रतनपुर से जितेंद्र सिंह गौड़, नरेंद्र

सचिन, प्रीति, भावना, अंतिम पलक, श्रुति, यशराज, देवराज, साबी और रिद्धिमा, गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजी सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, पूजा खटक, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राय, मेरा जहाँ आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से धार धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री, चंडीगढ़ से है सतीश अनेजा, विमला अनेजा और पोटियाकली दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं अनुपमा देशपांडे को, गीत लिखा जावेद अख्तर ने, संगीत बप्पी लाहिरी का, फिल्म है सैलाब।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीते गीत। कार्यक्रम का अगला गीत है कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में। संगीत अनु मलिक का है, बोल रानी मलिक के। फिल्म है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। और इस गीत को पसंद किया है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से फरमान सलमान मोहम्मद इरफान मोहम्मद इसरार नरगिस खातून। जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा जतिंदर कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी कलावती सोनी पूजा पायल और जगदीश जौहरी। सनावत जिला खरगोन से है मास्टर अशोक वर्मा अर्चना वर्मा अनुज वर्मा आयुषी वर्मा रमेश चंद वर्मा शेख मूसा भाईजान भाई राजकुमार बोडाना। और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित ऋतु और मुकेश जगताप। बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन से है विनोद मुणत नेहा जैन दीपक मयंक मुणत और चेतन नाहटा। उत्तर प्रदेश से है राजेश कुमार वर्मा प्रीति कार्तिक आर्यन शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई पिंकी आर्यन कृष्णा और पीयू स्वर्णकार। वर्णिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा ममता अरोड़ा कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश मैंडी शर्मा सौरव साइना और निवान शर्मा। ग्राम बड़गांव माली से है अजय मालाकार रीना अनुज अंश अर्पिता और शशांक मालाकार। इसी गीत को पसंद किया है महाराज।

प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनोद, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी और प्रगति नाचानी। पंजाब से हरजिंदा जिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराज से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रतीप येमेकर। कोले कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश प्रणाली, सर्वत सानवी। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से है राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। जवानगर उदयपुर से बाबूबाई और भारती देवी। बुरहानपुर मोहन से है मोहन मुदलियार, अर्शिया आरुष, राजेश कुमार। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। जवानगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार और भानुप्रिया। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सतना से है उमंग आकांक्षा मलिक, माही मलिक। ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश, प्रिंस, एकांश, सुमित, ध्वनि, परी, प्रणयता, सिद्धांत और समस्त गम्हाणकर परिवार। और उच्च भट्टी बिलासपुर से है मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी, शिवन्या और अनु गोस्वामी। तो सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीठे गीत। कार्यक्रम के अगले गीत को सुनवाने के लिए फरमाइश भेजी है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश ने। बरवट बकाल बुल्ढाना से नारायण हागे, कमल, दिव्या और जय। ग्राम पंजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया। चांदनी चौक गणेश पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू और रविंद्र रौनक सेन। पद्मा टॉकीज नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। सहारनपुर से जॉन डिकोस्टा, रोजी डिकोस्टा, पल डिकोस्टा, विलेश डिकोस्टा। मलकापुर से संजय पाटिल, सौभाग्यवती, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति क्षीरसागर, संजय कुमार चौहान। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी, फाल्गुनी जोशी। लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू और मोहम्मद हसनैन पवार। बाजार चौक ग्राम दीवार से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, वामिका गंगराड़े। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। इसी गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल, रजक, मुरली क्षत्रिय। मोताला महाराज से विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर, आरती कुमारी। शाहनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर।

बेबी प्रियांशी। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग। नलेश्वर नगर नरवेल महाराज से पीएस नवानकर, निर्मला विशाल नवानकर, नारायण इंगले, सोपान ताइड़े, आशीष मुहेरकर। कल्लंदगंज खंडवा से कौसर बी पवार, हसीना बी पवार, अलमाज बानो, सबीना जहीर पवार। ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। मोटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना मन मानस और कनिका पटेल। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्य देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन, बाबू प्रियांश और भाव्या देवांगन। आप सभी सुनना चाहते हैं कुमार शानू को, संगीत निखिल विनय का है, बोल लिखे रानी मलिक ने, फिल्म है उफ ये मोहब्बत।

0: इस गीत को सुनवाने के लिए पसंद भेजी थी। अहमदपुर के गांव से कैलाश फुलमाली, दीपक फुलमाली, समर फुलमाली, ग्राम सिलोदा, जिला खंडवा से सेवक राम राठौर, राजा राठौर, जामनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जायसवाल ने, और गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल ने। इसी गीत के साथ हमारा आज का आपके मीते गीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए दीपमाला को। नमस्कार।
1: आपके मीत ये गीत।
0: अभी आप सुन रहे थे आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीते गीत FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 9 बजे हैं, अब से लेकर सुबह के 10 बजे तक आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। अंग्रेजी में कहते हैं, इस फिल्म का गाना शान की आवाज में, गीत को लिखा योगेश ने, संगीत है प्रवीण कुंवर का।

दोस्तों, आज सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस। प्रतिवर्ष 10 जून को ये दिन मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच आपसी समझ, वैश्विक एकजुटता और शांतिपूर्ण अस्तित्व को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य ये भी है कि विभिन्न सभ्यताओं की विविधता के सम्मान, समान संवाद और वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए बातचीत के महत्व को उजागर करता है। और ये दिन इस बात पर जोर देता है कि सभी सभ्यतागत उपलब्धियां मानव जाति की सामूहिक विरासत है और दुनिया में शांति व साझा विकास बनाए रखने के लिए संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज है सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गाना राज रिबूट, इस फिल्म का गाना, अरिजीत सिंह की आवाज, रश्मि विराग का लिखा हुआ गाना, जीत गांगुली का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दो लफ्जों की कहानी। इस फिल्म का गाना कनिका कपूर की आवाज़, कुमार के बोल हैं और अर्जुन का संगीत है।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं। हिमेश रेशमिया, शान कुणाल गांजावाला और अमृता काक की आवाजों में समीर का लिखा हुआ गाना, हिमेश रेशमिया का संगीत, फिल्म का नाम है अपने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

एक पहेली लीला, ये फिल्म का नाम है। मीत ब्रदर्स अनजान और कृष्णा की आवाज़ें, कुमार के बोल, मीत ब्रदर्स अनजान का संगीत है।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता जीवन पर।
1: मेरी शक्ल सूरत तो आप जानते हैं, एन गैन सी है। कद्रदानों ने मुझे बना दिया विलन, बैड बॉय, खराब आदमी।
2: मैंने सुना है बाबू की कमी भी पूरी कर दी उस आदमी ने जिसका नाम जॉनी है।
3: जॉनी से जलते हो? वो तो तुम्हारा अपना आदमी है।
2: जॉनी मेरा आदमी नहीं है, जॉनी तुम्हारा आदमी है। मैंने राय के बराबर भरोसा किया था उस पर, तुमने पहाड़ के बराबर भरोसा कर लिया। मैंने राय के बराबर धोखा खाया था, तुमने पहाड़ के बराबर धोखा खा लिया। जॉनी खुफिया पुलिस का आदमी है।
3: क्या तकते हो?
2: जॉनी उसका एक नाम है जुगल किशोर, दूसरा उस्मान ली, तीसरा ऐसे चौथा पांचवा छठा नाम भी है उसका। वो हर नए काम के लिए एक नया नाम रख लेता है। और उसका वो बाप जो तुम्हारे आदमी को धोखा देने के लिए कभी कभी ज्योतिषी बन बैठता है, वो उसका बाप नहीं है, वो पुलिस वाला है जो हवालात के बाहर मेरा पहरा दिया करता था। जॉनी का हवालात तोड़कर भागना पुलिस की एक चाल थी जिसमें मैं

0: गया, लेकिन तुम भी आ गए। तुम जो हम सबको बेवकूफ समझते हो और अपने आप को तीस मार खा।
1: नारायण नारायण कल्याण हो। जिस तरह नारायण नारायण कहते हुए आज मैं आपकी सेवा में आ पहुंचा हूं।
2: आज के इस कार्यक्रम में जीवन साहब के कुछ संवाद सुनवाए जाएंगे।
1: ये मैं खाना है, जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है।
2: सुनवाई जाएंगी जीवन साहब की बातें और उन फिल्मों के नगमे जिनमें जीवन साहब ने अभिनय किया। हालांकि इनमें से ज्यादातर गाने जीवन साहब पर नहीं फिल्माए गए।
3: मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती।
2: दोस्तों सन 1967 में जीवन साहब विविध भारती के स्टूडियो में तशरीफ लाए थे। नफीस सवान, जिंदा दिल शख्सियत, बातें ऐसी कि दिल जीत लें। उनके पास थे कभी न खत्म होने वाले किस्से। हमें गर्व है कि इस बेशकीमती आवाज को आज तक हमने संभाल कर रखा है।
1: मुझे याद है कॉलेज में छुट्टियों के दिन थे, बंबई नगरी देखने का विचार हो गया और सोचा कि फोटोग्राफी में थोड़ी सी और महारत पा जाऊं ताकि अगले बरस बीए पास करने के बाद कश्मीर में एक फोटो स्टूडियो चलाने में जरा और आसानी हो जाए। आया तो था कैमरे के पीछे खड़ा होकर काम करने और पहुंच गया कैमरे के सामने। मतलब ये है कि फोटोग्राफर तो ना बन पाया, एक्टर जरूर बन गया। ये कैसे हुआ मैं मुख्तसरन आपको सुनाता हूँ। बम्बई में मेरे बड़े भाई मरहूम डार कश्मीरी साहब रहा करते थे। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त और मेरे मोहतरम डीएन मधोक साहब से कहकर मुझे एक फिल्म कंपनी में फोटोग्राफी में और तजुर्बा हासिल करने की खातिर लगवा दिया। नई भाषा, नए नए लोग, स्टूडियो की हैरत अंगेज एटमोसफियर, भाई मैं तो बुखला जैसा गया। दूसरी तरफ फोटोग्राफी का तजुर्बा जो मैं हासिल करना चाहता था, मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई खाला जी का घर नहीं। उस स्टूडियो में दाखिल होने के 1.5 महीने बाद, जब मेरे कॉलेज की छुट्टियों में सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए, आखिरकार मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम मिल ही गया। ख्याल रहे इस बात का कि मैं अभी तक फोटोग्राफी सीखना तो दरकनार, कैमरे को हाथ भी नहीं लगा सका था। हाँ, तो वो इम्पॉर्टेंट काम था प्लाईवुड के 2 रिफ्लेक्टरों पर सिल्वर पेपर लगाकर उन्हें साये में सुखाना। कंपनी के कंपाउंड में एक घना सा आम का पेड़ हुआ करता था। वहां पहले से ही एक नई तैयार की जाने वाली फिल्म की टीम जमी हुई थी। सब के सब नए थे, बिल्कुल रंगरूट। मैंने सुन रखा था कि यूपी पंजाब के लड़के हैं और थोड़े ही दिनों पहले भर्ती हुए हैं। 2 या 4 लड़कियां भी थीं। सब लड़के पृथ्वीराज या इंडियन डॉगलस मास्टर विठल, और लड़कियां बनना चाहती थी दुर्गा खोटे या कम अज कम उमा शशि। वारे जमाने। कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी। मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। डायरेक्टर मोहन सिन्हा नए लड़कों को डायलॉग बुलवा रहे थे बारी बारी, तो पता चला कि रमेश नाम का रोल करने वाला लड़का आया ही नहीं। डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। वाह क्या समय था। किस्मत की राइफल मेरे भविष्य को बुल आई टारगेट बना रही थी और मैं कह रहा था अजी मुझे एक्टिंग से क्या सरोकार, मैं तो टेक्निकल साइड का आदमी हूं। उधर भविष्य सुधारने के लिए डॉक्टर मोहन सिन्हा जिद किए जा रहे थे। खैर मैंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में शेक्सपियर के ड्रामे पढ़े हुए थे। इसके अलावा कॉलेज में बहुत से फंक्शनों के मौके पर जनाब आगा हशर और पंडित बेताब के खेल भी स्टेज पर करने में मैं हिस्सा ले चुका था। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बेताब जी की महाभारत में दुर्योधन चौसर में पांडव को जीत कर कहता है ना, क्या कहता है, बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। रंग जमता हुआ देखकर मैंने नाटक को जारी रखते और आवाज को पुरदर्द बनाकर आगा हशर साहब का नेक परवीन में से एक शेर कह डाला, वो है, अरे बेनवा उठ अपने शहीद अदा को देख, ओ बादशाह हुस्न भला हो गदा को देख, मेरी तमाम ख्वाहिशें दुनिया को छोड़कर अब सामने खड़ी है तेरे हाथ जोड़कर।

0: ये कहते कहते मेरी दाईं आंख जो सब हाजरीन को दिखाई दे रही थी जनाब, उससे तो मूसलाधार आंसू बह रहे थे क्योंकि रिफ्लेक्टरों की रोशनी अब काफी तेज हो चुकी थी। खत्म होते ही एक सन्नाटा सा छा गया और फिर वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। कहो दोस्तों है ना किस्मत का खेल, मैं एक्टर बना दिया गया। फिल्म थी फैशनेबल इंडिया 1936 की बेहतरीन तस्वीर। ये होता है विधि का लेख और भगवान की माया।
1: चंगेज खान के शेर दिल सिपाहियों, आसमान की मुकद्दस रूहों ने चंगेज खान को मंगोल कौम में पैदा किया। आज हम तुम्हें हिदायत देते हैं कि जिस तरह आज तक तुम चंगेज खान के वफादार रहे हो, इस मुतबर्रक कला की कसम खाकर उसी तरह हमेशा वफादार रहने का इकरार करो, ताकि हम चंगेज को दुनिया का फातिहा देखें, तुम्हारे शम्मन की आरज़ू पूरी हो।
2: अपने फिल्मी करियर में जीवन ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। नायकों की पीढ़ियां भले बदलती गईं, पर जीवन की खलनायकी का मौसम कभी नहीं बदला।
0: दस्त तो दस्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, अपने जमाने के अफलातून मास्टर शिराज और चंद्राव कदम के साथ विलन, पृथ्वीराज के डॉक्टर दीपक में जेलर और जयराज के स्वामी में याकूब भाई की कंजूस मक्की चूस बाप के बुढ़े रोल मैं उसी जमाने में कर चुका हूँ। प्रेम अदीप भारत भूषण मियां नजीर, वास्ती पहाड़ी सान्याल, बेमिसाल गीता बाली, मधुबाला सुरैया, लाजवाब नरगिस, मेरे नारद के भगवान त्रिलोक कपूर और माता पार्वती निरूपा राय के दौर से गुजरकर जतेंद्र और राजेश खन्ना के साथ भी कुछ इसी तरह के किरदार कर रहा हूँ।
2: हम आपको बता दें कि ये रिकॉर्डिंग सन 1967 में विविध भारती के स्टूडियो में की गई थी।
0: नई हीरो ने मुमताज, शर्मिला टैगोर, बबीता के साथ भी वही हरकतें करना पड़ती हैं जो आज से पहले मिस बिब्बो खुर्शीद शांता अपने के मुकाबले में कर चुका हूं। सेट पर शरबत को शराब समझकर पीने एक ही कोशिश के बाद मैं जब तनुजा को अपनी तरफ घसीटता हूं तो वो मुझे बदमाश, कमीना वगैरह वगैरह कहते हुए जरा हिचकिचा सी गई। डायरेक्टर ने बारहा कहा, मिस तनुजा गालियां जरा फोर्स के साथ दीजिए और ये भूल जाइए कि आपके सामने जीवन साहब खड़े हैं। मैंने कहा, भाई देखो कुछ भूलो या ना भूलो लेकिन अपनी मम्मी शोभना जी को याद कर लो, वो मुझे आज से 25 साल पहले ये सब खिताब अता फरमा चुकी हैं। भाई तब ना कुछ बिगड़ा था और अब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा।
3: मेरी बेटी कहां है मेरी बेटी?
4: बदतमीज, जूता खराब कर दिया, साफ करो।
3: मेरी बेटी कहां है?
4: बैठे, कौन सा बेटे?
3: उस राज्य से तुम उठाकर ले गए थे।
4: हमें कुछ याद नहीं।
3: याद करो, प्लीज याद करो।
4: ये लो, पहचाना इसी कन्नी को? ये वही कन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था।
3: माफ कर दो मुझे, मुझ पर रहम खाओ।
4: रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे ही आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया हूँ और तुम मेरे कदमों में।
3: मुझे सिर्फ इतना बतला दो, मेरी बेटी कहाँ है?
4: मैंने तेरी बेटी को अपनी औलाद से समझा, उसे पढ़ने लिए वलायत भेजा और वो इसी हफ्ते वापस आ रही है।
3: मुझे एक दोस्त से मिलने दो प्लीज।
4: मेरी तरह तू भी अपनी औलाद को देखने के लिए सारी उम्र तड़पता रहेगा।
0: गुलशन परस्त हूँ, मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूँ मैं। दिलीप कुमार से लेकर जॉनी वॉकर, सुनील दत्त से लेकर राजेंद्र नाथ और राजेंद्र कुमार से लेकर महमूद तक मैंने सबसे तलवारें लड़ाई और उनका फिल्मी बाप बनकर उनके दिलों में मोहब्बत के फूल भी खिलवाने की कोशिश की। इस बापबाजी के चक्कर में हीरो, हीरोइन, कॉमेडियन, यहाँ तक के मैंने विलन लोगों को भी नहीं छोड़ा। फिल्म स्वामी में मरहूम याकूब भाई और एक फिल्म पंजाबी फिल्म थी छई में मिस्टर पुराण भी मुझसे न बच सके। जमाने की रफ्तार को मीटर से नापते हुए मैं एक मिसाल पेश करता हूं, जरा सुनिए। आजमूदा और अपने टाइप की बेहतरीन एक्ट्रेस ललिता पवार के मुकाबले में मैंने 1937 में फिल्म

राजकुमारी में विलन महामंत्री, सन 42 में फिल्म मामा जी में मैं उनका मामू, 55 में एसएम यूसुफ की फिल्म में ललिता बाई का नहायती नालायक और बेहुदा किस्म का बेटा, और फिर 65 में फिल्म फूल और पत्थर में मैं अंदर और माल बाहर, वही खामिन ललिता बाई का है, और फिर 67 में हाल ही में तैयार की जाने वाली फिल्म आबरू में फिर ललिता बाई का क्या बना, छोटा भाई अफ्रीका रिटर्न दरवाजा लाल। इसी तरह की फिल्मी रिश्तेदारी मेरी और फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ भी है। मैं शर्मिला टैगोर का किसी फिल्म में बाप बना था, कौन सी पिक्चर थी, याद आया, सावन की घटा। लीजिए सावन की घटा फिल्म का एक गाना सुनिए।

0: जीवन की फिल्म यात्रा के दो पहलू हैं, एक खलनायकी वाला और एक नारद की भूमिका वाला। न जाने कितनी फिल्मों में जीवन नारायण नारायण करते रहे। जमाना अगर नारद मुनि का कोई रूप जानता है तो वो है जीवन साहब की तस्वीर।
1: क्या जौक है, क्या शौक है, 100 मर्तबा देखा फिर भी ये कहूँ जलवाए जाना नहीं देखा। मैंने भी बहुत स्वांग भरे हैं, फिल्म लाइन में आया तो ओकेदार था, चला तो जीवन बन गया, और फिर कुछ ऐसी ऐसी हरकतें की कि किस्मत ने प्रोड्यूसरों के जरिए मुझे नारद ही बना दिया। कोई 35 फिल्मों में मैंने नारद का काम किया। नारद झगड़ा लगाने वाला नहीं, झगड़े को मिटाने वाला होता है। चोर से ये कहना चोरी कर, और चौकीदार से कहना हे भाई होशियार रहना, बताइए ये कोई बुरी बात है? चलिए, मुझे इस बात का संतोष जरूर है कि मैंने नारायण की रट इतनी बार लगाई है, करोड़ों कानों में इतनी बार नारायण शब्द का रस टपकाया है कि भगवान मुझे नरक में भेजने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकते। मगर ये ख्याल जरूर आता है कि मेरे बाकी यार दोस्त तो वही होंगे, मैं उनके बगैर स्वर्ग में बड़ा ही अकेलापन महसूस करने लग जाऊंगा। मैं अच्छा देखिए, हटाइए इन बातों को, भगवान शंकर की बारात निकली है, मैं नारद बना हुआ हूं, आइए आप भी मेरे साथ बारातियों में शामिल हो जाइए, और वही किराए की आवाज के साथ आवाज मिलाकर ये गाना गाइए।

0: कितना मुश्किल काम है कि एक तरफ तो आदमी अपनी हरकतों से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करवाए और दूसरी तरफ अपनी बातों से उन्हें हंसाए। मजा तो ये है कि ये बेजोड़ मेल मैंने ही फिल्म मेला से शुरू किया है। मतलब ये कि रोटी भी मैं खोल लूं, दरवाजा भी मैं पकाऊं।
1: ना मालूम कौन सी चक्की का घी खाता है, दो ही हाथ मैनेजर पंजे ढीले कर दिए। कम वक्त देसी मैन जंगली
2: हाथी हाथ जरा करारा पड़ा है भैया।
1: अरे कलवा, जान पड़ता है मेरे फौज में जाने के बाद ये मोहन गांव का बड़ा चौधरी बन बैठा है।
2: और देखो ये गांव में तुहार ये छेड़छाड़ नहीं चली।
1: अरे चब बे जंगली वाला कहीं का, चल एक दो डोल पानी दुला, नहाओ के दशहरे के उत्सव में चलेंगे रे।
2: वो उत्सव में हमारे वाली परी भी आएगी या ये नहाना धोना, अरे ये साबुन की घिसाई कहीं सब बेकार तो नहीं जाएगी?
1: नहीं नहीं, मगर कौन सी परी भैया?
2: धुत, अरे वही बसंती।
1: अच्छा ओ तुहार मार छुट्टिया।
2: अरे वो नहीं आएगी तो हम लाएंगे। हम
0: सौ जान से हो जाऊंगा राजी में सजा पर, पहले वो मुझे अपना गुनाहगार तो कर लें। मैं ऐसा मानता हूं कि इंसान के हक में नेकी और बदी करने की बात पहले से ही निश्चित होती है और वो इसी के अनुसार अपनी जिंदगी में चलता रहता है। इसी असूल के तहत ज्यादातर विलन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने बदी वाले हिस्से को कैमरे के सामने खर्च कर लेते हैं, बाकी नेकी ज्यादा बच जाती है रोजमर्रा जिंदगी के लिए। जरा सोचिए, फिल्म का खूबसूरत नौजवान हीरो शहर की सड़कों पर या गांव की गलियों में या खेतों में रफी साहब, मुकेश या महेंद्र कपूर की किराए की आवाज से आवाज मिलाकर आसपास से गुजरती हुई जवान लड़कियों से छेड़खानी करता है, मगर जब बेचारा विलन फिल्म की हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है और उससे बाकायदा शादी करके उसे अपनी बीवी या घर की मालकिन बनाना चाहता है तो आप सब उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात हुई ना, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दुनिया

0: तन बदन जल गया।
1: मेरे कमाल को हरगिज कोई जवाल नहीं, कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं। फिल्म लाइन के 30-32 साल के अरसे में मैंने अब्दुल रहीम सैंडो से पहलवानी, लच्छू महाराज से डांस, उस्ताद लताफत हुसैन से गाना और श्री राम बाबू से वायलन सीखने के शागिर्दी के गंडे बंधवाए, मगर ये शौक शौक ही बनकर रह गया। मैं किसी भी असूल का पाबंद ना हो सका और ना शायद हो सकूंगा। शायद बाज़ दफ़े नौकरों ने ही कह दिया हो कि साहब कह रहे हैं साहब घर में नहीं आए। खैर, बारी बारी सब उस्ताद मुझे छोड़ गए। लोगों ने अगर बॉर्न आर्टिस्ट कहकर लपेट ना लिया होता तो मैं इस वक्त शायद कश्मीर में किसी फटीचर किस्म के फोटो स्टूडियो में मक्खियां मार रहा होता, या लोग मुझे मार रहे होते, कहते हयो ये कैसी फोटो बनाई, सूरत ही नहीं पहचानी जाती है।
2: लेकिन कारखाने वालों से तुम्हें क्या मतलब?
3: अरे मतलब समझो तो बड़ा है, बस्ती एक, बस्ती वालों के दिल एक।
2: ठीक है, लेकिन वो लोग कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते?
3: दूसरा काम क्या करेंगे बाबू, अपनी बस्ती में तो खेती बाड़ी भी नहीं होती।
2: हाँ हाँ, लेकिन बाहर शहर में जाके काम कर लें।
3: तो तुम देश वालों को प्रदेश भेजना चाहते हो बाबू? कुंदन बाबू, अपनी गली तो कुत्ता भी छोड़ के नहीं जाता।
2: मगर काम के लिए तो मैं भी शहर छोड़कर यहाँ आ गया हूँ।
4: आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है?
5: जीवन मूलतः कश्मीर के रहने वाले थे और वे कश्मीर को कभी भूल भी नहीं।

0: आए।
1: कश्मीर जन्नत नजीर, कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था। मैं कश्मीरी पंडित बिरादरी से ताल्लुक रखता हूं। महाराज अमर सिंह के राज में मेरे पिताजी वजीर वजारत के ओहदे पर तैनात थे और गिलगित के गवर्नर भी रह चुके थे। शायद कोई कह दे पिदरम सुल्तान बुद, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद बुजुर्गवार बहुत समझदार किस्म के आदमी थे, बहुत ज्ञानी थे, और आदमी के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ ही देखिए, मुझे सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी भाषा आती है, मगर फिर भी मैंने पंजाबी, भोजपुरी और गुजराती फिल्मों में काम किया।
2: यार हमारी बात सुनो,

0: आज के कार्यक्रम में आपका ये दोस्त एक बात जोर देकर कहना चाहता है, और वो ये कि दुनिया की याददाश्त बहुत छोटी होती है, और फिल्म संसार में जितनी चर्चा नायक को मिलती है या नायिकाओं को भी मिलती है, उतनी उनके सहकर्मी कलाकारों को नहीं मिलती। पर जीवन अभिनय का वो शीर्ष हैं, वो बुलंदी हैं, जिनकी याद आपके मन में भले अब तक धुंधली पड़ चुकी हो, लेकिन ये कार्यक्रम उन यादों को फिर से ताजा कर देगा और सम्मान से आपका सिर झुक जाएगा।
1: दोस्तों, बात बाहर ना जाए। मैं और मुझ जैसे बहुत से एक्टर और भी हैं जो स्टार नहीं, स्टार से आजकल मतलब है कि जिनको मिन्नत खुशामद से प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में काम करने को राजी करता है और फिर उस बेचारे की गाड़ी चलती है। हम हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, यानी मुख्तसर जबान में CA। और भी सलीस हो जाइए, सी से बंबई की बोली में हुआ कांदा, कांदा यानी प्याज, और ए से हुआ आलू। ये दोनों तरकारियां हर मौसम में मिलती हैं, रसोई घर में और खाने की टेबल पर इनका होना बहुत जरूरी है, और इनका भाव भी कभी 10 नए पैसे इधर और कभी 5 नए पैसे उधर से ज्यादा नहीं होता। हम कैरेक्टर आर्टिस्ट रसदार मौसमी आम या खुशबूदार खरपूसे नहीं कि 20 रुपए दर्जन से गिरकर 1 रुपए के 20-20 बिकने लग जाएं। कहने का मतलब क्या है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ इतनी है भाइयों कि बात बाहर ना जाए, वरना
2: अरे तो

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता जीवन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन रमेश गोखले, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर।
1: आज के फनकार।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।
3: प्रस्तुत है नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी। आलेख आशीष जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। नरसिंहपुर जिले में पारा 43 से 44 डिग्री होने के बाद अब तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हो रही है, तो वहीं गर्म हवाओं की जगह धीरे धीरे उमस अपना स्थान ले रही है। खेती के नजरिए से ग्रीष्मकालीन मूंग खेतों में तैयार होकर अंतिम दौर में है, वहीं किसान कटाई की तैयारी में नजर आ रहे हैं। भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना के अंतर्गत वर्तमान सत्र के लिए ग्रीष्मकालीन फसल मूंग और उड़द को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए पंजीयन जारी है। उप संचालक कृषि मोरिस नाथ ने बताया कि मूंग और उड़द के लिए तहसीलवार कुल 46 पंजीयन केंद्र स्थापित किए गए हैं। मूंग के 13,000 से अधिक, उड़द के लिए 14,000 से अधिक किसानों द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। जिले में किसानों की भूमि की उर्वरा शक्ति का आकलन करने हेतु व्यापक स्तर पर मृदा नमूना संग्रहण कार्य किया गया है। नरसिंहपुर जिले में कुल 4,400 मृदा नमूने संग्रहित किए गए हैं। मृदा परीक्षण के माध्यम से भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की स्थिति का आकलन कर किसानों को उनकी भूमि के अनुरूप उर्वरकों के संतुलित उपयोग की सलाह प्रदान की जाती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले से प्रदेश के 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में योजना की 36वीं किस्त के रूप में 1835 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लिए माताओं और बहनों का सम्मान सर्वोपरि है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 296.34 करोड़ रुपए लागत के 40 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर जिले को विकास की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान नरसिंह की ये भूमि वीरांगना रानी दुर्गावती के शौर्य और पराक्रम की साक्षी रही है। नरसिंहपुर जिला गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसे शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है। वहीं गाडरवारा की तुअर दाल देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। पिछले दिनों नरसिंहपुर के कलेक्ट्रेट प्रांगण में आयोजित जल संवाद कार्यशाला में सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने वैश्विक जल संकट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जल को बनाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ बचाया जा सकता है। उन्होंने प्राकृतिक और पर्यावरण संरक्षण के लिए भूजल भरण की विशिष्ट तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। पिछले दिनों पीएम श्री शासकीय कन्या नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काटरवारा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि धरती का आंचल हरा भरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये दिन केवल एक तारीख नहीं है बल्कि एक यादगार पल है और एक मौका भी है। आज के दिन हम संकल्प लेकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा जरूर लगाएं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानून को ने पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने मानवाधिकारों से जुड़ी योजनाओं क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया। मानवाधिकारों से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत पंजीयन शिविर का आयोजन नगरपालिका परिषद नरसिंहपुर में किया गया। शिविर में 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु के असंगठित क्षेत्र के कार्यरत श्रमिकों को योजना में पंजीयन कर लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया गया। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। प्रदेश की खाद्य नागरिक आपूर्ति और जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अभिनव पहल पर जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

उक्त समिति के माध्यम से जिले के विकास से संबंधित सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य साधना स्थापक ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम कर अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य साधना स्थापक पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य, स्वावलंबन और अधिकारों से जुड़े विभिन्न गंभीर मुद्दों पर विस्तृत समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई, स्टोर रूम, मदर रेस्ट रूम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है निमाड़ी लोक संगीत। सबसे पहले सुनिए फूलचंद गुर्जर और साथियों से ये लोकगीत।

0: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
1: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
0: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
1: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
2: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
3: आप सुनी रहे आज निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं निमाड़ी लोक संगीत। लीजिए सुनिए प्रभाकर दुबे और साथियों से ये गम्मत।

0: अरे तू कहाँ रह रहे?
1: अरे तारा घर का पाछा।
0: मारा घर का पाछा? पाछा मारो घर?
1: अरे वो नाला का वहाँ।
0: अच्छा अच्छा, अरे क्यों रे? तारा नाव का ही छे?
1: ना तारो नाव का ही छे?
0: अरे हाँ तो गम्मत को सुत्तर धारा है।
1: ना हाँ इत्तर धारा है।
0: अरे वार थारी इत्तर धार की रे? ये भगवान जो गणपति महाराज बैठाई नी, इनकी पूजा कर।
1: कसी?
0: अरे कसी? इनका लड्डू चढ़ा।
1: अरे लीम का पत्ता चढ़ा दिया मन जय भगवान।
0: अरे लीम का पत्ता तू जो छे जंगली को जंगली रहेगो।
1: फिर कसी चढ़ो पूजा?
0: ये लड्डू की जो थाली छे नी
1: लड्डू दाने मा का हाथ में
0: तो तू को देव नहीं हो ये लड्डू ला चढ़ा।
1: जय गणपति महाराज।
0: अब उनका ढोक दा
1: कसी।

0: आ लागनी।
1: अच्छा गणपति महाराज तुम्हारा पाँव लागू धोक दियो।
2: जाओ गम्मत वाला हो तुमरो भलो।
0: गणपति महाराज ने आशीर्वाद दे दियो।
1: प्रसन्न छे।
0: तो देखो अब आपुन पेरावनी की गम्मत कराए। गणपति महाराज का आशीर्वाद का बाद पेरावनी। तो क्यों नानी?
2: काया दादाजी।
0: अरे तू कहाँ ले वाला भक्ति फिरे?
2: अरे हाँ यहाँ पड़ोस में नीला जीजी रहनी। वो कहा यहाँ मई लेना।

0: समझ गई नहीं हमेशा।
1: अच्छा अच्छा,
0: वो चिट्ठी दही गोज अब मखा ओका मका समझ नहीं पड़ता, सब अक्षर ऐसा लगाए जैसा कि मकोड़ा ने की लंगार हो।
1: अच्छा तो मखा बताओ दादाजी, हम अचूंगा।
0: हाँ ले ये बाजीन मखा सुना।
1: अच्छा दादाजी, ये मैं लिखियो कि थारो यही गंगा जी गयो तो तुका पेरावनी लेना चलनू, गंगा पूजन भी धरे जो न मौकामा ओकामा भी पेरावनी करनू जा पुण्य कर। तो दादाजी अच्छी पेरावनी ले चलो नी बहन वाट।
0: अरे पेरावनी यहाँ खाना का तो फाका पड़ी रहे, अरे आटो नहीं है घर में।
1: नहीं नहीं दादाजी, मारी बहन का बुरो लग से।
0: कहूं काय अब लोग ने से उधार मांगू।
1: नहीं दादाजी नहीं, चलनू पड़ से।
0: हाँ चलनू पड़ से तो देखता हूँ, इंतजाम करूँ मारी अक्कल से।
1: अच्छा
0: है? हाँ। और तू हाँ। तैयार हुई ना?
1: हाँ तो हाँ भी झटपट तैयार हुई। हाँ, दादाजी।
0: हाँ, और वो एक तरफ पोटली मैंने बांधी ने रखी।
1: अच्छा
0: ओका ले ही चल।
1: हाँ ओका ले ही चला दादाजी।
0: हाँ आई गई।
1: हाँ आई गई।
0: हाँ तो चलो भाई।
1: हाँ, चलो
0: चलो आप दूसरा गांव चलो चलो। ये आई गो गाँव। अच्छा। देखो लेंगे वो गंगा माता को सब लेन आई रहा है।
1: हाँ।

0: भाई सब आओ बैठो बैठो, पूजा करना शुरू करो भाई। कहाँ गए हो पूजा करने वालो?
1: आई को हम आए थे, ब्राह्मण आई खड़ल थे।
0: हाँ तो बैठ, पूजा कर इनकी।
1: अच्छा कल पाटलो दियो पाटलो।
0: हाँ ले ये पाटलो, नानी पाटलो ला।
2: यो ले ये, नहीं यो धरियो।
1: धरने से काम नहीं चला, कुकु लगाओ, बामन का लगाओ, चलो चलो चलो जल्दी करो।

0: चल छोरी कुटले में से निकाल
1: ये लिखाई
0: अपने का फिरावनी करा तू यान के तू कर जे
1: आओ
0: आनी यही गांव कर तू
1: आओ
0: तो ये कुकू कहां जे भाई धायर कुकू
2: हेलो एड़ा दणम दम बागो
0: तो याई साठ पगड़ी लायो।

ಲಾಯಣ ಸಾಟ ಲುಗಡೋ ಲಾಯಣ ಸಾಟ ಲುಗಡೋ ಲಾಯಣ ಸಾಟ ಲುಗಡೋ ಲಾಯ ಬೇರೆ.

अरे आई साठ धोती लायो।

0: अरे आयो गाड़ी
1: अरे
0: पेरी नरे आयो गाड़ी सगो छे पेरी नरे आयो गाड़ी सगो छे
1: तो
2: आयन साठ काचल लाई आयन साठ काचल लाई ओ आयन साठ काचल लाई ओ आयन साठ काचल लाई पेरी लो आयन हाउ गरीब सगी छे पेरी लो आयन हाउ गरीब सगी पेरी लो आयन हाउ गरीब सगी छे पेरी लो आयन हाउ गरीब सगी
0: अरे आई साठ नारे लायो

0: अभी आप सुन रहे थे प्रभाकर दुबे और साथियों से ये गम्मत। लीजिए अब सुनिए धर्मेंद्र सरमंडल और साथियों का गाया ये लोकगीत।
1: के ब्रह्मा जी ना...

अभी आप सुन रहे थे निमाड़ी लोक संगीत। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी जगत।

स्वागत है सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम नारी जगत में। आज आपके साथ है आपकी सखी शीतल बाहेती। स्वीकार करें हमारा नमस्कार। सखियों, अभी अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में दान का महत्व है, लेकिन सखियों कुछ दान ऐसे होते हैं जो किसी की जिंदगी में उजाला ला सकते हैं, जैसे रक्तदान और नेत्रदान। सखियों, आंखें हमारे जिंदा रहने तक तो हमारी जिंदगी रोशन करती ही है, लेकिन मरने के बाद भी किसी दूसरे की जिंदगी रोशन कर सकती है। सखियों, हम आपको बता दें कि हर साल आज यानी 10 जून को नेत्रदान दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाना है। सखियों, हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो या तो दुर्घटनावश या फिर जन्मजात अंधे हैं। जागरूकता और कुछ प्रयासों के माध्यम से इन्हें एक बेहतर जिंदगी दी जा सकती है। तो हमें नेत्रदान का महत्व समझते हुए आगे बढ़कर नेत्रदान की शपथ लेना चाहिए। सखियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कॉर्निया की बीमारियां, मोतियाबिंद और ग्लूकोमा के बाद दृष्टिहानि अंधेपन के प्रमुख वजहों में से एक है। ब्लड कैंसर जैसी बीमारियों के कारण भी कई लोग अपनी आंखें गंवा बैठते हैं। सखियों, बहुत से लोगों में नेत्रदान को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं, जैसे कि आंखें दान कर देने से अगले जन्म में हम अंधे पैदा होंगे, या नेत्रदान से शरीर खराब हो जाता है क्योंकि आंखें निकाल ली जाती है, जबकि इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं होती। मरने के बाद नेत्र बैंक के व्यक्ति मृतक के चेहरे को बिना बिगाड़े आसानी से आंखें निकाल लेते हैं। सखियों, चश्मा पहनने वाले, मधुमेह, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और क्षय रोग के रोगी भी नेत्रदान कर सकते हैं, लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस, ब्लड कैंसर, रेबीज, ब्रेन ट्यूमर या जहर खाकर यदि मृत्यु हुई है तो इन्हें नेत्रदान करने की मनाही है। ऐसे लोगों के नेत्रदान नहीं होते हैं। सखियों, नेत्रदान का पूरा प्रोसेस आसान होने के साथ साथ 15 से 20 मिनट में पूरा हो जाता है, और यह समझना बेहद जरूरी है कि नेत्रदान के लिए आंखें नहीं निकाली जाती है, सिर्फ आगे की पुतली यानी कॉर्निया निकाला जाता है। इसलिए सखियों, जीवित रहते हुए अपनी आंखों की देखभाल करें और अपनी दृष्टि को बेहतर बनाने का प्रयास करें, और अपने बाद औरों को रोशन करने का संकल्प लें। और सखियों, अब बातें आंखों की हो रही है, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: सखियों, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है आज के समय में पानी का उपयोग बुद्धिमानी से करना और प्राकृतिक स्रोत जैसे नदियां, झीलों और कुओं को प्रदूषित होने से बचाना। इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं वार्ता जल एवं जल स्रोतों का संरक्षण। वार्ताकार है हमारी सखी बीना शाह।

नारी जगत के सभी सखी सहेलियों को मेरा नमस्कार। नर्मदा, जिसे रेवा भी कहा जाता है, मध्य भारत में एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बना

आती हैं और 1312 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम की ओर बहती हैं और गुजरात के भरूच शहर से 30 किलोमीटर पश्चिम में अरब सागर में खंबात की खाड़ी के माध्यम से बहती है। नर्मदा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है आनंद देने वाली। सखियों, पहले जल संरक्षण पृथ्वी पर हर जगह सामान्य व्यवहार था। आप सभी धार्मिक ग्रंथों में जल संरक्षण का उपयोग पा सकते हैं, लेकिन बढ़ती आबादी, बढ़ते औद्योगिकरण और बढ़ती कृषि ने जल की मांग को बढ़ा दिया है। बांधों और जलाशयों का निर्माण करके और कुएं खोदकर पानी इकट्ठा करने में प्रयास किए गए हैं। कुछ देशों ने पानी को रिसाइकल और विलवीकरण करने का भी प्रयास किया है। जल संरक्षण आज की आवश्यकता बन गई है। वर्षा जल संचयन के द्वारा भूजल पुनर्भरण का विचार कई देशों में महत्व प्राप्त कर रहा है। प्रकृति में पानी धीरे धीरे जमीन में रिसता है क्योंकि वनस्पति पानी में गिरने को रोक देती है। मिट्टी स्पंज की तरह कार्य करती है और कुओं, नदियों और झीलों को खिलाती है। प्राकृतिक संसाधन सीमित है और औद्योगिकरण और ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए हमें प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना या इन संसाधनों का इष्टतम तरीके से उपयोग करना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पृथ्वी, पेड़ और पानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कारण हम प्रकृति के नियमों को तोड़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को वापस करें या बहाल करें। महिलाएं जल की प्रमुख उपयोगकर्ता होती है ना सहेलियों? वे खाना पकाने, धोने, परिवार की स्वच्छता सफाई के लिए जल प्रयोग करती है। जल प्रबंधन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः आज के वर्तमान समय में विश्व, राष्ट्र, राज्य व गांव स्तर पर महिलाएं भी जल संरक्षण में अपनी भूमिका निभा रही है। यदि जल पर किसी तरह का संकट आता है तो जीवन पर भी संकट आना स्वाभाविक है। यदि अब भी नहीं चेते हम तो बाद में अफसोस करने के अलावा दूसरा और कोई विकल्प नहीं होगा। पानी बचाने की पहल हमें अपने ही घर से करनी होगी। जैसे कि बहनें, अगर हमारे घर कोई मेहमान आ रहे हैं, हम उनको पानी देने के लिए पूरे पूरे ग्लास भर के जा रहे हैं, उसमें से 2-3 घूंट लेके वो पानी बाकी का पानी फेंक देते हैं। जो पानी ऐसे फिकाता है वो वापस प्रकृति में नहीं आता। इसलिए हमें पानी का ग्लास और लोटा लेके जाना है, उनको चाहिए उतना पानी दें ताकि हम घर में ऐसा पानी का अच्छा यूज़ कर सकते। जल की बर्बादी से मुंह मोड़ लेना भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। जल के बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। ये बात भी सच है कि अपनी आवश्यकताओं के लिए हमने प्रकृति का दोहन गलत तरीके से किया है। यदि यही हाल रहा तो भविष्य हमारे लिए बेहद कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों भरा रहेगा। अब जरूरत है हमें सोचने की कि हम पानी को कैसे बचाएं। जब आप पानी बचाते हैं तो आप अपने उपयोगिता बिल पर भी पैसा बचाते हैं, तो घर में अपना पानी बचाने की बिल्कुल ध्यान रखिए। पानी बचाना हर किसी के लिए आसान है। हम जहाँ भी काम करते हैं वहाँ भी पानी पे हमें ध्यान देना चाहिए। कार्यस्थल में पानी का समझदारी से उपयोग करना है। अपने नियोक्ता को काम पर पानी और पैसे बचाने के तरीकों के बारे में सुझाव देना है। कार धोते समय नली के नोजल का उपयोग करें या पानी बंद कर दें। आप हर बार 100 गैलन तक पानी बचा सकते हैं। सुविधा प्रबंधकों या रखरखाव कमियों को रिसाव या पानी की बर्बादी की रिपोर्ट करने के लिए बाथरूम और रसोई में एक हॉटलाइन पोस्ट करें। अपने कर्मचारी समाचार पत्र में पानी की बचत करने वाली युक्ति शामिल करें जिसमें बताया गया हो कि प्रत्येक क्रिया से कितना पानी बचाया जा सकता है। सुनिश्चित करें कि आपकी सिंचाई प्रणाली केवल उन क्षेत्रों में पानी दे रही है जहां उसकी ज़रूरत है और पानी गलियों, सड़कों या गटरों में बर्बाद नहीं हो रहा है। नली

नोजल का उपयोग करके फुटपाथों को साफ करने में प्रति मिनट 8 से 12 गैलन पानी का उपयोग होता है। प्रेशराइज्ड वाटर बूम से आप अधिक कुशलता में से साफ करेंगे और प्रति मिनट केवल 2.8 गैलन पानी का उपयोग करेंगे। कंपनी के वाहनों को कैसे वाणिज्यिक कार वॉश में धोए जो पानी को रिसाइकल करते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके सभी नलों पर पानी की बचत करने वाला एरेटर लगा हो। सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए पुनः प्राप्त अपशिष्ट जल का उपयोग करने वाली परियोजनाओं का समर्थन करें। सखियों, हम घर में भी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें कि जब हम ब्रश करते हैं तो पानी का नल बंद हो, जब ज़रूरत हो तभी खोले, ना कि पानी का नल खोल दिया और ब्रश हो रहा है तब तक हम चालू रखें। शावर कम से कम करें, बाल्टी और मग्गे से पानी का यूज़ करें। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम पानी की बचत कर सकते हैं। जल संरक्षण एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम में से कुछ ही लोग काम कर सोचते हैं, क्योंकि हम वहाँ बिल नहीं देते हैं, क्योंकि हम जहाँ काम करते हैं वहाँ बिल कोई और देता है, इसलिए हम इसकी बात सोचते नहीं हैं, इसलिए अपनी खपत और लागत की मात्रा के बारे में जानकारी नहीं रखते। लेकिन हमारे कार्यालय और कारखाने बड़ी मात्रा में पानी की खपत करते हैं, इसलिए नौकरी पर भी बचत करना हर किसी का काम होना चाहिए। दरअसल प्रदेश में बेहद तेजी से जलस्तर गिर रहा है। प्रदेश के तमाम जिलों में केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट चौंकाने वाला खुलासा करती है। बीते 10 सालों में 63.24% तक भूमिगत जल में गिरावट आई है। साल दर साल कई जिलों में गंभीर हालत पैदा हुई है। 2007 से लेकर 2017 तक ही ये रिपोर्ट तैयार है, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश को बेंगलोर, मुंबई, जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद जैसी स्थिति में नहीं लाना है जहां 25% तक कम पानी की सप्लाई हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति को जरूरत से आधा ही पानी मिल रहा है। यहाँ की रिचार्ज सिस्टम अच्छी नहीं है, इससे जल संकट गहराया है। हमारा जो खंडवा का व्यापार उद्योग केंद्र है, ये भी अब सचेत हो गया है। इन्होंने भी जाके उनसे जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाई है। करीब 18 से 20 कंपनियों ने, इंडस्ट्रियों ने जल संरक्षण कराया है। जिनकी निजी भूमि है उसमें से भी 15-20 लोगों ने, उद्योगों ने जल संरक्षण कराया है। रेन फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग अपने घरों में भी कराना जरूरी है। बहनों, हम सभी को ये याद रखना है कि हम इस अनमोल प्राकृतिक धरोहर के स्वामी नहीं हैं, केवल एक रखवाले हैं। और हम हमारे बच्चों को अगर उनके वापरने के लिए दौलत ना छोड़ जाए तो कोई बात नहीं है, पर उनको प्राकृतिक संसाधनों को उनके लिए बचाए रखे तो हमने हमारा कर्तव्य जरूर पूरा किया है। सारे मिलके हमारे इस जल संरक्षण पे बिल्कुल जोर देंगे, घरों में बच्चों को भी बताएंगे कैसे पानी का इस्तेमाल करा जाए, और निश्चित हम हमारी सरकार को भी इससे हम लोग मदद कर पाएंगे।

सखियों, अभी हमने सुनी वार्ता जल एवं जल स्रोतों का संरक्षण। वार्ताकार थी हमारी सखी बीना शाह। उम्मीद है आपको ये वार्ता पसंद आई होगी। और सखियों, अब बारी है आज की रेसिपी की। सखियों, गर्मी में ताजगी और एनर्जी से भरपूर नींबू और पुदीने की शिकंजी एक बेहतरीन और झटपट बनने वाली ड्रिंक है। यह न सिर्फ आपको चिलचिलाती धूप से राहत देती है, बल्कि लू से भी बचाती है। और इसे बनाने में भी मात्र 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो चलिए आवश्यक सामग्री नोट कर लीजिए। इसके लिए आवश्यक सामग्री है नींबू एक बड़ा, ताज़ा और रसीला, पुदीने की पत्तियाँ 15 से 20, शक्कर 2 से 3 छोटे चम्मच, काला नमक 1/2 छोटा चम्मच, भुना जीरा पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, सादा या ठंडा पानी 2 गिलास और 4-5 बर्फ के टुकड़े। अब सखियों, पुदीने की पत्तियों को अच्छे से धोकर मिक्सर में थोड़े से पानी के साथ बारीक पीस लें। अब इसी जार में नींबू का रस,

शक्कर, काला नमक, भुना जीरा पाउडर डाल दें और 2 गिलास ठंडा पानी और जो बर्फ़ के टुकड़े हमने लिए थे वो भी डाल दें और कुछ सेकेंड के लिए मिक्सी चलाएं ताकि ये सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब सखियों, शिकंजी को छानकर कांच के ग्लास में निकाल लें और ऊपर से पुदीने की पत्ती और नींबू के स्लाइस लगाकर ठंडी ठंडी सर्व करें। तो ये थी आज की रेसिपी और अब सुनते हैं ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी जगत FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 11 बजे हैं। अब राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: रंग तरंग
2: रंग तरंग इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हूं नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। इस मिश्र संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुछ अलग अलग तरह के गीत, अलग अलग गायकों द्वारा गाए गए। लीजिए पहला गीत सुनवा रहे हैं आपको लकी अली की आवाज, शब्द रचना भी इन्हीं की और संगीत भी लकी अली का। एल्बम का नाम अक्स।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी।

रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए सुनिए अलीशा चिनॉय को। डांस डांस इस एल्बम का नाम है, अनजान के बोल है, बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

आइए सिफर एल्बम का गीत आपको सुनवाते हैं लकी अली की आवाज में। इससे संगीत से सजाया है लकी अली ने और लिखा है सईद असलम ने।

0: वे शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं,
0: क्या
1: जैसे
0: बात है।
1: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपने ट्यून किया है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं पॉप एल्बम का ये गीत, आवाज गुल सक्सेना की और किरण ने साथ दिया है। गीत और संगीत किरण, प्रगति तोमर और सौरभ ठाकुर का।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

अविनाश कुमार, अभिषेक शुक्ला की आवाज़ों में अभी आपने सुना, इन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत और रचना भी थी इन्हीं की। और

0: आपको अगला गीत सुनवाएंगे, पहले सुनिए ये संदेश।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: रंग तरंग कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए, फिल्म का नाम सात खून माफ। उषा उत्थप और रेखा भारद्वाज की आवाजें, गुलजार के बोल और धुन बनाई है विशाल भारद्वाज ने।
2: आंखों से आंखें चार करने दो डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्यता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन झूठी खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोट को बंद करके उनकी जगह प्लास्टिक नोट का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक संसाधनों के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर विचार विमर्श हुआ। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा

चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दिन में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। गीत सिर्फ शब्दों और सुरों का मेल नहीं, बल्कि भावनाओं की वो डोर है जो दिल से दिल को जोड़ देती है। कभी मुस्कान बनकर होठों पर खिलता है, तो कभी याद बनकर आंखों में उतर आता है। आइए अब सुनते हैं कुछ ऐसे खूबसूरत नगमे जिनकी शुरुआत ही गीत शब्द से होती है, या फिर इन गीतों में कहीं ना कहीं गीत ये शब्द शामिल है। आगाज कर रहे हैं लाल पत्थर फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, देव कोहली की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम, जिसमें हम गीत शब्द को लेकर कुछ गीत सुनवा रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं जीवन रेखा इस फिल्म का गीत, जिसे गाया है चंद्रानी।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

0: कलाकार फिल्म का गीत आपने सुना, सुरेश वाडकर की आवाज में इंदिवर की रचना थी, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

लीजिए अब आपको सुनवाते हैं 1948 की फिल्म मेला का गीत मुकेश का स्वर। मुकेश के स्वर, शकील बदायूनी की रचना और नौशाद अली का संगीत।

0: सुरैया की आवाज़ में आपने सुना दास्तां फिल्म का ये गीत, रचना शकील बदायूनी की थी और नौशाद अली का संगीत। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। और लीजिए अब सुनिए इंतकाम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम गीत। इस फिल्म का गीत आवाज जगजीत सिंह की, इंदिवर की रचना, और इस गीत को सुरों में ढाला है जगजीत सिंह ने।

एक था दिल एक थी धड़कन, इस फिल्म का गीत सुनिए उदित नारायण की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं और आनंद राज आनंद और सुरेंद्र सोढ़ी का संगीत।

साथियों, इस गीत की हम आपको सिर्फ झलक सुनवा पाए हैं क्योंकि कार्यक्रम का समय हो चला है। फिर किसी दिन किसी कार्यक्रम में आपको इस गीत को पूरा सुनवाया जाएगा। और अब यादों की महफिल कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होगा हमारा कार्यक्रम सुरीला सफर।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर, जो आज आप तय करेंगे अपनी साथी नेहा अगरकर देसाई के साथ। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम लाते हैं एक इबारत या फिर टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को पढ़कर आपको कुछ शब्दों को या फिर किसी पंक्ति को पढ़कर आपको पता करना होता है कि कौन से गीत आज के कार्यक्रम में बजने वाले हैं। तो आज की इबारत पढ़ी या नहीं? जी हाँ, उम्मीद है आपने इबारत पढ़ी ही होगी, टिप्पणियों की भरमार भी लग चुकी है। कुछ श्रोताओं का कहना है कि उन्हें ये इबारत कहीं कुछ मिलती जुलती नहीं लगती, बिना सिर पैर की लगती है। तो फिर क्या किया जाए, पढ़कर सुनाया जाए? जी हाँ, कभी कभी लिखी हुई बातों में भावनाएं पूरी तरह नहीं पहुंचती हैं। कुछ श्रोता शायद समझ गए हैं, उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां लिखी भी हैं, जिनसे समझ आ रहा है कि वो जान गए हैं कि भावनाएं क्या है। मगर अगर आप ये नहीं समझ पाए हैं तो चलिए एक बार इबारत को पढ़ देते हैं। अचानक हमारी मुलाकात एक बाग में हुई। उसने कहा, सुनो, जरा मेरे पास आओ, बैठो, कुछ बात करनी है। फिर साथ

चलते हुए उसने धीरे से मेरे कानों में कहा, सुनो। मेरी तो धड़कनें ही बढ़ गईं। मेरी हालत देखकर उसने बात ही बदल दी और कहा, आप यहाँ आई किस लिए हैं ये तो बताइए। मैं समझ गई कि बात शायद कुछ और थी। फिर कुछ देर बाद बातों बातों में उसने कहा कि सोचो कभी ऐसा हो कि हम तुम साथ में खंडाला घूमने चलें। देखो तुमने वादा किया था कि जुम्मे के दिन चलोगी और आज जुम्मा है तो चलोगी ना। मैंने हंसकर कहा, कौन मैं? तो कहने लगा, हाँ तुम। मैंने भी ठिठोली करते हुए कह दिया, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है तो अब हम चलते हैं। और मैं वहां से भाग निकली। तो क्या अब आपके पास वो भावनाएं पहुंची हैं? जब आपकी टिप्पणियां देखते हैं तो मन में लगता है कहीं हमारी भावनाएं पहुंची नहीं है या फिर कुछ कमी रह गई है। तो इसीलिए सोचा एक बार पढ़कर सुनाने के बाद हो सकता है कि आप इन्हें पहचान ले, समझ ले, हमारी भावनाएं समझ ले। तो चलिए इसी के साथ ज्यादा बातें नहीं करेंगे, पहले कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और हाँ, आज के कार्यक्रम में जो गीत हैं उनमें एक और खास बात है, वो भी आपको पहचाननी है। जैसे कि आप लोग हमेशा कहते हैं मैं गूगली डालती हूँ, तो गूगली डाली ही है, अब आपको पहचाननी है क्या है। लीजिए आपको सुनवाते हैं मिस्टर नटवर लाल फिल्म का गीत अमिताभ बच्चन और मास्टर रवि की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत। तब तक सोचिएगा सारे गीतों में क्या बात कॉमन है।

0: नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे। अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में। बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।

तो अगर अब मैं ये कहूँ कि आज तो आप लोगों ने गुगली डाल दी है। हाँ, कमेंट्स पे कमेंट्स, कमेंट्स पे कमेंट्स आते जा रहे हैं। और आप लोगों ने सच में जो पहचाना है वो बिल्कुल सही है। किसी ने लिखा है, गानों के बीच में या शुरुआत में कुछ वाक्यांश या नायक नायिका जिस पर ये गाना फिल्माया गया है उनकी आवाज़ है। जी हाँ, ये बात सही है। शायद आज किसी ने लिखा है, शायद आज के सब गानों में संवाद है। जी हाँ, ये भी सही है। किसी ने लिखा है, शायद वार्तालाप नुमा गाने पेश किए जाएंगे। बिल्कुल सही। किसी ने कहा, सभी को मैं अभी अभी जुड़ा हूँ, इबारत भी नहीं पढ़ी है, लेकिन आपने जिन बातों का जिक्र किया है उनसे ऐसा लगता है कि आज के गानों में जो आम बात है वो ये है कि गाने ऐसे हैं जिसमें बातचीत हो रही है या कोई कहानी कही जा रही है। जी हाँ, आप सभी सही हैं। आज ऐसे गाने शामिल किए गए हैं जहाँ या तो आपको नायक नायिका की आवाज़ें सुनने मिलेंगी या फिर जिसने गीत गाया भी है, जो गायक कलाकार है, उसने भी संवाद के रूप में गीत को गाया है। तो ऐसे ही कुछ गीतों को आज हम आपको सुनवाएंगे। और चलिए, कुछ जो टिप्पणियां आई हैं हमारे आज के कार्यक्रम को लेकर, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत प्रेम की पहली अनकही अनुभूति, झिझक और उस प्यारी सी घबराहट को बहुत खूबसूरती से बयां करते ही है। ये प्रेम की उस मासूम और चुलबुली दुनिया की झलक दिखाती है जहाँ दिल की बात जुबां पर आते आते रह जाती है। उन शुरुआती मुलाकातों की मासूमियत को दर्शाती है जहाँ आँखों की भाषा और धड़कनों की सरगम शब्दों से ज़्यादा बोल जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो पहला पहला प्यार जब होता है तो हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है और कैसे आगे बढ़ा जाए। जी हाँ, आपकी जो टिप्पणियाँ हैं वो भी यही सब कह रही हैं। बहरहाल, सुनिए सिलसिला फिल्म का गीत, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर की आवाज़ों में, जावेद अख्तर के बोल, शिव हरी का संगीत।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुरीला सफर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और लीजिए अब आपको बताते हैं कुछ टिप्पणियों के बारे में। एक साथी ने लिखा है, मुलाकातें प्रेम में कितनी ज़रूरी है ये तो प्रेम करने वाले ही जानते हैं। जब प्रेम होता है तो हम बहुत कुछ समझ लेते हैं। थोड़ा कम बोलना और हर बात को समझ लेने की शुरुआत प्रेम से ही तो होती है, पर प्रेम का हर पल मूल्यवान है। यही पल है जो हसीन है, खुशनुमा है, इन पलों को ज़ाया ना होने दें, क्योंकि जो भी है बस यही एक पल है। किसी ने लिखा है, आज की इश्किया इबारती इमरती में मिठास ही मिठास है, जहां प्रियतम और प्रेयसी दोनों की मोहब्बत का इजहार, इकरार, तकरार और स्वीकार का जिक्र है। कुछ शरारतें मोहब्बत के लिए ज़रूरी हैं, जिनका खूबसूरती से समावेश किया गया है। क्या बात है, मतलब आपको यदि इस इबारत से

मिठास ही मिठास है, जहाँ प्रियतम और प्रेयसी दोनों की मोहब्बत का इजहार, इकरार, तकरार और स्वीकार का जिक्र है। कुछ शरारतें मोहब्बत के लिए ज़रूरी हैं, जिनका खूबसूरती से समावेश किया गया है। क्या बात है, मतलब आपको यदि इस इबारत से समझ आ गया है कि हाँ आज हम कौन से गीत सुनवा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। आइए अब आपको ये अगला गीत सुनवाते हैं, और शब्द तो जैसे कि आपने पहचान ही लिए हैं, तो लीजिए सुनिए ये गीत कल आज और कल इस फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें। नीरज ने इस गीत को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत। आप यहाँ आए किस लिए, तो यही वो शब्द हैं जो आपको पहचानने थे।

0: लड़कियों,
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं, सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो।

इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: बताइए।
1: पहले जरा

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा
1: प्यार

0: Blitzkrieg.
1: हमारी आज की इबारत को एक श्रोता साथी ने कुछ अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए लिखा है। उन्होंने लिखा है, बात की शुरुआत में जब उसने पास बुलाकर कानों में कहा सुनो, तो वहां जो धड़कनों का बढ़ना था वो जज्बातों की सबसे सच्ची गवाही थी। अक्सर शब्द उतने गहरे नहीं होते जितनी गहरी वो खामोशी या पुकार होती है जो दो लोगों के बीच का तापमान बढ़ा देती है। उसने आपकी हालत देखकर बात बदल दी, यही तो उस दौर की तहजीब और परवाह है जहां सामने वाले की झिझक का पूरा एहतराम किया जाता है। ये महज एक मुलाकात नहीं बल्कि शब्दों से बुना हुआ एक ऐसा खूबसूरत शायराना मंजर है जिसे जितनी बार पढ़ा जाए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। एक साथी ने लिखा है, आज आपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्यमयी इबारत की इबादत से ये पता चलता है कि दोनों प्रणय आवेग में डूबे प्रेमी नयनों के सहारे से आगे बढ़ते हुए आपसी वार्तालाप के सागर में डुबकी लगाने के प्रयास में रत हैं और एक दूसरे के मनोदशाओं से भली भांति परिचित होने हेतु उद्यत हैं। इस दृष्टिकोण से आज की इबारत करने योग्य इबारत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए इसी इबारत से जुड़े गीतों में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं बातों बातों में इस फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, अमित खन्ना के बोल राजेश रोशन का संगीत।
2: सुनिए
3: कहिए कहिए,
2: सुनिए सुनिए
3: कहिए कहिए ना।

0: सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत पढ़कर 45 साल पहले की दुनिया में पहुंच गया। यहाँ लड़की का जो हाल है, अमूमन वो ही हाल हम लड़कों का भी हुआ करता था। किसी लड़की से प्यार है तो ग्रीन सिग्नल उधर से भी मिल रहा है, लेकिन इजहार कैसे करें बहुत मुश्किल थी। मैं आज की पीढ़ी को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ कि उनके ज़माने में मोबाइल आ गया और सब मुश्किलें आसान हो गई। हमें ले देकर सिर्फ खतों का सहारा था, लेकिन उसमें भी बहुत रिस्क थी। शर्म और झिझक का ठेका हमारी पीढ़ी ने ही उठा रखा था, लिहाजा प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। उसकी शादी कहीं और हो गई और मैं ज़िंदगी के नए सफ़र में नौकरी के लिए कहीं और चल दिया। अब इस बात को पढ़कर हम एक ही बात कहेंगे कि कभी कभी हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे बात बदल तो नहीं जाती, लेकिन दिलासा ज़रूर मिलता है। एक साथी ने लिखा है, नेहा जी आप लोग बताते हैं कि पहले से ही इबारत डालते हैं, मुझे इबारत पहले से नहीं मिलती। जब आप रेडियो में बताते हैं तब इबारत सुनती हूँ और फिर उसके बारे में सोचने का, गाने पोस्ट करने का समय ही नहीं मिल पाता। हो सकता है कि आपको इबारत नहीं दिख रही हो, आप पेज को रिफ़्रेश कीजिए। जब आप फेसबुक खोलेंगे तो पेज को रिफ़्रेश कीजिए, विविध भारती सर्च करने के बाद एक बार फिर करके देखिए। हो सकता है कि पेज रिफ़्रेश ना होने के कारण आपको इबारत नहीं दिखती हो, जब आप रिफ़्रेश करेंगे उसके बाद भी जब आपको सुरीला सफ़र की पोस्ट दिखेगी उस पर आप मोर पर जाइए, या फिर आपको दिखेगा और देखें, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन जहां आपको दिखे वहां आप क्लिक कीजिए तो आपको पूरी इबारत पढ़ने को मिल जाएगी। तो अगली बार ज़रूर बताइएगा कि समस्या का समाधान हुआ या नहीं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं बॉबी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र सिंह के बोल, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
3: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

चलिए एक बार इबारत फिर रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से गाने हो चुके हैं। अचानक हमारी मुलाकात एक बाग में हुई। उसने कहा, सुनो जरा मेरे पास आओ, बैठो, कुछ बात करनी है। फिर साथ साथ चलते हुए उसने धीरे से प्यार से मेरे कानों में कहा, सुनो। मेरी तो धड़कनें ही बढ़ गई। मेरी हालत देखकर उसने बात बदल दी और कहा, आप यहाँ आई किस लिए, ये तो बताइए। मैं समझ गई कि बात शायद कुछ और थी। फिर कुछ देर बाद बातों बातों में उसने कहा कि सोचो कभी ऐसा हो कि हम तुम साथ में खंडाला घूमने चले। देखो तुमने वादा किया था जुम्मे के दिन चलोगी और आज जुम्मा है तो चलोगी ना। मैंने भी हंसकर कहा, कौन मैं, तो कहने लगा, हाँ तुम। मैंने भी ठिठोली करते

0: अवश्य करेंगे और क्या।
1: और फिर जब इबारत में जुम्मे की बात हो ही रही है और मिलने चलने की बात हो ही रही है, तो लीजिए सुनिए सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में ये गीत, फिल्म हम से आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा, कि मेरी तो कभी भी किसी के साथ बाग में मुलाकात हुई ही नहीं है, जिसे मैंने कहा हो जरा मेरे पास आओ और बैठो। हाँ, शादी के बाद अपनी धर्मपत्नी के साथ कई बार बाग में खंडाला और लोनावला घूमने का मौका जरूर मिला है, बातों बातों में सुना और सुनाया भी है, तो प्यार तो होना ही था जो आज तक धर्मपत्नी के साथ कायम है। क्या बात है, आपने अपना अनुभव साझा किया है कि बातों बातों में किस तरह प्यार हो जाता है। तो चलिए हम कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको सुनवाते हैं अजनबी फिल्म का गीत। ये फिल्म नई अजनबी फिल्म है, उदित नारायण, अलका याग्निक, बॉबी देओल और अक्षय कुमार की आवाज़ें हैं, समीर के बोल हैं, अनु मलिक की धुन है। और शब्द है कौन मैं, हाँ तुम।

0: Bastão.
1: Ofo. तो श्रोताओं, आज जिन गीतों को हमने शामिल किया था वो ऐसे ही कुछ संवाद वाले गीत थे। हिंदी फिल्मों के गीत केवल सुरों और शब्दों का जादू ही नहीं होते, बल्कि कई बार उनमें छिपे संवाद भी उन्हें और खास बना देते हैं। कभी दो दिलों की मीठी नोक झोंक, कभी प्यार भरी बातें, तो कभी जीवन के अनमोल संदेश, ये संवाद गीतों में एक अलग ही रंग भर देते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई कहानी हमारे सामने जीवंत हो उठी हो। आज की इस विशेष संगीत यात्रा में हमने ऐसे ही कुछ चुनिंदा गीत सुनवाए जो संवादों को अपने आप में लिए हुए थे। कहीं ना कहीं उनमें संवादों की खूबसूरत छटा बिखरी हुई थी। तो क्या आपको ये गीत पसंद आए? आप हमें बिल्कुल बताइएगा आपके इस पर क्या विचार है वो। और चलिए चलते चलते एक छोटी सी झलक सुन लेते हैं उस बहाने भरे गीत की जो देकर हमारी इबारत की नाई का भाग निकली थी। तो लीजिए सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम आन मिलो सजना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
2: अच्छा।

और इसी के साथ हमारे भी चलने का समय हो गया है। आपको छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता, लगता है इबारत की पहेलियां यूं ही सुलझाई जाएं आपके साथ, मगर समय इजाजत नहीं देता। तो चलिए सुरीला सफर कार्यक्रम से अब नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

आज त्रिवेणी में धन की बातें होंगी। लोग ये समझते हैं कि धन का मतलब है रुपए, पैसे, गहने, जमीन और वस्तुएं, लेकिन केवल इन्हीं चीजों को धन समझना अपनी सोच को सीमित करना है। धन और भी कई प्रकार के होते हैं, उनकी भी हमें कद्र करनी चाहिए। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो भी हम बहुत धनी हैं। सेहत का जितना नुकसान होता है उतना ही बड़ा हमें उपचार करना पड़ता है, यानी धन खर्च करना पड़ता है। इसलिए सेहत रूपी धन को बचाइए। ज्ञान अर्जित करना भी बहुत बड़ा धन है और ये एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और न ही कोई लूट सकता है। ज्ञान ही हमें भौतिक संपदा के सही इस्तेमाल की क्षमता देता है, इसलिए ज्ञान रूपी धन को अर्जित कीजिए।

समय रूपी धन तो हम सबके पास होता है। दिन के 24 घंटे सभी के लिए बराबर होते हैं, इसलिए समय का इस्तेमाल सोच समझकर और सही जगह पर करना चाहिए। समय रूपी संपदा को बुद्धिमानी से प्रयोग करें, अपनी प्राथमिकताएं तय करें, योजना बनाएं और अनुशासन में रहकर समय को खर्च करें।

अगला धन है मान सम्मान। हमें अपने मान सम्मान की हिफाजत करनी चाहिए। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे लोग आपका सम्मान करना छोड़ दें या जरूरत पड़ने पर कोई आपकी सहायता को न आए। रुपए पैसों के नुकसान की भरपाई तो हो जाती है, पर गया हुआ सम्मान मुश्किल से ही मिल पाता है। इसलिए सम्मान रूपी धन को सहेजें।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये जनता के उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उन्होंने पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि ये योजनाएं उनके दिल में खास जगह रखती हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार कार्यकाल की सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आजादी के बाद निर्वाचित रूप से

0: अधिक समय तक देश की सेवा करने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बनाया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकलकर सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं।
1: हम सबका सौभाग्य है आज भारत की आजादी के बाद निर्वाचित रूप से सर्वाधिक अधिक अवधि तक काम करने का नया रिकॉर्ड यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बन रहा है। सर्वाधिक रूप से सक्षमता के साथ काम करने वाले पूरे देश के सबसे बड़े नेता और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक 80 करोड़ लोगों का तो पेट भर रहा, 25 करोड़ लोगों का मकान दे रहा, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखाओं से बाहर ला रहे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनसेवा ही सुशासन का सच्चा मापदंड है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर काम करता है वही जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है। इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दूसरे दिन विदेशी मेहमानों को शहर की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया गया। 20 से ज्यादा देशों के कृषि मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने ऐतिहासिक राजवाड़ा में हेरिटेज वॉक की और होलकर काल के इतिहास को करीब से जाना। विदेशी मेहमानों ने इंदौर का मशहूर पोहा जलेबी का नाश्ता भी चखा। सम्मेलन में आज साझा घोषणा पत्र के मसौदे पर विचार विमर्श होगा और शाम को द्विपक्षीय बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाने के प्रावधान को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। यह नियम साल 2001 में लागू हुआ था जिसके तहत 2 से ज्यादा संतान होने पर सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों में अयोग्य माना जाता था। मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग को इस प्रावधान को तत्काल पोर्टल से हटाने और नया प्रारूप प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद विवाद गहरा गया है। कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा। वहीं भाजपा का आरोप है कि नटराजन ने शपथ पत्र में हैदराबाद कोर्ट के एक लंबित मामले की जानकारी छिपाई जिसके आधार पर कल उनका नामांकन रद्द किया गया। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों के बीच मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। एक तरफ खजुराहो में जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के 18 जिलों में आंधी बारिश हुई है और जबलपुर व दमोह में ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति भवन से इसकी औपचारिक स्वीकृति मिल गई है। छिंदवाड़ा कलेक्टर की अध्यक्षता में जिले के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के अंतर्गत संचालित सभी विद्यालयों की जिला स्तरीय समन्वय समिति DLC की बैठक आज आयोजित की गई। शिवपुरी जिले में आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश व्यापक तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं और ITI मंडला द्वारा कल सुरक्षा जवान, ड्रोन पायलट, सुरक्षा सुपरवाइजर और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों के लिए भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में NDA की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत

0: मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है। देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है। इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारत के गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 300

0: हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
1: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि

0: चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमेरिका के पांचवे बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमरीका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इसराइली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कोणार्क होस्ट और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं छलिया फिल्म से मुकेश की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते, दाएं देखो तो

0: पर इलाहाबादी रहते थे। बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार
1: वो
0: था।
1: हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अपना घर। इस फिल्म का गीत गीता दत्त और मुकेश के स्वरों में, प्रेम धवन के बोल हैं, रवि का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया गीत भूत बंगला फिल्म से। हसरत जयपुरी ने इसे शब्दबद्ध किया है और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो
3: बहु बेटी फिल्म का गीत अब सुनिए। आवाज है मोहम्मद रफी की, साहिर लुधियानवी की रचना है, रवि का संगीत।

0: हाय मेरी जान ना सता तू।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और लीजिए इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए। फिल्म का नाम दो बदन, इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, रचना शकील बदायूं ने की है और धुन बनाई है रवि ने।

0: सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली जी, आपको भी और श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: और क्या हालचाल है?
1: बस ठीक हूँ, बहुत दिन बाद आपके साथ इस कार्यक्रम में आई हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
0: कैसा होता है ना कि जब हम बाहर मिलते हैं उसकी बात कुछ और होती है, और जब हम सखी सहेली के मंच पर होते हैं तब हम होते हैं, आप होते हैं, हमारे साथ बहुत सारी सखियां होती हैं, बहुत सारे श्रोतागण होते हैं और उनके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, तो
1: बिल्कुल
0: वो जो महफिल होती है ना उसकी उसका हम शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल। और वो कहते हैं ना, जैसे कि हर जगह की एक वाइब होती है, एक
0: हाँ
1: ऊर्जा होती है, तो यहाँ की एक अलग ही ऊर्जा होती है। यहाँ हम बिल्कुल खिलखिला के ऐसे बात करते हैं जैसे हमारी रोज मुलाकात होती हो, है
0: और
1: ना।
0: है ना, और हम कल्पना के माध्यम से ऐसा महसूस करते हैं ना कि बहुत सारे श्रोता भाई, बहुत सारी सखियां बैठे हुए हैं अपने आंगन में, कोई पेड़ के नीचे तो कोई घरों में, और हमारा सखी सहेली कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारा अपना
1: बिल्कुल
0: कार्यक्रम सुन रहे
1: बिल्कुल सही कहा आपने। गर्मी के दिनों की याद दिला दी आपने कि
0: हैं।
1: जैसे गर्मी की छुट्टियों में पेड़ों की छांव में बैठा करते थे वैसा।
0: विषय बता दे।
1: बिल्कुल।
0: आज का जो विषय है ना, सब्जी वही अंदाज नया, ये व्यंजन हम जो लेकर आते हैं उसमें, तो आप भी बताइए कि वही वही बोरिंग सी सब्जियां खा के अगर आप बोर हो चुके हैं तो आप कुछ ऐसा कुछ अलग करते हैं कि उसी सब्जी को कुछ अलग अंदाज में बनाते हैं, तो वो हमें जरूर बताइएगा, हमें कमेंट्स कर कर करके लिखिएगा कि आपके घर में ऐसे अलग क्या बनाते हैं। अब जैसे पत्ता गोभी की सब्जी है, हमेशा खा खा के हम बोर हो गए तो उसमें हम एक शिमला मिर्ची डाल दी तो उसमें थोड़ी उसकी लज्जत बढ़ जाएगी, या फिर थोड़ी सी चना दाल भिगो के उसमें डाल दी तो भी अच्छी लगती है, या फिर थोड़ा सा बेसन डाल दिया तो भी अच्छी लगती है, यानी उसको तो अलग अलग तरह से बनाए तो घर के लोग भी बोर नहीं होते और बनाने वाले को भी मजा आता है।
1: और सब्जी का रूप बदल जाता है तो खाने में भी मजा आता है।
0: वैसे आजकल जो है ना, समय जो बदल रहा है उसमें घर के लोग चार होते हैं पर खाने वालों के नखरे हजारों।
1: हजार होते
0: पुराना जमाना याद
1: हैं।
0: कीजिए, हमारी माँ कभी पूछती नहीं थी कि भाई क्या खाना है क्या है, बस उसे जैसे पता चलता था कि नहीं ये सेहत के लिए भी अच्छा है, बहुत दिन से ये सब्जी नहीं बनी है, इस तरह की दाल बनाए, वो बिना पूछे बनाती थी और हम लोग चुपचाप खा भी लेते थे।
1: और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता था कि जो बना है वही खाना है, और आपको नहीं पसंद आ रहा है भले आप थोड़ा कम लीजिए, पर आदत हर चीज की होनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: यही वजह है कि आज हम लोग सब तरह की सब्जियां खाते हैं और आदत भी बन गई है अब वैसी ही, लेकिन यही अब आज की दुनिया में बदल गया है।
0: और आजकल हो क्या रहा है नेहा कि आजकल हम मोबाइल की दुनिया में इतने उलझ रहे हैं कि हमारे बीच में संवाद ही नहीं हो रहे हैं, है ना।
1: समझ रही हूं मैं आपके आपका इशारा किस और है।
0: जी, शब्द हमारा, विचार आपके, इसमें संवाद पर आप कमेंट्स लिखकर भेजिएगा कि आपके परिवार में संवाद होता है, या फिर आपके दोस्तों के बीच में संवाद हो रहा है, या संवाद पीछे छूटता जा रहा है।
1: और किस तरह का संवाद होता है।
0: है ना। हाँ
1: बिल्कुल। और फिर इसके अलावा हमारी महिला श्रोताओं का फेवरेट जो है साड़ियों का संसार।
0: उसमें हम चंदेरी साड़ी, मध्य प्रदेश की जो विरासत है चंदेरी साड़ी, उसके बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे श्रोता भाई वो भी लिख कर बताएं, हमारी बहनें लिख के बताएं कि आपने चंदेरी साड़ी खरीदी है या अभी खरीदना बाकी है ना, और अगर खरीदी है तो किस कलर की चंदेरी साड़ी आपके पास में है।
1: बिल्कुल। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय बता दीजिए।
0: जी, आज है विश्व नेत्रदान दिवस, जो
1: जी
0: बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए, यानी जब हमारे पास में आंखें हैं ना तो हमें उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, पर जिनके पास आंखें नहीं है उन्हें इसकी बहुत ज़्यादा महत्ता मालूम है, तो मरणोपरांत आप नेत्रदान ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी बदौलत लोगों के जीवन में रोशनी आए, यानी यूँ कह लीजिए कि मरणोपरांत भी हम किसी के हमारी आंखों के माध्यम से दुनिया देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और सोनाली जी, जब हम इस विषय पर बात करेंगे तो मैं अपना एक अनुभव भी बताना चाहूंगी जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए एक सीख हो सके। मैंने अपनी गलती से सीखा, हो
0: जी
1: सकता है वो किसी के लिए यानी एक पहले से पता चल जाए कि हाँ
0: जी
1: ये गलती ना हो सके, तो वो बात भी करेंगे।
0: बिल्कुल, स्वागत है आपकी, आपके कमेंट्स का, आपकी बात का। और अब क्या करें,
1: जी अब एक गाना सुनवा देते हैं, बहुत
0: सुनते हैं
1: बातें हो
0: गीत।
1: गई
0: जी, सुनते हैं गीत।
1: हैं। ठीक।

0: मैसेज में खो गई थी।
1: हाँ, अपनी श्रोताओं के कमेंट्स देख रही हूँ, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, और इतने सारे आए हैं कि क्या बताऊँ।
0: और हर किसी का अलग अंदाज है, हर किसी की लेखनी अलग है, पर जो हमारे श्रोतागण लिखते हैं ना, बहुत सुंदर लिखते हैं, इतना सुंदर उनकी लेखनी है, सचमुच समृद्ध है वे अपनी लेखनी को लेकर। और आज जैसे कि दो विरोधाभास है, संवाद दिवस भी है, पर
1: हाँ
0: कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ बातें बिना कहे एक दूसरे को समझ में आ जाती है, वो हम आंखों के माध्यम से बोलते हैं, पर वो
1: बिल्कुल
0: बात वही समझ सकता है जिनके पास नेत्र हैं या आंखों में रोशनी है। तो आज
1: जी
0: अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस है, तो लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता के तहत प्रतिवर्ष 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस मनाया जाता है।
1: मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में उजाला भरना ही नेत्रदान का सबसे बड़ा संदेश है। विश्व नेत्रदान दिवस लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने और इसके महत्व को समझाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हमारी आंखें प्रकृति का अनमोल उपहार है ना? इन्हीं के माध्यम से तो हम इस सुंदर संसार के रंग रूप और विविधता को देख पाते हैं।
0: बिल्कुल। और किंतु अनेक लोग ऐसे होते हैं नेहा, जो दृष्टिहीनता के कारण इस सौंदर्य से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का सबसे सरल और महान माध्यम है नेत्रदान। और नेत्रदान का अर्थ है कि मृत्यु के बाद अपनी आंखों के कॉर्निया यानी नेत्र गोलक के पारदर्शी भाग का दान करना। किसी व्यक्ति की मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर उसकी आंखें सुरक्षित रूप से निकालकर उन लोगों को प्रत्यारोपित की जा सकती है जिनकी दृष्टि कॉर्निया की खराबी के कारण चली गई हो। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है।
1: अब सोनाली जी, यहीं आपको थोड़ा सा रोकूंगी, और वही बात जो मैंने कही थी कि मैं बताने वाली
0: जी
1: हूँ। अब मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि मेरे दादाजी की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने भी नेत्रदान किया हुआ था। हम लोगों को पता भी था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अगर किसी ने नेत्रदान किया हुआ है तो उस व्यक्ति को बर्फ पर नहीं रखा जाता जब
0: ओहो।
1: तक, हाँ, जब तक उसकी आंखें निकाल नहीं ली जाती हैं तब तक। अब ये हमें पता नहीं था, चूंकि हमारे कुछ रिश्तेदार दूर से आने वाले थे इसलिए उन्हें हमें हमने बर्फ पर रखा था। तो अब हुआ यूं कि चूंकि हमने 1 ही घंटे के अंदर या बहुत जल्दी बता दिया था डॉक्टर को कि इन्होंने नेत्रदान किया हुआ है, तो प्रोसीजर क्या है पूछा था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि चूंकि इन्हें हमने अब उस पे रख दिया है तो अब हम उन नेत्रों को नहीं निकाल सकते।
0: ओहो।
1: तो चूंकि हमें बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने नेत्रदान किया था उस समय लेकिन वो काम नहीं आ पाया, तो श्रोताओं से भी यही कहना चाहूंगी कि जब ऐसी स्थिति हो, यदि आपके घर में किसी ने नेत्रदान किया है, तो आप ये ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को तुरंत बिना कहीं और शिफ्ट किए या फिर कहीं बर्फ पर रखे बिना डॉक्टर को बताया जाए कि इन्होंने नेत्रदान किया है, ताकि अगली कार्रवाई की जा सके।
0: ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि भाई मुझे नेत्रदान करना है, और गलती से अगर उन्हें बर्फ पर रख दिया तो अगर उन्हें उनकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो
1: नहीं
0: पाई
1: हो
0: तो
1: पाती।
0: हमें बहुत
1: जी
0: बुरा लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और नेत्रदान केवल एक दान नहीं है नेहा, बल्कि किसी के जीवन में नई आशा और नया सवेरा लाने का कार्य है। और
1: बिल्कुल
0: भारत सहित विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग कॉर्निया संबंधी समस्याओं के कारण दृष्टिहीन है। इन लोगों के लिए नेत्र प्रत्यारोपण ही दृष्टि प्राप्त करने का एकमात्र उपाय होता है।
1: सोनाली जी, दुर्भाग्यवश जागरूकता की कमी, अंधविश्वास और जानकारी के अभाव के कारण नेत्रदान करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। यही कारण है कि नेत्रदान दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नेत्रदान करने से शरीर की सुंदरता प्रभावित हो जाएगी या धार्मिक रीति रिवाजों में बाधा आएगी, जबकि सच ये है कि नेत्रदान की प्रक्रिया अत्यंत सम्मानजनक और वैज्ञानिक होती है। इससे मृत व्यक्ति के चेहरे की बनावट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और लगभग सभी धर्म इसे मानव सेवा का श्रेष्ठ कार्य मानते हैं।
0: और इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजे हैं। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि नेत्रदान महादान, नेत्रदान एक वरदान, नेत्रदान का संकल्प ले ताकि किसी का अंधेरा जीवन उजाले से भर जाए। हर स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आंखें सही सलामत है नेत्रदान की घोषणा कर सकता है, नेत्रदान महाकल्याण। बहुत सुंदर बातें इन्होंने लिखकर भेजी है।
1: हमारे एक साथी ने तो ये भी लिखा है कि उनके पिताजी की अभी अभी मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने उसकी सूचना दी होगी, तो उनकी भी आंखें ले गए, और क्योंकि वो पहले से अपनी आंखें दान कर चुके थे तो इन्होंने भी उसके लिए हामी भर दी, तो ये
0: और
1: एक अच्छा कार्य था।
0: बहुत अच्छा कार्य किया है, और इस मैसेज को पढ़कर बहुत सारे लोग प्रेरित भी हो सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: और एक साथी ने लिखा, नेत्रदान ऐसा दान है जो मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में नई आशा, आत्मविश्वास और खुशियां भर देता है। हमारी आंखें इस संसार की सुंदरता देखने का माध्यम है, और मृत्यु के बाद इन्हीं आंखों से किसी नेत्रहीन व्यक्ति

0: के जीवन में उजाला लाया जा सकता है। नेत्रदान दिवस हमें इस पुनीत कार्य के प्रति जागरूक करने और लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने का अवसर देता है। इसलिए हमें स्वयं नेत्रदान का संकल्प लेना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। नेत्रदान महादान है, आइए किसी के जीवन में रोशनी का उपहार बने।
1: एक साथी लिख रहा है, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, धन्य हुए आज तो हम, मिट गए सारे अंधियारे, आंखों को बहुत सुकून आया जो आप हमारे सखी सहेली मंच पर पधारे। देखिए आज नेत्रदान दिवस है तो इन्होंने आंखों को लेकर ये शायरी लिख कर हमें भेजी है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि शरीर का हर एक अंग महत्वपूर्ण है लेकिन आंखें सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्राणी मात्र और मनुष्य जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नेत्रदान को महादान नाम देकर हमारी सरकार ने भी एक सूत्र जारी किया है, नेत्रदान महादान।
1: महादान।

सोनाली जी बड़ी अच्छी बात लिखी है हमारे एक साथी ने। उन्होंने लिखा है, नेत्रदान दिवस ये दिन नेत्र जैसे महादान के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी नेत्रदान करने पर जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। मैं खुद नेत्रहीन हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि नेत्रदान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है जिनके पास आंखें नहीं होती है। इसलिए मैं आज हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप सभी जीवन में

0: मैं खुद नेत्रहीन हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि नेत्रदान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है जिनके पास आंखें नहीं होती हैं। इसलिए मैं आज हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप सभी जीवन में ये संकल्प लें कि आप नेत्रदान करेंगे, किसी की जिंदगी बचाएंगे। आपके एक नेत्रदान से कितनी जिंदगियां बन सकती हैं, और जो नेत्रदान से जुड़े हुए मित्र हैं उनसे दूर हैं। तो यही इनका कहना है कि हम ऐसे लोगों से जुड़ें और इस बात का प्रचार प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नेत्रदान
1: कर सके। और मुझे ऐसा लगता है इनका कमेंट्स पढ़ के बहुत सारे लोगों ने मन में निश्चय भी कर लिया होगा कि मैं भी नेत्रदान करूंगी ताकि लोग इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत दुनिया देख सके। और जब भी खूबसूरती का जिक्र चलता है तो हमें याद आती है बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ, और साड़ी में जो स्त्री का सौंदर्य है ना और भी
0: झलक उठता है।
1: बहुत सुंदर दिखती है महिलाएं साड़ियों में। और आज हम साड़ियों का संसार, इसमें हम चंदेरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की है तो उस बारे में जानकारी देंगे कि चंदेरी साड़ी भारत की प्रसिद्ध हथकरघा साड़ियों में से एक है। ये साड़ी मुख्य रूप से चंदेरी नगर में बनाई जाती है जो मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। अपनी महीन बुनाई, हल्के वजन, पारदर्शी बनावट और सुंदर जरीकारी के कारण चंदेरी साड़ी देश विदेश में अपनी विशेष पहचान रखती है।
0: इसे भारतीय वस्त्र कला का एक अनमोल रत्न माना जाता है। चंदेरी नगर का इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये नगर प्राचीन काल से व्यापार, संस्कृति और कला का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। राजाओं महाराजाओं के संरक्षण में यहाँ की बुनाई कला विकसित हुई। कहा जाता है कि चंदेरी के वस्त्र इतने महीन होते थे कि उन्हें राजघरानों और शाही परिवारों के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता था।
1: और मुगल काल में भी चंदेरी के कपड़ों की काफी मांग थी। उस समय के शासक और अमीर लोग चंदेरी के वस्त्र पहनना प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे। और चंदेरी साड़ी अपनी विशिष्ट खूबियों के कारण अन्य साड़ियों से अलग पहचान रखती है, जैसे अत्यंत हल्की और आरामदायक होती है, साथ ही महीन धागों से तैयार की जाती है।
0: और इसमें सुनहरी और चांदी जैसी जरी का सुंदर उपयोग किया जाता है। इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है। पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के डिजाइन्स उपलब्ध होते हैं।
1: और चंदेरी साड़ियों के प्रकार जैसे कि शुद्ध रेशमी चंदेरी पूरी तरह से रेशम से निर्मित होती है साड़ियाँ, साथ ही चंदेरी कॉटन। अब जैसे कुछ लोगों को ना थोड़ी नरम, ज्यादा नरम साड़ियाँ पसंद है तो वे चंदेरी कॉटन साड़ियाँ पहन सकते हैं जो सूती धागों से बनी हल्की साड़ी होती है। साथ ही सिल्क कॉटन चंदेरी यानी रेशम और सूती धागों का मिश्रण होता है, और जरी युक्त चंदेरी जो विशेष अवसरों और विवाह समारोह के लिए लोकप्रिय होती है, यानी जो प्योर जो रेशमी होती है वो थोड़ी महंगी होती है, कॉटन वाली जो चंदेरी होती है वो थोड़ी कम कीमत की होती है, वो हर कोई खरीद सकता है।
0: तो ये बताइए सोनाली जी कि आपके पास कौन सी चंदेरी साड़ी है?
1: मेरे पास सारी चंदेरी है, तीनों चंदेरी साड़ियां हैं।
0: क्या बात है।
1: मुझे शौक है तो पहनती हूँ, और बहुत सुंदर कलर, इतने चटक रंग होते हैं उसके। कॉटन चंदेरी में तो ऐसे लाइट पेस्टल कलर्स भी होते हैं, पिंक है, फिर पिस्ता कलर है, और जो प्योर सिल्क की होती है उसमें डार्क कलर होते हैं, उसमें ब्लैक कलर की चंदेरी साड़ी भी बड़ी सुंदर लगती है।
0: क्या बात है। चंदेरी साड़ी की असली पहचान इसके कुशल बुनकरों से है। पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक परिवार इस कला को जीवित रखे हुए हैं। अधिकांश बुनकर परिवार बचपन से ही बुनाई की बारीकियां सीखते हैं। पहले चंदेरी साड़ियां पारंपरिक हाथकरघों पर बनाई जाती थी। आज भी अनेक बुनकर हाथकरघों का उपयोग करते हैं क्योंकि इससे साड़ी की गुणवत्ता और कलात्मकता बनी रहती है। एक उत्कृष्ट चंदेरी साड़ी को तैयार करने में कई दिन, कभी कभी कई सप्ताह तक लग जाते हैं।
1: और बुनकर पहले डिजाइन तैयार करते हैं, फिर धागों से रंगते हैं, उसके बाद बड़ी सावधानी से करघे पर बुनाई करते हैं। साड़ी पर बने प्रत्येक बेल बूटे और जरी के नमूने के पीछे उनकी मेहनत और कौशल छिपी होती है।
0: चंदेरी साड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध है, फिर भी बुनकरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
1: और जैसे
0: मशीनों से बनी सस्ती नकली साड़ियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, युवाओं का अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित होना, पारंपरिक हस्तकला को पर्याप्त आर्थिक लाभ ना मिलना, ऐसे कई कारण हैं।
1: तो चलिए अब क्या करें, अब एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल,
1: तो सुनते हैं गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली। और दो सखियां सहेलियां यहाँ पर बैठी हुई है, और घर में तो ढेर सारी अनगिनत सखियां सहेलियां और श्रोता भाई बैठे हुए हैं, और वे भी यही कह रहे हैं कि भाई जो आपने विषय लिया है, घर में लोग चार और खाने के नखरे हजार, ये हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया है।
1: ओ हो लगता है हर कोई इसी समस्या से गुजर रहा है।
0: आपने तो दुखती रग पर हाथ रख दिया है। हर घर की यही समस्या है कि क्या बनाए जो सभी को पसंद आए। किसी को लौकी नहीं खाना तो किसी को आलू, लेकिन हमारे घर में नियम है कि हफ्ते में 6 दिन तो वही खाना पड़ेगा जो बना है, छुट्टी वाले दिन उनके पसंद का खाना बनेगा।
1: बड़ा अच्छा नियम
0: बहुत अच्छी बात।
1: है। पुराने समय में ना भोजन को लेकर लोगों का दृष्टिकोण आज की तुलना में बहुत अलग था ना सोनाली जी।
0: बिल्कुल,
1: उस दौर में भोजन को केवल स्वाद का विषय नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद और जीवन का आधार माना जाता था। घर में भी जो बनता था परिवार के सभी सदस्य उसी को प्रसन्न

0: सरलता से खा लेते थे। ये प्रश्न कम ही उठता था कि आज खाने में क्या बना है या क्या नहीं बना है। लोगों के मन में भोजन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव होता था।
1: और हमारे दादा दादी और पूर्वजों के समय में भोजन के विकल्प भी सीमित थे ना नेहा, कि मौसम के अनुसार जो अनाज है, सब्जियां हैं, फल उपलब्ध होते थे वही भोजन का हिस्सा होते थे। कई बार तो साधारण सी दाल रोटी भाकरी खिचड़ी चटनी के साथ ही पूरा परिवार संतुष्ट हो जाता था। खाने की मेज पर शिकायतों से अधिक अपनापन और बातचीत होती थी।
0: बिल्कुल, और बच्चों को भी बचपन से सिखाया जाता था कि थाली में परोसे गए अन्न का आदर करो और उसे व्यर्थ मत जाने दो। उस समय लोगों ने अभाव और संघर्ष को करीब से देखा था। कई परिवारों ने ऐसे दिन भी देखे थे जब दो समय का भोजन जुटाना तक कठिन होता था। इसलिए जब भोजन सामने आता था तो उसके स्वाद से अधिक उसके उपलब्ध होने की खुशी होती थी। अन्न का एक एक दाना मेहनत और पसीने का परिणाम माना जाता था। खेतों में किसानों की मेहनत, घर की महिलाओं का श्रम और प्रकृति की कृपा, इन सब का सम्मान भोजन के माध्यम से किया जाता था।
1: पर आज परिस्थितियां बदल गई है। आज अनगिनत जो है ना पदार्थ बाजार में उपलब्ध है।
0: हाँ, सच कहा आपने।
1: टीवी और सोशल मीडिया पर नए नए व्यंजन देखकर लोगों की और अपेक्षाएं बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप घर में साधारण भोजन बनने पर कई बार नाक भौं सिकोड़ ली जाती है। किसी को सब्जी पसंद नहीं, किसी को दाल फीकी लगती है, तो किसी को रोज का घर का खाना उबाऊ लगता है। वास्तव में पुराने लोगों की संतुष्टि का रहस्य उनकी सादगी और कृतज्ञता में था। वे जानते थे कि भोजन का उद्देश्य केवल जीभ को तृप्त करना नहीं बल्कि शरीर को पोषण देना है। इसलिए खाने में कमियां खोजने के बजाय उसे प्रेम पूर्वक स्वीकारते थे। और एक जरूरी बात है ना नेहा, कि पहले जब तक हमें भूख नहीं लगती थी तब तक हमें खाना दिया ही नहीं जाता था। यानी हम जब तक ना बोले कि अरे बहुत भूख लग गई। आजकल क्या होता है, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद मम्मियां खिलाती है कि खा लो बेटा फ्रूट, खा लो बेटा ड्राई फ्रूट, खा लो नाश्ता कर लो। सुबह एक बार हम लोग खाना खाते थे और शाम को खाना खाते थे।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: जब हमें बहुत तेज भूख लगती है ना उसमें, उस वक्त हमें सारा खाना बहुत टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है।
0: आज आवश्यकता है कि हम उस सोच से कुछ सीखें। स्वाद महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है भोजन का सम्मान करना। जब हम थाली में परोसे गए अन्न के पीछे छिपी मेहनत को समझेंगे तब शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी। आखिरकार जिस घर में भोजन के प्रति आदर होता है वहाँ संतोष, प्रेम और सौहार्द भी बना रहता है।
1: बिल्कुल सही बात आपने कही, और एक इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखी है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि हर घर की समस्या है, हर घर में सदस्य भले ही चार हो लेकिन उनके खाने के पसंद नापसंद की सूची इतनी लंबी होती है कि गृहिणियां अक्सर असमंजस में पड़ जाती है। किसी को तीखा पसंद है, किसी को फीका, कोई सब्जी नहीं खाता तो कोई दाल देखकर मुंह बनाता है। ऐसे में रोजाना यह तय किया जाना कि क्या बनाया जाए, ये बात किसी चुनौती से कम नहीं होती। फिर भी एक गृहिणी अपने प्रेम धैर्य और समर्पण से सबकी पसंद का ख्याल रखती है। इसलिए परिवार के सदस्यों का भी कर्तव्य है कि वे भोजन बनाने में लगी मेहनत का सम्मान करें और अनावश्यक नखरों से बचे, और जो गृहिणी है उसके साथ काम भी करे, उसके हाथ बटाए, तब पता चलेगा। अभी इतनी चिलचिलाती गर्मी है और किचन में जब खाना बनाते हैं थक जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, उस वक्त किसी ने कहा कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है।
0: अरे बाप रे, दिल की बातें निकल रही हैं, सुना लीजिए।
1: और जब डोसा बनाते हैं या जैसे थाली पीठ बनाते हैं जिसमें बहुत तेज आंच पे बनाना, उस वक्त तो क्या कहने, पूरे पसीने से नहा कर निकलते।
0: मुझे लगता है इस बात से सारी सखियां और वो सखा जो खुद भी किचन में मदद करते हैं या काम करते हैं वो इससे बिल्कुल सहमत होंगे। एक साथी लिखते हैं, हमारी दो कलियां हैं, दोनों के खाने पीने के बहुत नखरे हैं। आज की बात ले लो, श्रीमती जी पालक टमाटर की सब्जी बनाई किंतु छोटी बिटिया रानी सलाद से रोटी खाई। ये सब्जियां नहीं होना, जैसे कद्दू, बैंगन, गिलकी, लौकी, उनके गले नहीं उतरती। श्रीमती जी तंग हो जाती है इनके खाने के नखरों से। अच्छा, मैं एक सुझाव दूं सोनाली जी, मुझे अपना अनुभव लगता है कि जो चीजें अगर बचपन से खिलाई जाए तो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स कहते हैं ना, तो हमारी जुबान को उस तरह के सारे टेस्ट की आदत हो जाती है,
1: डेवलप हो जाते हैं।
0: हाँ, वो टेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो अगर हम बच्चों को ये समझकर कुछ चीजें नहीं देंगे कि अरे अभी तो वो छोटा है उसे क्या देना, तो नहीं, वैसा नहीं,
1: उसे
0: है।
1: करेला भी दीजिए।
0: हाँ, उसे बचपन से वो सारी चीजें दीजिए, जब वो चीजें खाएगा तभी उसे उसकी आदत होगी।
1: और हम ऐसे कहते ना कि अरे अचार तो उसे तीखा लगेगा, थोड़ा सा उसे वो भी दो।
0: हर
1: आप जो खाते सब थोड़ी थोड़ी दो। हाँ, अगर उसने मना किया, बहुत रोया तो बात अलग है, पर हर चीज को। और हम क्या करते हैं, इधर हम अचार नहीं खिलाते कि उसमें बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा तेल है, और इधर हम टमाटर सॉस दे देते हैं बच्चों को, तो बच्चे फिर टमाटर सॉस खाने के आदी हो जाते हैं, जबकि हमारे जो अचार होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए और स्वाद

रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित मंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी।

0: एक हमारे साथी ने कहा कि मैं तो भाई आज तक खाने की नखरे नहीं की, जो भी घर में बनता हूँ चुपचाप खा लेता हूँ। कितने अच्छे हैं ना, कितने
1: बहुत अच्छी
0: समझदार
1: बात है,
0: इंसान है।
1: ऐसे लोग घर में होना
0: हाँ, तो
1: चाहिए।
0: घर की जो गृहणियां हैं वो बड़ी खुश होगी, है
1: हाँ,
0: ना।
1: अब एक साथी ने ये भी लिखा है, भाई इस नखरे को संवाद की मधुरता के माध्यम से दूर किया जा सकता है, फिर इसके लिए आपसी समझ और सूझबूझ की भी जरूरत होती है, क्योंकि संवाद में त्रुटि होने पर उनमें से कोई भी नाराज हो सकता है, क्योंकि ये एक के स्वाद का महत्वपूर्ण संयोजन है। सेहत के लिए आगे अक्सर ही स्वाद को ही तरजीह देते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक संवाद के माध्यम से समस्या का हल करना अपेक्षित है। देखा इन्होंने कैसे स्वाद से जोड़
0: संवाद को।
1: दिया। हाँ वही।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि भाई छोटे छोटे बच्चे जो है, इन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम ऐसे देखते थे कि 60 साल की उम्र के बाद या 50 या 70 साल की उम्र के बाद में लोगों को हार्ट संबंधी तकलीफें हैं, पर आजकल छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। उसके पीछे है पैक्ड फूड। जो पैक्ड फूड होता है वो भले ही स्वादिष्ट हो पर उसमें

0: जो ऐसी चीजें मिली हुई होती है।
1: पूरी तरह से पाम ऑयल होता है
0: जी
1: सोनाली जी, सच में मैं भी यही कहूंगी कि पैक्ड फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
0: पर ये बच्चों को समझाए कौन, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है ना।
1: तो जरूरत ये है कि धीरे धीरे, पहली बात तो आप कोशिश करें कि उन्हें ये आदत ही ना लगे पैक्ड फूड खाने की,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कुछ ऐसे तत्व मिले होते हैं जो हमें और उसी चीज की भूख बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमने कोई चिप्स खाया तो हमें वही और खाने का मन करेगा, तो ऐसे तत्व मिले होते हैं इसलिए ऐसी।
0: अभी मैं ट्रेन में सफर कर रही थी कुछ दिन पहले, तो माँ के हाथ में घर के तले हुए चिप्स थे, पर वो बच्ची जो रास्ते से जो बेचने वाला पैकेट वाले चिप्स जो थे उसी की तरह उंगली कर रही थी और बोल रही थी कि नहीं ये नहीं खाऊंगी मैं वही खाऊंगी, क्योंकि घर के चिप्स जो होते सिर्फ नमक डला होता है उसमें और
1: सादे होते
0: उसमें
1: हैं।
0: टमाटर फ्लेवर है, फिर चीज फ्लेवर है, फिर और सारे ना जाने उसमें फ्लेवर डाले होते हैं जो बच्चों को बहुत स्वाद को उन्हें पसंद आता है बच्चों को।
1: सोनाली जी मैं एक ही बात कहूंगी कि बच्चों को वो स्वाद तभी पता चलेगा जब
0: जब
1: आप
0: हम
1: उन्हें
0: देंगे,
1: चखाएंगे।
0: बिल्कुल
1: अगर आप उन्हें ऐसी चीजें चखा ही नहीं रहे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा
0: चलेगा।
1: कि ये चीजें कैसी लगती हैं। तो
0: तो ये
1: जैसे
0: थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दिखेगा तो बच्चे जिद करेंगे,
1: हाँ
0: और
1: ये तो
0: दो सहेली
1: है।
0: ने खा लिया, दोस्त ने खा लिया, उसने इतना सा टुकड़ा दिया तो बोलेंगे वही चाहिए हमको, तो बच्चों की जिद के आगे तो माँ और पिताजी तो हतबल हो जाते हैं। वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि किसी को गर्म रोटी चाहिए, किसी को कुरकुरी, किसी को मीठा तो किसी को चटपटा। घर की रसोई भी रोज सोचती होगी आखिर सबका दिल एक साथ कैसे जीतूं, घर में चार लोग और खाने को लेकर होंगे नखरे, ऐसे भला भी कहीं हो सकता है। छोटी छोटी फरमाइशें तो घर घर को घर बनाती है, घर के नखरे भले ही हजारों लेकिन जब माँ के हाथ का खाना सामने आ जाए बड़े बड़े नखरे भी चुपचाप थाली में बैठ जाते हैं। क्या बात है।
1: बड़ी प्यारी बात लिखी है।
0: और एक साथी लिखती है तो हर घर की समस्या है, घर में लोग चार खाने के नखरे हजार पूछे मत, मेरे घर में दोनों बच्चे हैं, दोनों को एक दूसरे के विपरीत है, एक को मीठा तो दूसरे को नमकीन। अब हम गृहणियों को
1: ओहो
0: बड़े ध्यान से खाना बनाना पड़ता है कि क्या करें यही जीवन है। एक लिखते कि मेरे और मेरे बच्चों के खाने की कोई नखरे नहीं है, जो सब्जी दाल पूरा खाना शांति से खा लेते हैं, कभी कभार तीज त्योहार पर कुछ स्पेशल बन जाता है तो सब खुश हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत नसीब वाले
1: हाँ
0: हैं।
1: सच में। एक साथी ने लिखा है कि एक अच्छा, मतलब उनका ये कहना है कि जब हम घर में बचपन से सिखाएंगे लोगों को कि बच्चों को कि किस तरह से चीजें खानी है और थाली में दिया हुआ अन्न नहीं छोड़ना है, तो धीरे धीरे उनकी आदत वैसी ही बनेगी और वो सीख जाएंगे, आदत लग जाएगी तो सीख जाएंगे। तो बिल्कुल सही कहा है।
0: तो यानी आदत लगाने के लिए संवाद की जरूरत है नेहा, जब हम बातचीत करेंगे एक दूसरे से संवाद रखेंगे तो भी तो पता चलेगा, तभी तो हम बच्चों को समझाएंगे, नहीं तो बच्चा मोबाइल में उलझा हुआ है और मम्मा भी मोबाइल में उलझी हुई है तो मम्मा को लगेगा कि चलो ठीक है रख दिया उसके सामने तो कुछ खा ले, ऐसा नहीं। बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें संवाद के माध्यम से समझाई जा सकती है। एक साथी लिखते हैं एक अच्छा और प्रभावी संवाद वो है जो सामने वाले को आसानी से समझ में आए और बातचीत को आगे बढ़ाए। संवाद की प्रभावशीलता और उसकी सरलता स्पष्टता और सम्मानजनक भाव पर निर्भर करती है। संवाद में ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो समझने में आसान हो, जटिल या भारी भरकम शब्दों से बचना चाहिए, बातचीत बनावटी नहीं लगनी चाहिए, जिस तरह से हम सामान्य जीवन में बातें करते हैं संवाद बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी ये हो जाता है कि हम लोग बनावटी हो जाते हैं। मैं ये कहूंगी कि हर व्यक्ति कभी ना कभी बनावटी हो जाता है, उसे लगता है कि शायद उस परिस्थिति में वही सही है। हो सकता है कि किसी परिस्थिति में थोड़ा बनावटी होना सही हो, मगर हमारे रोज के संवाद, हमारे घर पर जो संवाद है, उनमें हमेशा सत्यता होनी चाहिए ताकि हमारे रिश्तों में सत्यता बनी रहे। एक साथी लिखते हैं, आपसी संबंधों को मजबूत, गहरा और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रभावी संवाद कौशल सबसे बड़ा माध्यम है। रिश्तों में अक्सर दूरियां बातचीत की कमी या गलत तरीके से बात करने की वजह से आती हैं। दिन में कुछ समय आपसी संवाद के लिए होना चाहिए, उस वक्त मोबाइल या कोई गैजेट्स बीच में नहीं होना चाहिए। साथ ही बातचीत में आदर, विनम्रता और सकारात्मक व्यवहार झलकना चाहिए। सोनाली जी अभी तो ऐसा हो गया है कि जब घर के चार लोग भी अगर साथ में बैठे हैं, हर कोई अपना फोन लेकर बैठ जाता है, और कभी कभी तो ये हो जाता है कि वहीं पे मैसेज में बात कर लेते हैं लोग, कि
0: कि
1: अगर एक कमरे में और दूसरे कमरे में है तो मैसेज में बात कर लेते हैं कि अरे वो उस कमरे में ये रखा है क्या, वहां से देख लो,
0: या
1: ये
0: फिर
1: कर लो।
0: खाना तैयार है कि नहीं,
1: नहीं
0: हम आए क्या डाइनिंग टेबल पे, इस तरह से यानी मदद करना तो बहुत दूर की बात है, बस पूछ लिया और वो गृहणिया है जो वो भी मैसेज में लिख देती है हाँ हाँ खाना रेडी है आ जाइए।
1: तो ऐसी चीजें अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप संवाद साझा करें।
0: और आप क्या करें,
1: गाना सुन लेते हैं, संवादों के बीच में थोड़ा ब्रेक भी जरूरी है।
0: तो चलिए गाना सुनते हैं।

0: तो सोनाली जी, अभी तो हमने बातें कर ली कि कितने सारे नखरे करते हैं लोग खाना खाने में, और घर में लोग चार और व्यंजन हजार, और अब हम ही बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम बचा सकते हैं नखरे करने से व्यंजनों को अलग तरीके से बना के। मतलब सब्जी तो वही होगी रोज वाली, मगर कुछ अलग तरीके से बनाएंगे ताकि किसी को बोर ना लगे, अंदाज नया रहे और मजा भी आए।
1: तो बताइए।
0: तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो रेसिपी आई है वो आई है सब्जी वही अंदाज नया, परवल पोश्तो सब्जी। ये सब्जी इन्होंने लिखा है, ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है, मैंने इसे अपनी बंगाली मित्र से सीखा है। इसके लिए सामग्री है परवल 250 ग्राम छीलकर लंबाई में कटे हुए, खसखस 3 बड़े चम्मच, हरी मिर्च और अदरक 2 चम्मच कूटा हुआ, पंच फोड़न सूखी लाल मिर्च 1 या 2, हल्दी आधी छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, करीब आधा चम्मच शक्कर और सरसों का तेल। बनाने की विधि, खसखस को 1-2 घंटे पानी में भिगोकर पेस्ट बना ले। कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर परवल को तब तक तलें जब तक वो सुनहरे भूरे ना हो जाएं। तले हुए परवल को अलग निकाल लें, बचे हुए तेल में पंच फोड़न और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं। अब तैयार किया हुआ खसखस का पेस्ट, कूटा अदरक, हरी मिर्च डालें, इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी मिलाएं। धीमी आंच पर मसाले को तब तक भुने जब तक खसखस का कच्चापन दूर ना हो जाए और उसमें से सौंधी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें तले परवल डालें और

0: ढककर 8 से 10 मिनट पकाएं। ऊपर से एक छोटा सा चम्मच कच्चा सरसों का तेल और 2 कटी हुई हरी मिर्च डालें। अब गर्मा गर्म सब्जी चावल या रोटी के साथ परोसे।
1: अभी तो परवल कितनी आ रही ना बाजार में, तो मैं तो ट्राई करूंगी। नेहा, क्या आप ट्राई करूंगी ये सब्जी?
0: बिल्कुल, सुनने के बाद तो लग रहा है कि ये कुछ नया ट्राई करना
1: बहुत टेस्टी हो गया ना। एक
0: चाहिए।
1: हमारे साथी ने लिखा है, सिंधी साई भाजी, पालक की सब्जी के साथ चने की दाल, 500 ग्राम ताजी हरी पालक धोकर बारीक कटी हुई, भीगी हुई चने की दाल करीब 200 ग्राम, प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक कटी हुई, प्रेशर कुकर में तेल डालकर प्याज को हल्का गुलाबी करके सारी सामग्री डालकर हल्दी पिसा हुआ धनिया और नमक स्वाद अनुसार डालकर सीटी लगा लेना है, फिर कलची से घुमाकर लहसुन का तड़का लगाना है। सिंधी साई भाजी तैयार है, पुलाव के साथ परोसने से स्वाद दुगना हो जाता है।
0: क्या बात है। एक साथी ने लिखा है, अरबी, ये प्याज की ग्रेवी के साथ भी बहुत अच्छी बनती है और ये सरसों के मसाले के साथ सूखी सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है।
1: और साथी एक साथी ने लिखा कि बैगन बड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, मूंग या चना उड़द जो आपको पसंद है, बैगन को काट कर नमक वाले पानी में डाल दे, बैगन को बड़ी को गर्म तेल में तल ले और भून कर इसे भी नमक वाले पानी में डाल दे, मसाले में धनिया पाउडर जीरा लहसुन हल्दी इन सभी को पीस ले और कढ़ाई में तेल डाले, 5 फोड़न का तड़का दे, बैगन को भून कर निकाले, अब मसाले में कटे टमाटर को भी भून ले, अब इसमें भुने हुए बैगन डालकर उलट पलट कर ले, पानी में भीगे हुए बड़ी भी इसमें डाल दे, थोड़ा पानी डाल दे और उसमें धीमे आँच तक पकने दे, इसमें ग्रेवी नहीं रहती। बिहार के हर शुभ कार्य में फंक्शन में बैगन बड़ी की सब्जियाँ जरूर बनती है, पूरी रोटी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। इस सब्जी में मसाले की मात्रा अधिक नहीं रहती, मिर्च लहसुन हल्दी और थोड़ा बहुत धनिया और जीरा पाउडर डालते हैं, तो इन्हें बड़ी यानी मूंग बड़ी जो अभी गर्मियों में बनती है ना, हर घर में कुछ चने दाल की बनाते हैं, कुछ मूंग की दाल की बनाते हैं, और आप क्या करें,
0: गीत सुने
1: तो सुनते हैं गीत।

0: सोनाली जी, एक श्रोता ने बड़ी मजेदार बात कही है। उन्होंने लिखा है, कोई भी सब्जी हो, काट कर धोकर जितना तेल रोज डालते हो उससे आधा कुकर में डालकर तेल गरम करके जो भी कटी सब्जी है डालकर स्वादानुसार मिर्च मसाले टमाटर प्याज लहसुन डालकर ढक्कन लगाकर सीटी लगाकर उतार कर रखें। स्वादिष्ट सब्जी बनेगी, तेल गैस की बचत भी कम, मतलब कम लगेगा ये सब, और काम भी जल्दी हो जाएगा। और साथ में उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है कि शाम से ही एक्सपेरिमेंट करें। तो
1: यानी
0: जी, अब आप
1: कार्यक्रम सुनते ही आपने करना है। बस कुकर में जब सब्जी बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना, उसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज्यादा बहने लगेगी वो थाली में। तो उसका हमें, क्योंकि जब कढ़ाई में डालते हैं तो पानी सूख जाता है, वो कुकर का ढक्कन बंद होता है तो वो पानी नहीं सूख
0: सूखता
1: पाता है।
0: नहीं है।
1: अब हमारी बातचीत को यही देना पड़ेगा विराम, और सभी से लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और नेहा अगरकर देसाई का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक
0: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक कवि और लेखक प्रताप सोमवंशी जी को। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: जी बताइए, आपका रेडियो से विविध भारती से कैसा नाता रहा है?
2: देखिए, रेडियो से और विविध भारती से हम जिस पीढ़ी के हैं उस पीढ़ी में दो पहचान होती थी। कोई अगर लिखता है या बोलता है तो एक पहचान उसकी ये होती थी कि क्या रेडियो से उसकी आवाज आई
1: रेडियो की तरफ,
2: और दूसरी पहचान ये होती थी कि क्या कहीं उसकी कोई कविता कहानी छपी। तो मैं इलाहाबाद शहर से आता हूँ तो रेडियो में पहले दिन दाखिल हुआ तो कुछ युवाणी में कविताएं पढ़ने के लिए, तो वहां से एक रिश्ता बना। फिर एक लंबे समय में

0: इलाहाबाद केंद्र जाता रहा, फिर दिल्ली रहा, दिल्ली जाता रहा, फिर जिन जिन शहरों में मैं रहा, पदस्थ रहा, उन उन शहरों के केंद्रों में कम बार जाना हुआ चूंकि अखबारों की व्यस्तता के कारण, लेकिन एक लगाव, एक रिश्ता बना रहा।
1: जी, रेडियो से
0: जी
1: और आकाशवाणी से और विविध भारती से रिश्ता है
0: जी
1: ही
0: कायम है।
1: जन्मजात।
0: विविध भारती के श्रोता के तौर पे मेरा जो है अगाध, मतलब आप कहें तो, अगर मैं 60 के होने के करीब आ रहा हूं तो मतलब ये 50 साल की स्मृतियां हैं, पूरा गोल्डन जुबली की
1: विविध भारती से।
0: स्मृतियां हैं मेरे
1: जी
0: पास।
1: जी तो विविध भारती के बहुत सारे पुराने प्रोग्राम अभी भी प्रसारित होते हैं, जैसे कि छाया गीत है, हवा महल है, जयमाला, तो ये सब तो आप सुनते ही रहे होंगे।
0: जी
1: तो प्रताप जी, हम आपकी लेखन की यात्रा पे नजर डालते हैं, बताइए ये कवि बनने का जो सफर होता है, आपकी शुरुआत कैसे हुई, कविता लिखने का हुनर कहाँ से आया आपके पास?
0: देखिए, कविता लिखने से ये था कि हमारे समय में हमें जो छपे हुए शब्द थे, जो कहते थे शब्द ब्रह्म होते हैं,
1: जी
0: तो हमें छपे हुए शब्द और उसमें छपा हुआ नाम, मुझे व्यक्तिगत तौर पे बचपन से ईश्वर की तरह लगता था।
1: जी
0: तो जैसे उसमें नाम छपा है राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी,
1: जी
0: तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं,
1: क्या
0: जैसे
1: बात है।
0: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: जी।
0: और ये मेरे पास सौभाग्य रहा कि 1988-89 में एक कार्यशाला में मैं उनके साथ रहा, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा भी होता था कि मैं वहां खड़ा होता था और मैं आपको देखता था, जब आपको मैं देख लेता था तो मैं दूर से प्रणाम करके एकदम एकलव्य की भांति मैं वहां से चला जाता
1: क्या
0: था।
1: बात है।
0: तो एक ये जो छपे हुए शब्द की महत्ता है, उसके जो सर्जक हैं उनके प्रति आदर है, इससे एक वो भाव आता है। दूसरा ये कि मैं जहाँ मोहल्ले में इलाहाबाद में रहता था तो क्या होता था कि पीछे देखो तो वहां से देखते तो निराला जी रहते थे,
1: अरे वाह,
0: आगे देखो
1: हाँ,
0: तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे,
1: गजब।
0: दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे,
1: हाँ,
0: बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था,
1: जी।
0: तो या उनके नाम की सड़क भी थी सीवाई चिंतामणि रोड। तो ये लोग हमारे समय में उपस्थित नहीं थे, लेकिन इनका जो सोल है, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो किस्से हैं, वो सब इलाहाबाद के हवा में घुले हुए थे। तो हमारे पास क्या था कि संस्कार की, सृजन के संस्कार की इतनी बड़ी विरासत थी कि हम को लगता था कि हम अगर कुछ भी लिख पाएं, कुछ भी कर पाएं, तो एक अघोषित ट्रिब्यूट होगा अपने उन लोगों के लिए, और दूसरा हमको लगता था कि ये बहुत पवित्र काम है जो इतने लोगों ने किया, और डिफरेंट कि एक आदमी अखबार में काम कर रहा है सिवाय चिंतामणि, और उसकी इकोनॉमिक्स की किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जा रही है,
1: जी।
0: एक आदमी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति से मिलने से मना कर देता है, एक आदमी है फिराक गोरखपुरी जो नेहरू को भी उत्तर दे देता है,
1: जी।
0: अकबर इलाहाबादी जो अंग्रेजों के समय में इतने तंज करते हैं। तो यानी एक जो किशोर मन, एक जो युवा मन में जो प्रतिरोध के भीतर शक्ति होती है, वो प्रतिरोध की शक्ति मुझे लगता था और कोई जरिया ही नहीं है, सिर्फ लिख के ही हम अपने प्रतिरोध को शक्ति दे सकते हैं और प्रतिरोध को स्वर दे सकते हैं।
1: जी।
0: तो शायद ये मैं आज बता रहा हूं, उस वक्त जब मैं 15-16 साल का था या 10 साल का था तब तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता था,
1: जी।
0: लेकिन बाद में मैंने जब इसको सोचा पाया कि कोई भी लिखता है और लिखने का अगर उसके परिवेश का उसके लिखने पे असर होता है, तो वो परिवेश का असर क्या होता है, एक असर होता है परिवार का। तो मेरे
1: जी।
0: परिवार में लिखने वाला कोई नहीं था,
1: अच्छा।
0: मैं टिपिकल जैसे कहते हैं कि ठाकुरों का परिवार, तो हमारे यहाँ लिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो इवन लिखने के प्रति कोई आदर भी नहीं था, लिखने को कोई काम भी नहीं माना जाता था,
1: वैचारिकता से कोई दूर दूर तक
0: कोई
1: संबंध
0: दूर
1: नहीं
0: दूर से
1: होता है। जी
0: रिश्ता नहीं था। तो लेकिन ये है कि अगर आपके परिवार में नहीं है तब भी जो समाज का संस्कार है और जो परिवेश का संस्कार है वो भी चीजें गढ़ता है, तो वो उसी गढ़न का परिणाम मैं हूं।
1: जी, क्या बात है, बड़ी बढ़िया बात बताई। और ये बड़ी बात है कि परिवार में कोई नहीं है, कोई आपके वरिष्ठ नहीं है, और समाज को देख देख कर आपके अंदर विचार आपने गढ़े और कविता के चित्र उकेरे। तो कोई कविता याद है उन दिनों की आपको?
0: पहले तो मैंने कहानी लिखी, और कहानी

0: ऐसे ही चंपक नंदन पढ़ते हुए चार पांच में रहा होऊंगा तो मैंने एक कहानी लिख दी, परी के वरदान।
1: जी
0: 2.5 पेज की कहानी थी, क्या बनी होगी। मैंने उसको जब 8 पे पहुंचा
1: हाँ
0: तो मैंने उसको छपने के लिए भेजी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पराग के संपादक थे। मैंने उनको 3 पेज की चिट्ठी लिखी, 2.5 पेज की कहानी
1: 3 पेज
0: और
1: की
0: तीन पेज
1: चिट्ठी
0: की चिट्ठी।
1: सर्वेश्वर जी के
0: और हाँ,
1: पास।
0: उनको लिखा कि आप इसे छाप दीजिएगा, मेरे पिताजी बहुत नाराज रहते हैं, और जब आप छाप देंगे तो मैं छपी हुई किताब उनको दिखाऊंगा, पत्रिका, तो वो इससे प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे आगे लिखने के लिए देंगे। आपका क्या जाएगा, मेरा तो फायदा हो जाएगा, और ये इसके पैसे आप मत दीजिएगा।
1: लिख
0: और जो जो मेरे दिमाग में आया मैंने सब लिख
1: डाला।
0: दिया। सर्वेश्वर जी का पत्र आया। वो पहला पत्र था जो पत्र 14-13 साल के बच्चे के नाम से आया, वरना मेरे घर में जितने पत्र आते थे वो मेरी माँ के नाम से आते थे, या मेरे पिता के नाम से आते थे, मेरे दादा के नाम से आते थे। लिफाफे पे लिखा हुआ नाम, पहला नाम मेरा, मेरा सर्टिफिकेट का नेम था शिव प्रताप सिंह, तो शिव प्रताप सिंह केयर ऑफ श्री राम लखन सिंह, मेरा पता। तो मेरे पिताजी ने चिट्ठी ली, बोला तेरी चिट्ठी क्या आई। तो मैंने कहा कहानी है, बोला छपी है, मैंने कहा नहीं, लौटाई। बोला कि ये तू कहता हूँ, फालतू काम मत करो। तो उन्होंने वो चिट्ठी मुझे पास ऐसे ही दे दी। तो मैंने खोला तो उसमें सर्वेश्वर जी का एक पत्र था हस्तलिखित। उन्होंने लिखा कि तुम्हारी कहानी में कहानी जैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे नहीं छाप सकता, लेकिन तुमने
1: प्रयास
0: इतनी कम
1: किया।
0: कक्षा में
1: हाँ
0: तुम पढ़ते थे, और तुमने तब और अब मिला के 5.5 पेज का गद्य लिखा, इससे मैं प्रभावित हुआ। तो तुम भविष्य में कुछ लिख सकोगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।
1: क्या बात
0: तुम
1: है।
0: इलाहाबाद
1: हाँ
0: में हो, मैं
1: हाँ
0: वहां रहा हूं,
1: हाँ
0: तो वहां के पानी में कुछ ऐसा है तो
1: कि
0: वो पानी तुमको लगे, ये मेरा आशीष है। और कभी मैं तुम्हारी कहानी छाप पाऊं तो मुझे खुशी होगी।
1: हाँ
0: और 2-3 साल 4 साल पढ़ो, और पढ़ने के बाद जब तुम कहानी लिखना तो जब मुझे भेजना तो मुझे जरूर लिखना कि मैं वो लड़का हूं जिसने 3 पेज की चिट्ठी लिखी थी।
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: वो दुर्भाग्य था कि मैंने उसके बाद जब कहानी लिखी बहुत बरस बाद, तब मैं उनको भेजने की स्थिति में नहीं रहा, चूंकि वो दुनिया से जा चुके थे। लेकिन आप सोचिए कि एक इनकार का पत्र कैसे शक्ति देता है।
1: बिल्कुल।
0: इनकार की एक भाषा होती है, वो भी आपको ऊर्जा देती है। तो इनकार का पत्र, इनकार की भाषा, वो भी कैसे संस्कार बनती है, वो भी कैसे सृजन यात्रा में आपके साथ होती है। और वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की पहली सफलता के तौर पे सर्वेश्वर जी का वो पत्र था।
1: जी क्या बात है। हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। जिन बच्चों के भीतर कहीं भी थोड़ा लिखने का बीज है तो उस बीज को पुष्पित पल्लवित होने दें, पनपने दें, उसे रोके नहीं, चाहे वो जैसा भी नकारात्मक उसका प्रतिक्रिया उसकी मिले या सकारात्मक। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अभी ये सब लिखने पढ़ने पर ध्यान मत दो, अपना कुछ और करो, करियर की ओर, करियर की ओर।
0: नहीं, मेरे पिताजी तो बाकायदा, वो एक इलाहाबाद आकाशवाणी के केंद्र से मेरा लिखा एक नाटक था, लघु नाटिका थी, जिस जमाने में वो ब्रॉडकास्ट हुई तो वो उसे सुन रहे थे। और जब सुन रहे थे, जब वो नाटक खत्म हुआ, आया कि इस लघु नाटिका के लेखक थे प्रताप सोमवंशी, और ये आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की
1: के
0: प्रस्तुति थी।
1: प्रस्तुति
0: तो मुझसे कह रहे हैं तुमने किसी का नाम चुरा लिया है क्या। तो मैंने कहा कि नहीं। तो बोला ये नाम, मैंने कहा मैंने अपने नाम को इस तरह से चेंज किया है। बोला अच्छा, चोरी मत करना, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। किस बोले अच्छा, ये बताओ ये तुमने किसी का लिखा चुरा लिया है क्या। तो मैंने कहा नहीं, लिखा भी नहीं चुराया है, ये मेरा ही लिखा है। तब भी उनको उस दिन यकीन नहीं आया। उनको जब रेडियो से 150 रुपए का मनी ऑर्डर आया, तो मनी ऑर्डर भी उन्होंने रिसीव किया, तो उस दिन उनको कुछ कुछ भरोसा हुआ। लेकिन उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये कहा कि जो भी लिखना अपना लिखना, चुरा के मत लिखना, नहीं पकड़े जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ जाएंगी चीज़ें। तो मैं कह रहा हूँ कि अभिभावक को, वो मेरे शत्रु नहीं थे, मेरे पिता थे, बड़ी उन्होंने मुझे शक्ति दी। उनके जीवन की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी, या आज जो मैं गढ़ा बना बैठा हूँ उसमें उनकी बहुत महती भूमिका है। लेकिन उनके पास एक मध्यवर्गीय परिवार के पिता, इनके मन में ये भय था कि लिखने पढ़ने का काम करने लगेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, तो कैसे जीवन चलेगा,
1: आजीविका कैसे चलेगी, सबसे
0: चलेगी। तो ये आजीविका के भय में, चीजों के भय में, अब तो अभिभावक उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं,

0: लेकिन अगर कहीं करते हों और आपके इस माध्यम से लोग सुन रहे हों,
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो बस मेरी भी जैसे आपने कहा यही उनसे अनुरोध है कि आप उसके लिए स्पेस दीजिए, उसको जगह दीजिए। वो महान लेखक नहीं बनेगा लेकिन एक बेहतर इंसान बनेगा।
1: जी
0: सृजन कम से कम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, और वो पता नहीं क्या बने, हो सकता है जैसे अभी आप बता रही थी वो संसार का सबसे अच्छा बांसुरी वादक बन जाए, अपने को एक्सप्रेस करते करते
1: जी,
0: वो एक गवैया बन जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो
0: लेकिन उसके सृजन यात्रा अगर जारी रह सके तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी, तो सृजन को रोकना नहीं चाहिए. यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, प्रताप सोमवंशी उनका नाम है, और हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक हैं, एक जाने माने प्रखर पत्रकार हैं, कवि हैं और लेखक हैं. तो लिखने की शुरुआत कैसे हुई ये इन्होंने बताया. ख़ास तौर से उनका नाम हम यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमें पता नहीं होता है कि किसके भीतर वो बीज किस तरह से एक वृक्ष का रूप लेगा जो छाया देगा. तो पत्रकारिता जगत में आप एक वृक्ष की तरह हैं प्रताप जी, और लोग आपको यही कहते हैं. और साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे साहित्य उत्सव हो, चाहे और भी आजकल साहित्यिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़कर आपका सहभाग होता है, उसमें आप मुखिया की तरह काम करते हैं. यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कविता का बीज कैसे पड़ा. ये तो आपने बता दिया, सब नकारात्मक बातों से आपके बीज रोपे गए और एक वृक्ष की.
0: 3 लाइनों में बात कहता हूँ कि मेरी पहली कहानी छपी नहीं, मेरी जो रचना छपी उसका पेमेंट आया और वो मुझे मिला नहीं। पहली
1: अच्छा.
0: नौकरी जब मैं अखबार में ढूंढने गया तो मुझे मिली नहीं, तब तक वो जगह भर गई थी। तो मतलब नकारात्मक जो ऋण ऊर्जा है वो मेरे पास शुरू से आती रही। जो छपा मेरा वो मधु मुस्कान नाम की एक पत्रिका आती थी, तो उसमें एक कहानी छपी। मुझे लगा कि नाम कुछ फैंसी सा होना चाहिए, तो मैंने अपना नाम लिख दिया शिवा मयंक, और शिवा मयंक केयर ऑफ शिव प्रताप सिंह और इलाहाबाद का अपना पता। तो वो कहानी छप गई, तो उसका 50 रुपये, एक पेज की कहानी थी छोटी सी, तो उसका 50 रुपये का मनी ऑर्डर आया। तो उसने कहा कि शिवा मयंक कौन है जो पोस्टमैन है? मैंने कहा मैं हूं। तो बोला आई कार्ड लाओ। तो मैं आई कार्ड लाया तो उसमें शिव प्रताप सिंह था। बोला तुम कौन हो? मैंने कहा मैं शिव प्रताप सिंह हूँ। बोला अच्छा तुम केयर ऑफ हो? मैंने कहा हाँ। तो बोला ये ऊपर वाला कौन है? मैंने कहा वो भी मैं हूँ। बोला तो ये तो नहीं चलेगा, या तो तुम उर्फ लिखते शिव प्रताप सिंह उर्फ प्रताप ये शिवा मयंक, वरना ये नियम से तो ये आदमी अलग है, ये दो आदमियों का पता है, तो मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं। तो मैंने उससे कहा भाई मैं ही हूं, मेरा पहला पैसा है। बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। और वो लेके लौट गए। मैंने बड़ी मिन्नतें की, कई बार मैं उनके पास मिलने गया, वो पंडित जी थे, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, उन्होंने नियम का पालन करते हुए उस मानदेय को उस पत्रिका को वापस कर दिया।
1: तो सब नकारात्मक बातें होते हुए भी आज आप एक सकारात्मक ओर
0: हाँ,
1: देख
0: जो
1: रहे
0: कविता की शुरुआत ये
1: हैं.
0: है कि कविता लिखना कोई एक पल होता है जो आप कविताएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जीते रहते हैं, फिर आपके भीतर से वो चीजें फूटती हैं। तो वो जो फूटन है वो कब हुई कैसे हुई मुझे नहीं पता है, लेकिन अचानक वो जो हुआ तो मैं अचानक कविताएं इतनी लिखने लगा कि रोज 10-15, 10-15, 10-15 के अनुपात में शुरू में कविताएं लिखने लगा। तो हिंदी में कोई उस्तादी की परंपरा नहीं है, तो किसी को दिखाना नहीं। फिर बहुत सारी फिल्मी पत्रिकाएं छपती थी, उसमें सब रूमानी एहसास की कविताएं थी, मैं उनको भेजता रहा, वो सब छपने लगी।
1: जी.
0: ये 80 इससे लेके 90 तक वो सारी कविताएं छपती रहीं छपती रहीं। मुझे लगा मैं महाकवि टाइप का आदमी हो गया हूँ। लेकिन जब वो कविता की कसौटी पे, जब उसके बाद जब मैंने कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा ये तो कहीं ठहरती नहीं है। जब मैंने कविताएं पढ़ा तो मैंने कहा इस कविता सिर्फ रूमानी एहसास का नाम नहीं है, कविता जीवन की शक्ति है, प्रेरणा की चीजें हैं। तो जब मैंने उस कसौटी पे देखा तो जो मेरी लिखी हुई कविताएं हैं 90 तक की, उसमें एक भी कविता मुझे इस लायक नहीं लगी कि 2016 में जब मैंने किताब बनाई कि मैं उसमें से वो किताब उठा के वो रख पाऊं।
1: क्या
0: फिर बाद की
1: बात
0: जितनी कविताएं थी वही कविताएं मैंने संग्रह में रखी।
1: जी.
0: जी,
1: तो कोई संग्रह वाली कविता इस समय याद आ रही है,
0: संग्रह वाली कविता,
1: दो
0: एक
1: लाइन सुनाइए
0: एक
1: हमें.
0: कविता मैं आपको 1991 की कविता का रेफरेंस देता हूं, आपके श्रोता जो पुराने हैं उनको भी याद

0: आएगा और नए के लिए ये एक कविता होगी। ये कविता है शेष कुशल है। तो इस कविता ने मुझे बड़ी पहचान दी। पत्र के में जो लोग लिखते थे, पत्र की भाषा होती थी,
1: जी
0: सब लिखते थे, सारे दुख लिखते थे और लिखते थे शेष कुशल है, उससे ये कविता लिखी। और जो ये कविता भी लिखी, ये मैं जौनपुर में कक्षा 6 में पढ़ता था, तो एक दिन मेरी माँ ने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए दी, पोस्ट बॉक्स में। मैंने चिट्ठी डाली और पोस्ट बॉक्स में एक चीज चिट्ठी निकली हुई थी, तो मैंने चिट्ठी खींच ली
1: ओ
0: और चिट्ठी खींच के मैं अपने विद्यालय में ले गया। उस विद्यालय में मैंने उस चिट्ठी को बच्चों को बताया कि मैं एक चिट्ठी लाया हूँ, और मैंने क्लासरूम में उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था, तो मैंने बताया कि आज मैंने ये चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया। वो किसी का दुख था, किसी का
1: बिल्कुल
0: सुख था, वो जाने पते पे जाना था, तुमने उसे रास्ते में ले लिया।
1: रोक लिया।
0: तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है और वो चिट्ठी कोई कर देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक एक रेशा जोड़ा और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई उन्होंने पोस्ट बॉक्स में, सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी,
1: जी
0: यार जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई, वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो की घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या BSC पार्ट 1 में रहा हूँगा तब
1: जी
0: मैंने वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है,
1: जी आप अगर सुनाएं हमारे श्रोताओं को
0: हाँ,
1: तो 4 लाइन।
0: तो वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो कविता यह है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, लिखी अम्मा की पुकार है,
1: क्या बात है, वाह।
0: आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: ओ गजब।
0: घर में पैसे 4 नहीं हैं, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं कोई नातेदार नहीं है, छोटे का तुम हाल न पूछो, मोटी कितनी खाल न पूछो,
1: वाह
0: अर्जी आज नहीं दे आया और अगला इंटरव्यू कल है, शेष कुशल है।
1: क्या बात है, वाह
0: बहना का
1: शेष कुशल।
0: संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है, सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल हैं, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, क्या बात है,
0: आखिरी
1: बहुत।
0: बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं,
1: वाह
0: बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं, आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम में, बाकी अब भी काफी बल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक मार्मिक कविता आपने सुनाई, इसमें बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रताप जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं, आपकी पसंद का गाना। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं।
0: इंदिवर का वो गाना था, आओ मिल जाएं हम सुकंदर सुमन की तरह।
1: सुनते हैं यही गाना।

0: प्रताप जी, आपके गाने से पहले बात चल रही थी कविता की, आपने कविता सुनाई। ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग और गजलकार अलग। इतवार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए।
1: अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि मैं उस शहर में बचपन से पढ़ रहा था, वहाँ सांस ले रहा था, वहाँ कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा, कि दुष्यंत भी उसी शहर के थे। तो
0: जी, दुष्यंत कुमार,
1: दूसरी
0: साये में
1: चीज,
0: धूप उनकी
1: हाँ,
0: बड़ी
1: साये में धूप।
0: मशहूर
1: तो
0: मशहूर रचना।
1: फिर मैं जैसे व्यंग्य लिखता था, तो व्यंग्य में एक खूबी होती थी, व्यंग्य में एक बात कहनी होती है, और जब आप व्यंग्य बोलते हैं, व्यंग्य कहते हैं, व्यंग्य करते हैं, तो उसमें एक तरीका होता है कि आप एक बात कहते हैं, फिर एक बात छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर आप छुपा के नहीं बोलते हैं
0: हाँ,
1: तो व्यंग्य
0: अनकहा
1: नहीं उत्पन्न होता है,
0: अनकहा कुछ
1: अनकहा।
0: अनकहा
1: तो एक
0: सही।
1: अनकही चीज को आप धीरे से खोलते हैं। तो मुझे ये सेम एलिमेंट शायरी में लगा कि आप पहले मिसरे में आप उसको धीरे से कहते हैं। जैसे मैंने पहला जो शेर मेरी स्मृति में आया वो नासिर काजमी का था, जिसने मुझे शायर बनने के लिए इंस्पायर किया। वो शेर था कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, ये बड़ा सादी से लाइन है, कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर
0: क्या बात है,
1: उदासी बाल खोले सो रही है।
0: वाह वाह
1: तो
0: वाह।
1: अब उन्होंने एक स्त्री की कल्पना की, मुझे वो पेंटिंग की तरह लगा, मुझे वो शायरी की तरह लगा, फिर ये लगे। तो इस तरह के जो अगर मैं तमाम सारे शेर कहूँ, ये मुझे लगा कि वाली आसी साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए,
0: जी
1: तुमने पाया हमने खोया। अब
0: जी
1: अगला मिसरा तो मैं सोच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते।
0: क्या बात है, वाह
1: तो
0: वाह।
1: अब ये जो खूबसूरती थी, इसने इंस्पायर किया। फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी,
0: जी
1: तो
0: जी
1: हम
0: जी
1: उनकी गजलें सुन रहे थे, तो उन गजलों में भी वो स्वाद था कि गजलें आकर्षित इसीलिए करती थी कि गजलें कंटेंट का मीडियम थी, गायकी का तो माध्यम थी, लेकिन वो शब्द की भी महत्ता थी। तो उसमें ये जो शायरी की जो बारीकियां हैं उसमें भी थी। फिर प्रकाश पंडित की एक बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हिंदी में, तमाम लोग उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते थे,
0: जी।
1: तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी, तो हमने उसके जरिए गालिब, फैज, मीर, उन सबको पढ़ना शुरू किया। तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस बेंड ऑफ माइंड है वो, और कविता का की जो रुचि है, ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह के जब आप कोई चीज़ करते हैं तो उस तरह के लोगों की सोहबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाते हैं।

0: जी, तो कोई शेर या
1: वो पूरी गजल यूं है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है, गागर में सागर तो
1: कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया,
0: जी
1: सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए,
0: जी
1: उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। और कविता और गजलें, फिर नाटक, व्यंग्य भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी मुड़े। नाटक लिखा आपने, एक लोई नाम का नाटक
1: हाँ
0: जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनूदित हुआ, इसके
1: जी,
0: बारे में बताइए, इसकी
1: देखिए
0: क्या
1: नाटक
0: कहानी
1: क्या
0: है।
1: था कि मैं श्रद्धेय, मैं प्रभास जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे, तो उनकी जो
0: जनसत्ता के संपादक थे उस
1: हाँ, तो
0: समय।
1: मैं
0: जी
1: जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा स्नेह रहा। तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि थी, तो मैं उसमें शामिल होने के लिए गया, तो वहाँ शेखर सेन का नाटक चल रहा था, कबीर जो करते हैं, तो उसमें वो लोई का एक करेक्टर आता है। तो लोई कहती है कबीर से,
0: जी
1: वो चूंकि एकल है तो खुद ही दोनों पात्र कर रहे थे, कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूँ। तो कबीर ने कहा चलो मिला लाते हैं।
0: जी
1: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मिला लाते हैं।
0: जी
1: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मेरी पत्नी गए थे, मैंने उनसे कहा कि 600 साल पहले क्या स्त्री पुरुष इस तरह का संवाद करते थे, और अगर करते थे तो ये कौन आदमी आया था 250-300 साल पहले, लॉर्ड मैकाले, जो कह गया कि ये सपेरों का देश है। तो हम तो इतने, अगर इस तरह का संवाद, और जो उनकी पत्नी थी वो तो बड़े गरीब लोग थे, बड़े
0: जी जी
1: छोटे लोग थे,
0: जी
1: एक जुलाहे थे, बुनकर थे, कोई राजा नहीं थे, कोई विदुषी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई रजिया सुल्तान नहीं थी, ये साधारण परिवार के एक स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है। तो मुझे लगा कि एक साधारण स्त्री की कहानी तलाशते हैं। फिर मैंने उस पर शोध शुरू किया, तो एक उपन्यास मिला मुझे लोई का ताना, जिसमें लोई के बारे में थोड़ी सी चीज है, रांगे राघव का उपन्यास है। फिर मैंने जो जितने उपलब्ध सामग्री थी उसको पूरा, फिर मैंने एक लंबी कविता लिखने के लिए ये सारा शोध किया था,
0: अच्छा
1: कि मैंने कि लंबी कविता में लिखूंगा।
0: अच्छा
1: 12-13 पेज की कविता लिखी, कविता जैसी बनी नहीं। फिर मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, वो 13-14 पेज तक गया, फिर रुक गया, और फिर वो मेरे सामने लोई खड़ी हो जाती थी।
0: जी जी
1: फिर मैंने पूरा नाटक लिखा। अब नाटक लिखने के बाद इलाहाबाद के एक विभूति थे पंडित नरेश मिश्र, तो वो मेरे लिए भी गुरु की तरह थे, मैं उनके पास वो नाटक लेके गया, मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये पंडित जी ये नाटक लिखा है। तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि क्या सुंदर बात बताई। ये मैं इसलिए ये बात उनका उद्धरण देना चाह रहा हूँ कि जो लोग नाटक लिखना चाहते हैं उनके लिए ये बीज मंत्र की तरह है।
0: जी जी
1: उन्होंने कहा कि जब दो लोग बात कर रहे हों और दो लोगों की बातों में एक दूसरे से कह रहा हो सीधी सीधी बात करो, नाटक मत करो,
0: हाँ बिल्कुल, ये तो
1: इसका
0: जुमला
1: मतलब कि
0: है।
1: दूसरा आदमी
0: हाँ
1: उस बात को सीधी सीधी नहीं कर रहा है,
0: जी जी
1: वो कुछ घुमा के कर रहा है, तो वो नाटक है जो वो कर रहा है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि सीधी सीधी बात मत करो, नाटक करो। तो ये पुस्तक में सीधी
0: हाँ
1: सीधी बात आ गई है,
0: जी
1: नाटक नहीं आया है।
0: क्या बात है।
1: तो इतनी सुंदर बात कही
0: हाँ
1: कि फिर पूरी पुस्तक को मैं दोबारा लेके गया,
0: हाँ
1: और दोबारा मैंने उसको नाटक के तौर पे लिखा।
0: जी
1: और ये उनकी ब्लेसिंग्स थी,
0: हाँ
1: उनका आशीष था,
0: जी
1: कि नाटक संयोग से, दुर्योग से, जैसे भी था, वो इतना बन गया कि मुंबई में अभी पिछले दिनों उसका मंचन हुआ। इंडिया के मैच के दिन 8 मार्च को, महिला दिवस के दिन, उसका मंचन था,
0: जी
1: और 2 घंटे का शो, और पूरा हाउसफुल, और एक आदमी हॉल से बाहर नहीं निकला। बैक टू बैक शो था, उसके 2 घंटे बाद फिर शो था। ऑडियंस में हरीश भिमानी हैं, इरशाद कामिल हैं, और
0: जी
1: तमाम सारे बड़े लोग उसके ऑडियंस में रहे। तो ये मेरे लिए, और जो स्टेज पे आर्टिस्ट थे उसमें मुकुल नाग, मिताली, वैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे,
0: बड़े
1: उन्होंने
0: कलाकार।
1: कहा मैं
0: जी
1: काम
0: कहाँ पर
1: किया
0: था, किस हॉल में?
1: वेदा कुंभा थिएटर में,
0: अरे वाह
1: अंधेरी
0: क्या
1: में।
0: बात
1: हाँ
0: है, बहुत सुंदर थिएटर है वो
1: हाँ
0: तो। ये तो बहुत बढ़िया, इसके बाद के लिए बधाई। और तकरीबन 9 भाषाओं में इसका अनुवाद
1: जी,
0: हुआ है
1: 9 भाषाओं में
0: ना,
1: अब तक
0: जिसमें
1: ये
0: मराठी में भी है।
1: प्रकाशित हो चुकी है ये पुस्तकें
0: जी
1: इसकी, और
0: तो
1: कई भाषाओं में अलग अलग, हिंदी में। तो अभी जो अगला प्रस्तुति है, एक तो ये जिन्होंने तैयार किया है, थिंक बिग ग्रुप है, तो मुंबई का, तो ये लोग करने वाले हैं।

0: इस नाटक को। और अभी इलाहाबाद की रंगकर्मी है सुषमा शर्मा जी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी वो भी करने जा रही हैं, 2-3 महीने में वो भी करेंगी। तो अलग अलग ग्रुप, जबलपुर का एक समूह है, तो अलग अलग समूहों द्वारा ये नाटक तैयार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने तो
1: लोई
0: बंद बंद
1: नाम,
0: कब्रे अलोई,
1: लोई नामकरण
0: जो
1: कैसे
0: कबीर की
1: मतलब
0: पत्नी
1: किसी,
0: है उनका नाम है।
1: जी बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ने से पहले एक आपके पसंद का गाना सुनते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
0: तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी
1: जिंदगी
0: धूप
1: तुम घना साया,
0: घना साया।
1: साथ साथ फिल्म की ये गजल है और जगजीत सिंह
0: जी,
1: की आवाज़ है और इसमें कुलदीप सिंह की मौसीकी है।
0: और इसलिए मुझे और भी पसंद है कि कुलदीप सिंह जी ने लोई का पूरा म्यूजिक किया है, लोई के नाटक का।
1: जी क्या बात है, तो
0: हाँ
1: ये बात यहाँ कितनी कनेक्ट हो रही है
0: हाँ
1: इस बात से।

0: साथ साथ फिल्म की इस गजल के बाद प्रताप जी हम जानना चाहते हैं, अभी हाल ही में आपका एक नया कविता संग्रह आया है, उसके बारे में बताइए।
1: ये कविता संग्रह है ए अलिफ आ। ये कविता संग्रह का जो शीर्षक है, ये इसमें एक कविता है मलाला यूसुफ जई के पिता पे।
0: जी,
1: मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि ये जो आपकी सृजन यात्रा है ये कैसे संभव है कवि और पत्रकार के तौर पे। मैंने ट्विटर पे अपने बायो में भी लिखा है कि ये मेरी दो आंखों की तरह है।
0: अच्छा,
1: दोनों आंखें खुली रखता हूँ तो साफ दिखाई पड़ती है, देख एक आंख से भी सकता हूँ लेकिन पूरा परिदृश्य नहीं दिखेगा। तो ये दोनों आंखें एक दूसरे की मदद करती हैं और दोनों आंखें दृश्य को पूरा और सम्यक देखने में सहायता करती हैं। तो जब मलाला को पहली बार गोली लगी और मलाला, तो ये पता चला कि एक लड़की को स्कूल जाने के एवज में उसके लिए गोली मार दी गई, तो फिर मैंने कहा कि भाई उसके पिता माँ पता करो कौन है। बेटी तो बहादुर हो सकती है लेकिन उसके पिता माँ कौन है। तो मैंने पता किया तो उनके पिता थे जियाउद्दीन यूसुफ जई। तो मैंने एक पूरी कविता लिखी, एक ऐसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफ जई, उनसे बात भी की, फोन किया, वो एक कहानी थी है कि मैंने उनसे कैसे बात की, कैसे बातचीत हुई। तो वो किसान थे, कवि थे और वो टीचर थे, तो वो उनकी हम मैंने पूरे उनसे बातचीत करके
0: जी
1: वो पूरी कविता लिखी। तो मैंने फिर एक कविता और लिखी, छोटी सी 3 लाइन की, लिखा कि एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ।
0: क्या बात है, वाह।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह
0: वाह।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह, जीती रहे मेरी बेटी मलाला।
0: वाह।
1: तो ये मलाला के लिए ये कविता। तो वो कविताएं मैंने उसी कविता पे, मेरे इस जो नया कविता संग्रह है उसका शीर्षक बना। और इसमें बहुतेरी कविताएं ऐसी हैं जो किसी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली बात यह कि इसमें एक पत्रकार की कविताई की यात्रा है, तो इसमें 20 से अधिक कविताएं खबरों पे लिखी हुई हैं और खबरों पे पहली बार कविताएं लिखी हुई हैं आपको मिलेंगे, जो न्यूज के अलग अलग डायमेंशन के, कि मैंने 35 साल न्यूज रूम में बिताए हैं, तो मैं 35 साल की जो मेरी यात्रा है उसमें मुझे 20 दृश्य ऐसे मिले जिनको मैंने 20 कविताएं बनाई, तो 20 कविताएं इसमें दर्ज है।
0: क्या बात है, अगर 4 लाइन सुनाना चाहे तो सुनाइए।
1: तो एक कविता है आंसू की खबर।
0: जी सुनाए।
1: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती।
0: क्या बात है।
1: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती है। गिरता है एक आंसू न्यूज रूम में, बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर, जिसे आई है अभी अभी एक कॉल, 3 बच्चे महोबा में उसी जगह जाकर कट गए हैं रेल से जहां उनकी मां ने जान दी थी।
0: वाह वाह, मार्मिक कविता।
1: 3 दिन पहले पूरा न्यूज रूम नम हो जाता है, हर कोई जीने लगता है। 3 दिन, 3 बच्चे, एक माँ, एक खबर।
0: ओह, बहुत ही संवेदनशील कविता है। और अब यहाँ पर हमें लगता है कि एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को।
1: हमेशा उदासी वाले गाने क्यों गाए।
0: हाँ।
1: पान खाएं सैया हमार।
0: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: और ये गाना सुनते हुए पूरा लोक संगीत की छटा बिखेर उठी है, और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की तो बात ही निराली है। तो एक बार चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, और आप चूंकि इलाहाबाद में पढ़े बले हैं तो वहाँ की यादें ताज़ा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ।
1: देखिए,
0: मतलब
1: मैंने तो कई जगह लिखे शेर भी कहा है कि हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: जी
1: हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: क्या बात है,
1: तुझे तो याद हम अक्सर इलाहाबाद करते हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: एक और
0: तो
1: शेर मैंने कहा है कि चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है, औरों में ही अच्छाई का मन ढूंढ रहा है। इसमें जो शेर है इलाहाबाद के हवाले से है कि संगम के इलाके से है पहचान हमारी।

0: संगम के इलाके से है पहचान हमारी, ये मन तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है।
1: क्या बात है,
0: तो आप उसको
1: वाह।
0: ढूंढते हैं और वो दिल्ली में रहें तो वहाँ भी ढूंढते हैं।
1: जी,
0: और मैंने एक शेर कहा, वो इलाहाबाद को याद करते हुए कहा कि कड़ी धूप में छांव बना कर रहते हैं, हम दिल्ली में गांव बना कर रहते हैं।
1: क्या बात है, बहुत
0: तो
1: बढ़िया।
0: हम जो दिल्ली में भी रहते हैं, हमारे अवचेतन मन में और वो इलाहाबाद ही जीता है।
1: जी, बिल्कुल।
0: तो जैसा भारती ने कहा था कि आप जितनी दूर जाएं वो उतना हांट करता है, तो
1: जी
0: ये है कि मैं पहुंच जाता हूं जब
1: जी
0: हांट करता है या उससे पहले ही।
1: जी वैसे तो मन हमेशा अपने उस जगह पर रहता है
0: हाँ,
1: जहां आपका
0: क्योंकि
1: बचपन
0: आपको
1: बीता।
0: लगता है कि शेर मेरा था कि पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है,
1: जी, क्या बात है।
0: पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है, गांव ने मुझसे कहा था सुनो आते रहना।
1: क्या बात है।
0: तो ये जो उधर से भी इसी तरह का प्यार रहता है।
1: बिल्कुल। और एक अटूट रिश्ता होता है। प्रताप जी, ये शहर की बात तो बहुत लंबी है, बहुत सारी यादें होती हैं जहन में। हम जानना चाहते हैं कविताओं के बारे में, कवि बनने की जो प्रक्रिया है आपने वो बताई, कवि से पत्रकारिता की दुनिया में आप कैसे
0: देखिए,
1: पहुंचे?
0: पत्रकारिता मुझे लगता था कि मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि मैं पत्रकारों से ये कहता हूँ, जितने जो लोग जर्नलिज्म करें नहीं करें, या मैं मीडिया स्कूल्स में जाता हूँ, या मैं करीब 20 सालों तक अलग अलग कैंपस में इंटरव्यू करने गया, तो मैं उनको बताता था कि आप इसलिए बनिए कि आपके पास एक मौका है, एक संसार के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अवसर नहीं है सबसे इंटरेक्ट कर सके,
1: जी,
0: किसी के पास ये मौका नहीं, हमारे पास मौका है। मैं हम विविध अनुभव संसार में जाते हैं, वहाँ जीते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करके हम चले आते हैं, और इस काम के आपको पैसे मिलते हैं,
1: बिल्कुल।
0: इस काम से आपकी आजीविका चलती है। तो आपके अनुभव संसार को समृद्ध करने के लिए इससे बेहतरीन कोई पेशा मुझे नहीं लगा।
1: जी, तो यहाँ भी कोई नकारात्मक कहानी है, किसी ने मना किया आपको,
0: नहीं,
1: या
0: वो
1: यहाँ
0: मना किया, हम तो जब
1: सकारात्मक
0: समय में थे कि हम अखबार के दफ्तर में जाते थे तो एक कोई चीफ सब एडिटर बूढ़े से पान खाए हुए बैठे होते थे, तो वो हमको देखते कहते थे कि आओ घर में है खाने वाने का इंतजाम, हाँ तो कुछ और कर लो,
1: जी।
0: हमने क्या कर उखाड़ लिया जो तुम उखाड़ लोगे। तो हम उनको बताए कि हम खा कुछ उखाड़ने नहीं आए हैं,
1: कुछ करने
0: हम
1: आए हैं।
0: लगाने आए हैं,
1: जी, बिल्कुल,
0: हम कुछ
1: क्या बात
0: बोने
1: है।
0: आए हैं, हम कुछ
1: सृजन
0: सृजन
1: करने
0: करने
1: आए
0: आए
1: हैं।
0: हैं।
1: जी।
0: तो हम इस भाव से आए, तो उसने मेरे अनुभव संसार को बहुत, यह मेरी कोई भी किताब संभव नहीं होती अगर मेरी पत्रकारीय दृष्टि नहीं होती मेरे पास, चीजों को देखने का वो फिल्टर नहीं होता मेरे पास। तो
1: नजरिया।
0: अगर वो फिल्टर नहीं होता तो आप कैसे देखते, आपकी आंखों का विजन 6x6 है, थोड़ी दूर तक देख सकते हैं।
1: तो पहली बार किस अखबार में गए, कैसे,
0: पहली
1: क्या
0: बार
1: थी सीढ़ी आपका?
0: हम देखिए, मैं अखबारों में तो जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी, मैं एकदम गांव का लड़का, हमें डर लगता था कि अखबार में कौन आदमी हमें नौकरी देगा। तो मैं शुरू से फ्रीलांस लिखता रहा, लिखते लिखते लिखते लिखते लिखते ऐसा रहा कि फिर अखबारों में, मतलब अपने आप में स्टिंगर हो गया,
1: जी।
0: मैंने खबरें भेजी, खबरें छप गई, तो स्टिंगर से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। फिर मैं माया प्रेस में एक पत्रिका निकली गंगा यमुना,
1: जी,
0: उसमें रविंद्र कालिया जी ने मुझे बुला के रखा, मैं
1: इलाहाबाद के।
0: अकेला ही पीर बावर्ची भिस्ती खर था उनके साथ,
1: जी।
0: तो वो मैंने 3 साल काम किया, तो व्यवस्थित तरीके से मेरी पहली नौकरी उनके साथ थी।
1: जी।
0: फिर उसके बाद मैंने जनसत्ता में मैं रहा, फिर मैंने जो है अमर उजाला में रहा, रिपोर्टर टू एडिटर रहा,
1: जी,
0: फिर मैं दैनिक भास्कर में रहा,
1: क्या
0: न्यूज़
1: बात है।
0: एडिटर रहा, फिर मैं अब हिंदुस्तान में 17 वर्षों से हूँ। तो एक टोटल 35 साल की यात्रा इसी तरह से पूरी की मैंने।
1: जी प्रताप जी, वो जो संपादक की और पत्रकार की एक समय भूमिका होती थी, बहुत ब्रांड होते थे पत्रकार संपादक, बहुत, जैसे आपने भी कहा कि उन्हें खाली देख के लौट आते थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, वो अभी बहुत सब फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन समय बदल गया है। अब वैसा समय नहीं कि आप आजीविका तलाशें उसके साथ साथ पैरल, तो एक इस ओहदे पर हैं कि आपके पास बहुत कुछ ताकत है कर सकें नया कुछ करने के लिए। तो अब देश भर में जो साहित्य उत्सव होते हैं, साहित्य उत्सव को लेकर क्या आप कहेंगे कि उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और क्या नए लोग भी उससे जुड़े?

0: जुटते हैं?
1: देखिए, फायदा तो होता है, उत्सव तो हमारे जीवन का तत्व है कि हम उत्सव धर्मी लोग हैं, इसलिए हम उत्सव करते हैं।
0: जी
1: लेकिन इसमें एक स्थिति है कि ज्यादातर जो साहित्य उत्सव हैं, ये आयोजक के उत्सव होते हैं।
0: जी
1: तो जो आयोजक होता है उसके लिए उत्सव होते हैं, और साहित्य का तो उत्सव ही नहीं होता वो। उसमें सबसे हाशिए पर होता है तो साहित्य होता है,
0: जी
1: क्योंकि उसको सुनने वाला ही कोई नहीं होता वहां।
0: जी
1: तो वो ऑडियंस पे काम नहीं करते कि बच्चों को बुलाएं। हम जब कहीं जाते हैं किसी साहित्य उत्सव में, हम वहां देखते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई उसी शहर में हम विद्यालय के किसी प्राचार्य से मिलते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं इस उत्सव में क्यों नहीं आए, बोले हमारे पास सूचना नहीं थी। तो साहित्य उत्सव में अभी बहुत गुंजाइश है कि वो थोड़ा दो तरफा, रचनाकारों की ओर से तो वो आमंत्रित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, स्पॉन्सर बुला लेते हैं, लेकिन ये उद्देश्य तब पूरा होगा जब वो बाकायदा जो सुनने वाले हैं, जिनको जरूरत है उस साहित्य की, अगर उनको वो ले आए तो फिर वो चीज बनेगी।
0: जी, नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आप बहुत क्या करना चाहते हैं?
1: सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज यही है कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए एक तो ये साहित्य उत्सव जितने हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, दूसरा बहुत सारी चीजें हैं जो आर्काइवल वर्क कंटेंट हमारे पुराने पड़े हुए हैं। हमको हर समय ये कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे समय में कुछ नहीं लिखा गया या नए लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ बेहतर रचा जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: या बहुत बेहतर रचा गया है। बेहतर आपके सामने नहीं आया तो इसका मतलब समय खराब नहीं है, आपका दायरा खराब है, आपकी समझ पे सवाल है। लेकिन तो जरूरत यह है कि अब इतने वैरायटी के वर्सटाइल तरीके के माध्यम आ गए हैं, हम उन सब माध्यमों को जोड़ के नई नई चीजें रखें, जो हमारी पुरानी चीजें हैं आर्काइवल वैल्यूज की, उनको उठा के रखें और ये चीजें रखें, और ताकि उस पर एक भरोसा हो जो नया व्यक्ति है कि हाँ हमें कुछ बेहतर काम रच रहे हैं। मेरे मन में आया तो इसी से आया ना कि एक जो लीगेसी थी, वो लीगेसी मेरे पास थी ना, मुझे किसी ने बताया तो नहीं, तो वो लीगेसी मैंने अनुभव की, शायद वो अनुभव देने में हम अगली पीढ़ी को नाकाम हो रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो वो अनुभव अगर हमको ये उम्मीद कर रही है कि नई पीढ़ी साहित्य से जुड़े, तो वो अनुभव हमको उसको देना होगा जो अनुभव मेरे पास बचपन में था, जो अनुभव व्यक्तियों के हवाले से था, जो अनुभव उनके साहित्य के हवाले से था, वो अनुभव हमें देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अब साहित्य माने लेखकों का अपना साहित्य हो गया है, कविता माने मेरी कविता हो गई
0: जी,
1: है,
0: जी, जी।
1: कविता माने कविता नहीं रही
0: जी, जी।
1: तो अगर कविता माने आपकी कविता है, हाँ। तो वो फिर प्रचार की कविता है। ये उसी तरह है जैसे कोई मैं बच्चों से प्यार करता हूँ और अपने बच्चे से प्यार करे।
0: जी, तो प्रचार से हमें जहन में आया, बहुत संक्षेप में बताइए कि सोशल मीडिया ने लेखन पर क्या प्रभाव डाला है, रचनात्मकता?
1: बहुत अच्छा प्रभाव डाला है, बहुत चीजें, बहुत लोगों के पास अवसर के दरवाजे खोले हैं। अब ये है कि उस अवसर को आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपने खिड़की खोल दी है और अगर आपने जाली नहीं लगाई तो खटमल मच्छर सब आएंगे।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो आप वो जाली लगा दीजिए, बड़ी सुंदर सुंदर हवा आएगी, आपको ताजगी भी देगी और वातावरण को शुद्ध भी करेगी, तो इस तरह से जो साहित्य का पर्यावरण है वो भी सही होगा।
0: जी, जो हमारी युवा पीढ़ी है पत्रकारिता की दुनिया में आना चाहती है, तो उसके लिए कुछ दो लाइन में संदेश दीजिए।
1: उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, दो लाइन की भी जरूरत नहीं है। एक लाइन ये है कि आप ज्ञान के निवेश के धंधे में हैं, तो आपका जो ब्रेन का एटीएम है ये खाली नहीं रहना चाहिए, वरना जब आप इसमें कार्ड डालेंगे तो इनसफिशियंट बैलेंस आएगा। तो आप उसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, एनरिच करिए, वैरायटी वर्सटाइल चीजें आप जानिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप एक बेहतर पत्रकार क्या, बेहतर मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रताप सोमवंशी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी जानकारी वाली बातें और इतनी अच्छी बातें आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से।
1: बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, जिसमें आपने सुनी जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुषी गुप्ता, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: धन्य जवान।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। रात आती है तो साथ लाती है ख्वाबों का जहां, साथ लाती है ढेर सारी यादें। यादों में एक अनोखी दुनिया होती है, जिंदगी की पुरानी तस्वीरें होती हैं यादों में। यादों की चौखट पर बैठ हम बतियाते हैं रात।

एक रात मुराद पूरी होने की रात, एक मुराद चांद पर पहुंचने की, एक मुराद चांद को देखने की। चांद और रात ये एक दूसरे के हमसफर हैं। एक रात यादों की रात, यादों में मोहब्बत के चिराग जलाए, गम के मध्यम आंच पर जज्बात पिघले, ख्यालों में उनका मुस्कुराना और फिर उदास हो जाना, यादों में सितारों को हथेली पर रोपना और मुस्कुरा देना। इन दिनों दिल इन्हीं में रहता है मसरूफ़।

गम का साया दिल के किसी कोने में पुराने सामान की तरह रखा था, पर उन्होंने एहसास दिलाया कि जिंदगी गमों के टूटे फूटे टुकड़ों से भी सजी होती है। गम के एहसास के बाद खुशी दोगुनी हो जाती है। एकाकीपन के साये में होता है साथ का एहसास। उन्होंने याद दिलाया, जिंदगी मोहब्बत से सजती है।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। ये दिल को क्या हुआ, अपने काबू में न रहा, औचक दिल में बातों का सागर भर गया, औचक आंखें खोई खोई सी रहने लगी, बिना बात होठों पर मुस्कुराहट तिरने लगी, आंखें बिना काजल कजरारी लगने लगी। ये शायद किसी के आने की चाप है जिसने दिल का मौसम बदल दिया,

वक्त के धारे मोड़ दिए उन्होंने, उगते सूरज की लाली ने चेहरे को रंगीन बना दिया और दिल को हसीन। भली सी सूरत, भला सा नाम, दिल की धड़कन बन गए, निगाहों से वे दिल में समा गए। उनके हुस्न का जादू आंखों में तिराया, उन्होंने दिल से करार किया और मासूम दिल उनकी मोहब्बत के गिरफ्त में आ गया।

उनके आने से पौधों में अंकुर फूटे, खिले कलियां मुस्कुरा उठी, फूलों में ताजगी आ गई, बारिश की बूंदों से सज उठी धरती। उनके आने से आसमान में जैसे किसी ने नीला रंग छिड़क दिया हो। खुशनसीब दिल को एहसास हुआ कि उसे प्यार हो गया है। सारी कायनात जब खूबसूरत लगने लगे तो समझो कि उसे प्यार है किसी से।

एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
3: तो आज
2: अजीत जी जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों न बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
3: जी। विमलेश जी हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
3: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
3: जी। बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
3: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
2: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
3: तो क्या हुआ फिर?
2: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी अब आप आगे बताइए ना।
3: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
2: जी।
3: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
2: जी।
3: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे

0: रहने में थोड़ी मदद की,
1: जी
0: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
1: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
0: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
1: जी।
0: है। फिर क्या होता है विमलेश?
1: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है, ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
0: वाह वाह जी।
1: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
0: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
1: जी।
0: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
1: जी।
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
1: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है,
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
1: जी।
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है, जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना

0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
1: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर यह अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी, लक्ष्मी,
2: वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
1: अरे,
2: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
1: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर, चोट मत खा जाना।
2: अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
1: हाँ?
2: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
1: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
2: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
1: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
2: अच्छा।
1: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने

0: एक झील का रूप ले लिया। ओह, तो ये पेड़ वो ही पेड़ हैं जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
1: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
0: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो, हम उनसे पूछते हैं। वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ, चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ, कहिए।
1: जी, मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी,
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए, 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह।

0: ये जगह उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
1: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
2: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
3: जी।
1: अच्छा,
2: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है।
1: ओ।
2: ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
3: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
2: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
1: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
2: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
3: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
1: अच्छा।
3: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
1: अच्छा।

0: 待。
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
2: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
3: यही रेस्ट हाउस में।
2: रेस्ट हाउस में
3: जी?
2: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए, कल मिलते हैं। ओके
2: ओके,
1: बाय
2: बाय।
1: ओके,

अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
3: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ तो सुनीता जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
3: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल की रहने वाली
0: हैं। क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
2: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
3: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुँचती है।
3: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
3: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
3: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
3: अच्छा।
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
3: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
2: हाँ ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी, वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
3: अच्छा।
2: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
2: हाँ।

चिंता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलडी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगलपुझा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
1: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
2: ओ, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने की मुहिम में लगे हुए हैं।
2: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
1: तो करो ना सुनीता।
2: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: श्रोताओं, आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी खंडवा से प्रसारित हो रहे हैं, और अब प्रसारित होगा कार्यक्रम युववाणी।

0: हाजिर हूँ हमारा आज का क्रम जो कि है यूथ चॉइस। लेकिन हम बड़े हमारे क्रम की ओर हमेशा की तरह ही जान लेते हैं सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है वो ये है कि रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की मंजूरी दी है। और आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो ये है कि इस देश ने अपने शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे कार्यक्रम के अंत में। सुनते रहिए कार्यक्रम युववाणी। दोस्तों, आज की चर्चा के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन की। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अलग अलग संस्कृतियां, भाषाएं, परंपराएं और विचारधाराएं होने के बावजूद हम सभी एक साझा मानव परिवार का हिस्सा हैं। जब लोग एक दूसरे को समझने और सम्मान देने का प्रयास करते हैं तब संवाद का मार्ग खुलता है और यही संवाद शांति, सहयोग तथा विकास की नींव बनाता है। आज के समय में जब दुनिया पहले से अधिक जुड़ी हुई है, सभ्यताओं के बीच संवाद की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। संवाद हमें मतभेदों को समझने, गलत फहमियों को दूर करने और आपसी विश्वास को मजबूत करने का अवसर देता है। यह हमें सिखाता है कि विविधता को स्वीकार करना और उसका सम्मान करना एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। युवा पीढ़ी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। शिक्षा, तकनीक और सामाजिक मंचों के माध्यम से वे विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से जुड़कर समझ और सहयोग का संदेश फैला सकते हैं। दोस्तों, सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद दिवस पर विशेषज्ञ राजदीप सिंह तोमर से हिमांशु दुबे की बातचीत। अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद दिवस की इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ राजदीप सिंह तोमर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर, मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने विचार साझा करने का अवसर देने के लिए आपका आभार।
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद दिवस क्या है और इसका उद्देश्य क्या है।
1: जी सर, यह दिवस दुनिया की विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों और परंपराओं के बीच आपसी समझ, सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह संदेश देना है कि विविधता को स्वीकार करते हुए संवाद के माध्यम से शांति और सद्भाव स्थापित किया जा सकता है।
0: तो सर, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि आज के दौर में इस तरह के संवाद की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है।
1: सर, आज दुनिया तकनीक के माध्यम से बहुत करीब आ गई है, लेकिन कई बार संस्कृति और सामाजिक मतभेद भी सामने आते रहते हैं। संवाद इन्हीं मतभेदों को समझने और दूर करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। जब लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं और समझते हैं तो विश्वास और सहयोग की भावना और मजबूत होती है।
0: क्या आप मानते हैं कि संवाद समाज में शांति और विकास का आधार बन सकता है?
1: बिल्कुल, इतिहास गवाह है सर कि जहाँ संवाद हुआ है वहाँ समस्याओं का समाधान अधिक सकारात्मक तरीके से निकला है। संवाद संघर्ष को कम करता है, सहिष्णुता को बढ़ाता है और समाज को विकास की दिशा में आगे बढ़ाता है।
0: तो बताइए कि आज की हमारी युवा पीढ़ी क्या योगदान दे सकती है?
1: युवा सबसे बड़ी शक्ति है। वे शिक्षा, सोशल मीडिया और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों, समुदायों के लोगों से जुड़ सकते हैं। सम्मानजनक संवाद और सकारात्मक सोच के जरिए एक समावेशी समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सर,
0: बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने साझा की। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: सर, श्रोताओं को मेरा संदेश यही है कि हम सभी भिन्नताओं समान का सम्मान करें, एक दूसरे की बातें सुने और संवाद को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाए। जब संवाद बढ़ेगा तब समझ बढ़ेगी और जब समझ बढ़ेगी तब शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद दिवस हमें यही सीख देता है विविधता में एकता, संवाद में समाधान छिपा है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं के बीच संवाद दिवस पर विशेषज्ञ राजदीप सिंह तोमर से हिमांशु दुबे की बातचीत। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के क्रम की ओर और हमारा आज का क्रम है यूथ चॉइस। इस क्रम में हम सुनवाते हैं आपको वही गाने जो आज के युवाओं की पहली पसंद है। आपके संदेश, आपकी फरमाइशें और आपके पसंदीदा ट्रैक्स, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले गाने से। गीत के लिए जो हमें पहला पत्र मिला है वो मिला है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया का। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म नमस्ते लंदन से ये गीत, जिसे गाया है कृष्णा बरुआ और राहत फतेह अली खान ने। इसके

दोस्तों, अगला पत्र हमें मिला है कवर कॉलोनी से। अगला पत्र हमें मिला है कवर कॉलोनी बड़वाहा से, जिसे भेजा है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य श्रीमाली, अदिति श्रीमाली एंड शिवानी श्रीमाली ने। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म पाप से ये गीत, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान ने। इसे लिखा है अमजद इस्लाम ने। संगीत है शाही का। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये गीत।

दोस्तों, अगला पत्र हमें मिला है बुलढाणा महाराष्ट्र से, नारायण बाहू खड़ से, रक्षा ताई खड़ से, ललिता संजना, गणेश कार्तिके खड़ से, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और कुमारी देविका चौधरी का। और साथ ही इसी गाने को सुनना चाहा है बहरामपुर टेमा से डॉक्टर तिलोकचंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, समर राज आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा और अंजलि श्वेता वर्मा ने। और इसी के साथ इस गीत की फरमाइश आई है फेज फरदासी से, यादव मोहल्ले से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार का। इन्होंने सुनना चाहा है इस खूबसूरत गीत को।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म 1940 लव स्टोरी से कुमार शानू की आवाज़ में जावेद अख्तर का लिखा हुआ और आरडी वर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत। अगला पत्र हमें मिला है वंदना नगर एयरपोर्ट रोड से। पूजा, बविता, शोभा, रेखा रघुवंशी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, परी, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक, नारायण भाऊ खर्चे का, और इसी गीत को सुनना चाहा है रतनपुर तहसील झिरनिया से भागीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष नायक, रविंद्र नायक, शिवानी, अश्वनी, हर्षराज, अरविंद्र, आदित्य, गुनगुन व पूरे परिवार ने। और साथ ही इस गीत की फरमाइश आई है छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। तो चलिए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका उत्तर है इसराइल ने। दोस्तों आप हमें पत्र भेज सकते हैं, हमारे पते आकाशवाणी इस विलायंस खंडवा पर, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है youthchoice.air@gmail.com। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपके रेडियो दोस्त हिमांशु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हंगामा का ये गीत, जिसे गाया था शान और साधना सरगम ने। इसे लिखा था समीर ने और संगीत था नदीम श्रवण का। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न पूछे थे। आइए जान लेते हैं उन प्रश्नों के उत्तर को। आज का जो हमारा सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न था वो ये था कि रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की मंजूरी दी है। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। और साथियों, आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न था वो ये था कि किस देश ने अपने शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा

श्रोताओ, आपने सुना युववाणी कार्यक्रम FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी खंडवा। अब प्रस्तुत है फिल्म संकेत।

हम सुन रहे हैं फिल्म डुप्लीकेट का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। ये जावेद अख्तर का गीत है, संगीत अनु मलिक का।

0: जी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
1: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
0: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
2: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
3: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हम बने हैं साथी निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा की। ट्यून कीजिए एफएम बैंड 101.2 MHz या डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा निमाड़ की सुरीली धड़कन।

और प्रोग्राम की आखिरी पेशकश हम सुनेंगे, ये महबूब का गीत है, इस्माइल दरबार का संगीत, कविता कृष्णमूर्ति के साथ, मोहम्मद सलमान की आवाज़, फिल्म हम दिल दे चुके सनम।

0: ये आकाशवाणी खंडवा है, शाम के 7 बजने को हैं। आइए दिल्ली से सुनते हैं हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों के निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,300

0: 98 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। यह बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इसी बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक गलियारे शामिल हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक हफ्ते से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक के 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। यह प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। ICC ने डॉक्टर सिंह को बताया कि वह अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को सुगम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पश्चिम बंगाल में आशावाद और सकारात्मक ऊर्जा का नया दौर चल रहा है। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं।
3: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
5: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो

0: बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण।

0: तो फिर सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन।
1: मेरी आश की अब तुम ही हो।
2: सात सुरों की सरगम
3: सापा मगा मगा रे गरे सानी सानी रे गसा।
2: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
4: बड़े अच्छे लगते हैं
5: क्या
4: ये धरती ये नदिया ये रैना।
2: आकाशवाणी खंडवा सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन।

0: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
1: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
0: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
1: क्यों?
0: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
1: वो कैसे?
0: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
1: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
0: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
1: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
0: आप कब आ रहे हैं?
1: आकाशवाणी खंडवा पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: श्रोताओ, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से FM 101.2 MHz पर। शाम के 7:10 हुए हैं। आइए भोपाल केंद्र से सुने प्रादेशिक समाचार।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने श्री मोदी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर गुफा मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, दीर्घायु की कामना की। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। और ब्रिक्स प्रतिनिधियों ने आज इंदौर के ग्रामीण हाट का भ्रमण किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आज उनके कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो गए हैं, जिससे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस ऐतिहासिक मौके पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। शाम को श्री मोदी ने भारत मंडपम में भाजपा एनडीए शासित 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जहां सभी नेताओं ने उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह जनता के उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल के लालघाटी स्थित गुफा मंदिर पहुंचे और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ व प्रार्थना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजन अर्चन कर भगवान हनुमान से प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई पहचान बना रहा है। वहीं प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने श्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि
1: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं और निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतना लंबा कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किया। उन्होंने इस देश में विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाया। उन्होंने समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया और केवल यही नहीं, उन्होंने इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, हिंदुस्तान के मान और सम्मान को बढ़ाया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में लगातार इस देश का नेतृत्व करते रहे, इसी कामना के साथ आज इस कार्यक्रम का हमने आयोजन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बार बैठक का विषय विकसित भारत एट 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। बैठक में समावेशी मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों मानव पूंजी, रोजगार, स्वास्थ्य एवं पोषण और सभी के लिए समानता पर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल विचार विमर्श करेंगे। इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने आज ग्रामीण हाट का भ्रमण किया। विदेशी मेहमानों ने प्रदेश के कृषि उत्पादों, हस्तशिल्प और एक जिला एक उत्पाद योजनाओं के तहत प्रदर्शित उत्पादों में रुचि दिखाई। रीवा के जीआई टैग प्राप्त सुंदरजा आम और अन्य किस्मों का स्वाद लेकर प्रतिनिधियों ने उनकी गुणवत्ता की सराहना की। मंडला की मिलेट क्वीन लहरीबाई के दुर्लभ बीज संग्रह ने भी विदेशी प्रतिनिधियों को आकर्षित किया। मृगनैनी, प्रकृत शिल्क, हेम्प क्लोदिंग के स्टॉलों पर प्रदर्शित पारंपरिक एवं पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की भी मेहमानों ने प्रशंसा की। प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, सचिन पायलट और भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन हलफनामे में कथित अनियमितताओं के आधार पर कल खारिज कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देशभर में सुरक्षित मातृत्व के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन 10 वर्षों में रतलाम जिले में हजारों गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व प्राप्त हुआ है। पेश है हमारी संवाददाता अदिति मिश्रा की एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित प्रसव पूर्ण जांच और सुरक्षित मातृत्व देने का अभियान रतलाम जिले में भी 10 साल पूरा कर चुका है। अब तक हजारों माताओं और नवजातों को इस योजना से नवजीवन मिला है। रतलाम के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 100% प्रसव पूर्ण जाँच का लक्ष्य सफलतापूर्ण हासिल भी किया जा रहा है।

0: विशेषकर आदिवासी अंचल में समय रहते उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनके कार्ड पर लाल स्टिकर भी लगाए जा रहे हैं। इसके तहत प्रसव के 45 दिन बाद तक निरंतर फॉलोअप और महीने की 9, 8 और 27 तारीख को महिलाओं को लैब टेस्ट पूरी तरह निःशुल्क हो रहा है। इसका नतीजा यह है कि पिछले 5 सालों में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में अच्छी कमी आई है। आकाशवाणी समाचार के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। इस खास मौके पर पेश है एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी कुल सचिवों और प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाने के प्रावधान को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। ये नियम साल 2001 में लागू हुआ था जिसके तहत 2 से ज्यादा संतान होने पर सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों में अयोग्य माना जाता था। वहीं प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत सचिवों के तबादले को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत कोई भी पंचायत सचिव अपने गृह ग्राम या ससुराल की पंचायत में नहीं रह सकेगा। जिस पंचायत में सचिव का रिश्तेदार सरपंच या उपसरपंच बन जाएगा वहां से भी तबादला अनिवार्य होगा। वहीं 10 साल या उससे अधिक समय से एक ही पंचायत में जमे सचिवों को प्राथमिकता से स्थानांतरित किया जाएगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिसंबर 2023 से अब तक 5 करोड़ 39 लाख से अधिक हितग्राहियों को 74 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा मुफ्त अनाज बांटा जा चुका है। ये जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दी है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों के बीच मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। एक तरफ खजुराहो में जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के 18 जिलों में आंधी बारिश हुई है और जबलपुर तथा दमोह में ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने आज बागेश्वर धाम पहुंचकर भाजपा विधायक अरविंद पटेरिया के साथ पूजा अर्चना एवं कन्या पूजन किया। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत शहडोल जिले में जैन मंदिर से प्राप्त प्राचीन अभिलेखों और पांडुलिपियों के पंजीयन का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। मंदसौर में 132.67 करोड़ रुपए की लागत से 1,000 कैदियों की क्षमता वाली आधुनिक जिला जेल के निर्माण को अंतिम स्वीकृति मिल गई है। समान नागरिक संहिता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक कल खंडवा में आयोजित की जाएगी। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना परिसर में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत 50 ग्राम कोटवारों को पुलिस की कार्यप्रणाली, शांति व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। और कटनी में छात्रों की सुरक्षा एवं बारिश को ध्यान में रखते हुए जिले की जर्जर एवं मरम्मत योग्य 82 शालाओं का कायाकल्प किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने श्री मोदी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर गुफा मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, दीर्घायु की कामना की। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और ब्रिक्स प्रतिनिधियों ने आज इंदौर के ग्रामीण हाट का भ्रमण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

FM बैंड 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहनों का आपकी बहन तरुणा शुक्ला की राम राम। भाई बहनों, हर साल आज का दिन यानी कि 10 जून का विश्व नेत्रदान दिवस मनावन। नेत्रदान एक महादान छे जो किसी जरूरतमंद व्यक्ति का अंधेरा जीवन में उजालो भरी सके। भाई बहनों, आँख ईश्वर को दिए अनमोल उपहार छे। आँख न सिर्फ हम अपना परिवार, खेत खलिहान का, प्रकृति का, इना सुंदर संसार का देखी सकें, पढ़ी लिखी न योग्य बनी न ऊंचा से ऊंचा पद पर काम करी सकें, खेल का साथ साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ी सकें, अपना सपना का साकार करी सकें। लेकिन हमारा समाज में ऐसा कुछ लोग भी छे जो आँख की रोशनी नहीं होने का कारण दुनिया का नहीं देख पाता। ऐसा लोग नकालीन नेत्रदान आशा की एक नई किरण बनी सके। गांव न में आज भी नेत्रदान का बारे में लोग न में भ्रम रहे। कुछ लोग सोचे कि नेत्रदान करने से शरीर का नुकसान पहुंचेगा या धार्मिक दृष्टि से नेत्रदान करना सही नहीं है, लेकिन ये सब गलत छे। सच्चाई तो ये छे कि मानव सेवा सबसे बड़ो धर्म छे। नेत्रदान तो एक पुण्य को काम छे जिकासी किसी व्यक्ति का नयो जीवन मिले, ओका जीवन में खुशहाली आवत। नेत्रदान हमेशा मृत्यु का बात करी जाए तो एकासी मृत व्यक्ति का ही नुकसान होएगा। मृत्यु का कुछ घंटा का भीतर डॉक्टर केवल आँख का पारदर्शी भाग यानी कि कॉर्निया का सुरक्षित निकाले। एका निकालने से मृत व्यक्ति का चेहरा की आकृति में भी कोई बदलाव नहीं आतो, न अंतिम संस्कार भी सामान्य रूप से हम करी सकें। भाई बहनों, जिना तरह से हम अपना खेत में बीज बोई ना अन्न न फल पैदा कराए, न वो फसल आवज तो हमारा जीवन में खुशहाली लावज, वसी हम नेत्रदान करी न किसी व्यक्ति का जीवन में रोशनी को भी डाली सकें। हमारा यो निर्णय किसी का अंधेरा जीवन में उजालो न खुशी लाई सके। तो भाई बहनों, आज विश्व नेत्रदान दिवस का अवसर पर हम सब का जागरूक बनो, अपना परिवार, अपना गाँव का दूसरा लोग न कभी नेत्रदान का महत्व का बारे में बताऊ। हमका खुद कभी नेत्रदान करना चाहिए न उनका भी नेत्रदान करने का लेन प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का बाद यदि हमारी आँख न किसी व्यक्ति की दुनिया रोशन करी सके तो एकासी बड़ी मानव सेवा न बड़ो धर्म काई हो सके। भाई बहनों, आगे और बातचीत करेंगे, पहले आओ सुनी लेवाई संदेश।

0: का टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: पर्वनोट, जलवायु परिवर्तन का कारण मौसम अनियमितता आने से खेती में कभी कभी भारी नुकसान भी उठाने पड़े। अधिक नुकसान से बचने का लेन वैज्ञानिक कृषि विविधीकरण अपनाने की सलाह दे। कृषि विविधीकरण पर

0: का टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: पावनोल जलवायु परिवर्तन का कारण मौसम अनियमितता आने से खेती में कभी कभी भारी नुकसान भी उठाना पड़े। अधिक नुकसान से बचने का लेन वैज्ञानिक कृषि विविधीकरण अपनाने की सलाह देज। कृषि विविधीकरण पर हम बातचीत करांगा। आप पहला आपका आज को हम सामान्य ज्ञान को प्रश्न बता देवन। आज को सामान्य ज्ञान को प्रश्न छे कि फास्फोरस की कमी से फसल का काई नुकसान हुए। प्रश्न एक बार सुन लियो, फास्फोरस की कमी से फसल का काई नुकसान हुए। इना प्रश्न को उत्तर हमेशा की तरह हम बतावांगा कार्यक्रम का अंत में। भाई-बहनों, हम बात कर ही रहा था कृषि विविधीकरण की कि वैज्ञानिक जो छे वो जलवायु परिवर्तन का कारण न मौसम अनियमितता का कारण जो नुकसान हो ओकासी बचाव का लेन कृषि विविधीकरण की सलाह दे। कृषि विविधीकरण को मतलब छे कि हमका केवल एक फसल पर निर्भर नहीं रहनु चाहिए बल्कि अपनी खेती में अलग अलग यानी कि विविध प्रकार की फसल न दूसरा साथज में खेती से जुड़ेल जो धंधा छे जैसा या काम छे पशुपालन डेयरी नर्सरी बागवानी औषधि फसल ने की खेती करनु ये सब हमका करनु चाहिए। हम देखें कि किसान भाई पूरा खेत में केवल एक एक फसल लगावे यदि मौसम खराब हो जाए कीट रोग लगी जाए या बाजार में भाव कम मिले तो किसान ने फिर भारी नुकसान उठाना पड़े क्योंकि पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाए या पूरी फसल की कीमत हमका कम मिले। एकालेन किसान भाई ना का पूरा खेत में केवल एक फसल न लगाता हुआ कुछ क्षेत्र में दूसरी फसल भी लगानी चाहिए जैसा कि आपने मुख्य फसल का साथ साथ सब्जी नफलदार पौधा मसाला या दलहनी फसल भी आप लगाई सको। एक अलावा पशुपालन दुग्ध उत्पादन बकरी पालन मुर्गी पालन मधुमक्खी पालन या मछली पालन भी करी सको। एकासी आय का एक से अधिक स्रोत बनी जाएगा न यदि किसी तरह को नुकसान हो तो दूसरों व्यवसाय या दूसरी फसल से उसकी भरपाई हो सकेगा। कृषि विविधीकरण को एक फायदा यो छे कि मिट्टी को स्वास्थ्य भी अच्छो बनेल रहे। बार बार एक एक फसल लगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्व की कमी हुई जाए जबकि अलग अलग फसल लेने से मिट्टी को संतुलन बनेल रहे साथ ही कीट न रोग न को प्रकोप भी कम हो। आज का समय में बहुत सा किसान भाई अपनी फसल न को मूल्य संवर्धन करी न अच्छी कमाई करी रहा अपनो स्टार्टअप शुरू करी रहा जैसा कि दूध से पनीर घी बनाऊनू फल न सी जेम अचार बनाऊनू या अनाज की पैकिंग करी न देनु मसाला न की पाउडर बनाई न बेचनू एक ऐसे उत्पाद को मूल्य बढ़ जाए न किसान भाई न का अधिक लाभ मिले। तो भाई बहनों जलवायु परिवर्तन की समस्या बाजार की परिस्थिति का देखते हुआ आज कृषि विविधीकरण की बहुत ज़्यादा जरूरत है। छोटा क्षेत्र से शुरुआत करनू अपनी परिस्थिति का अनुसार नई फसल नई गतिविधि न का खेती का साथ जोड़नू ताकि धीरे धीरे आय को स्रोत बढ़ सके। तो भाई बहनों जितनी विविधा होएगा खेती उतनी सुरक्षित रहेगा न उतनी मजबूत होएगी हमारा किसान भाई ने की आर्थिक स्थिति। अब आपका इंतजार होएगा निमाड़ी लोकगीत को तो आओ सुना मांगी लाल डांगोरे ने साथी न को गायल यो निमाड़ी लोकगीत।

0: भाई बहन अभी अपन सुन ही रहा था मांगी लाल डांगोरे नसाथी नको गायल यो निमाड़ी लोकगीत। आओ सुना भेंट वार्ता जेको विषय छे पत्ता गोभी की उन्नत खेती। इना विषय पर जानकारी दे राज ग्राम सिरसूद का प्रगतिशील कृषक संजय पाटीदार जी। तो आओ सुना भेंट वार्ता पत्ता गोभी की उन्नत खेती।
1: किसान भाइयों नमस्कार। हमारे निमाड़ क्षेत्र में खाद्यान्न फसलों के साथ साथ कुछ किसान भाई उद्यानिकी फसलें भी लगाते हैं और उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत सब्जियां भी आती है। तो पत्ता गोभी की उन्नत खेती विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए आज हमारे साथ फोन पर जुड़े हैं ग्राम सिरसोद तहसील खंडवा के प्रगतिशील कृषक संजय पाटीदार जी। संजय पाटीदार जी नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: पाटीदार जी आप कितने वर्षों से खेती कर रहे हैं?
2: जी मैं तो 20-25 वर्ष हो गए।
1: तो आप कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं?
2: जी हमारे टमाटर भी लगता है, पत्ता गोभी है, भिंडी है, कद्दू है, बैंगन है।
1: यानी आप सब्जियों की ही खेती करते हैं?
2: जी हमारे पूरे गांव में मुख्य रूप से सब्जियों भी की जाती है।
1: जी तो ये सब्जियां कब कब लगाई जाती हैं?
2: ये सब्जियां जैसे किसी के पास पानी है, किसी किसान के पास गर्मी में, तो जून में बो देते हैं या फिर जुलाई में, मतलब बारिश के बाद सभी किसान सब्जियां लगाते हैं।
1: जी उसके बाद क्या ठंड में भी सब्जियां लगाई जाती हैं?
2: हाँ जी ठंड में भी लगाई जाती है, पत्ता गोभी लगा सकते हैं ठंड में, टमाटर लग जाता है ठंड में, भिंडी की तो होती है।
1: जी पत्ता गोभी की खेती करने के लिए उपयुक्त समय कौन सा होता है?
2: पत्ता गोभी का तो ऐसा है कि हम लोग बारिश में लगा सकते हैं, वो भी अच्छा समय होता है और फिर ठंड के लिए भी।
1: हाँ।
2: और बारिश के लिए जो पत्ता गोभी लगाते हैं तो वो लगभग 5 जून को हम उसका बीज डालते हैं।
1: जी।
2: तो ये लगभग 1 महीने में आ जाता है, तो 5 जुलाई तक इसको फिर बारिश हो जाती है या फिर खेतों में हमारे पास पानी है कुएं से तो पानी चलाते हैं और इसको लगाते हैं।
1: जी हाँ। और ये कितने महीने की फसल होती है? जैसे बारिश में आपने लगाई तो कितने महीनों बाद उसकी फसल हमें मिलने लग
2: जैसे
1: जाती?
2: बारिश में हमने 5 जुलाई को लगाई तो ये लगभग 20 से 25 अगस्त को इसकी कटाई स्टार्ट होगी, 1.5 महीने बाद इसकी कटाई, 1.5-2 महीने में।
1: जी हाँ। आपने जैसे बारिश में लगाई पत्ता गोभी तो उसमें प्रति एकड़ लागत कितनी लगती है हमें और उत्पादन कितना मिल जाता है?
2: प्रति एकड़ लागत यदि पत्ता गोभी की देखें, यदि अच्छा मौसम है, मतलब कीटनाशक का स्प्रे कम लगेगा, तो ये 25,000 रुपये एकड़ की लागत लग जाती है।
1: जी और ये बारिश के समय में जो पत्ता गोभी हम लगाते हैं और फिर ठंड में जब हम लगाएंगे तो दोनों में लागत समान ही लगती है?
2: नहीं, यदि ठंड में हम पत्ता गोभी लगाते हैं तो उसकी लागत कम हो जाती है, क्योंकि ठंड में क्या होता है कि स्प्रे कम होता है, इल्ली का प्रकोप कम रहता है, मच्छर कम रहते हैं।
1: जी।
2: तो फिर उसमें आपका पेस्टिसाइड का उपयोग कम होता है तो फिर लागत कम हो जाती है।
1: जी और उत्पादन भी दोनों का अलग अलग होता है?
2: हाँ ठंड का उत्पादन ज्यादा होता है क्योंकि एक जो केबेज पत्ता गोभी का है उसका वजन ज्यादा आता है।
1: जी पत्ता गोभी की खेती के लिए कैसी मिट्टी उपयुक्त होती है?
2: वैसे तो जो हल्की भूरी मिट्टी हो
1: जी।
2: फिर एक पांढर मिट्टी कही जाती है, जो पहले कच्चे मकान बनते थे ना मिट्टी से, वो वाली मिट्टी, ये दोनों मिट्टियाँ बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है।
1: जी पाटीदार जी अभी बारिश में जो पत्ता गोभी आपने लगाई है उसमें कौन से कृषि कार्य किए जा रहे हैं?
2: अभी तो कटाई चालू हो गई है पत्ता गोभी की। जी
1: और ठंड की पत्ता गोभी जब हम लगाएंगे उसके लिए उपयुक्त समय कौन सा होगा?
2: आज हम लोग बीज डाल सकते हैं, तो ये वाला जो बीज डलेगा तो ये 15 से 16 दिन या 18 दिन में लगाने को आ जाएगी, क्योंकि जल्दी ग्रोथ हो जाती ठंड में। तो आज बीज डाल दिया तो समझ लीजिए कि आप अक्टूबर में 10 तारीख तक लग जाएगा।
1: जी और फिर ये कितने महीने की फसल?
2: ये वही जैसे बीज डाला फिर वो हमने रोपा पौधे को, तो ये आपको 1 से 1.5 महीने में कटाई चालू होगी।
1: 1.5 से 1.5 महीने में कटाई होगी।
2: जी
1: और इसके लिए खेत की तैयारी कैसे करते हैं?
2: खेत की तैयारी जैसे कि अभी हमारे खेत में कद्दू लगा हुआ था, तो उसको कद्दू निकल गया, अब उसमें कल्टीवेटर कर दिया है, पूरा खेत तैयार कर दिया, फिर इसकी बेल की जोड़ी से या फिर ट्रैक्टर से हम लोग वो नालियां बना देंगे।
1: जी
2: फिर उसके दोनों तरफ पत्ता गोभी लग जाती है।
1: जी हाँ। तो इसमें कतार से कतार की दूरी, पौधे की दूरी कितनी?

0: सकते हैं आप।
1: पौधे से पौधे की दूरी तो लगभग ये 4-5 इंच होता है, और कतार से कतार भी 6 इंच बस।
0: जी हाँ, तो जब खेत में आप बीज डालते हैं तो उस
1: जी
0: समय भी खाद उर्वरक वगैरह कुछ डालते हैं आप?
1: हाँ जी, गोबर का खाद डालते हैं। यदि किसी किसान भाई के पास गोबर का खाद नहीं होता है तो ये 12-32-16 डाल देते हैं, या
0: जी
1: फिर जो भी जैविक किसी के पास मिल जाता है तो लोग डाल देते हैं और उसके बाद वो लगा देते हैं।
0: तो ये खाद उर्वरक की और गोबर खाद की इनकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए?
1: गोबर खाद की मात्रा का तो ऐसा है कि गोबर खाद जितना ज्यादा डालेगा तो इसमें सड़न की शिकायत कम मिलेगी, फंगस की शिकायत कम मिलेगी, क्योंकि जो रासायनिक खाद होता है इससे क्या आजकल बीमारियां आ रही है।
0: जी
1: बाकी
0: हाँ,
1: अब एक एक दो एक बोरी पोटाश डाल दो, एक बोरी डीएपी डाल दो, एक बोरी यूरिया डाल दो, ये डल जाता है लगाने के बाद।
0: जी हाँ। लगाने के बाद में सिंचाई कब कब की जाती है, कितने दिनों के अंतराल से?
1: वो तो फिर 3-4 दिन के बाद उसकी सिंचाई करते रहते हैं, चौथे दिन। और बारिश में तो पानी आता रहता है तो फिर उसकी सिंचाई नहीं करते। यदि यदि 6-7 दिन बारिश नहीं हुई तो फिर सिंचाई कर देते हैं।
0: और ठंड में सिंचाई कितनी बार की जाती है?
1: ठंड में सिंचाई तो जैसी ठंड रहती है उस हिसाब से 8 दिन में, 10 दिन में।
0: जी हाँ,
1: जी
0: और किस पद्धति से सिंचाई इसमें करनी चाहिए?
1: इसमें तो पानी डायरेक्ट ही चलाते हैं, लांगी से ही पानी चलाते हैं।
0: जी
1: यदि कम पानी है किसी किसान भाई के पास तो वो ड्रिप से भी चला देते हैं।
0: जी हाँ। पाटीदार जी, आपने जैसे बताया कि बेसल डोज डाला जाता है जब बीज डालते हैं उस समय, गोबर खाद और खाद उर्वरक डालते हैं,
1: जी, इसके
0: इसके बाद कितने समय के बाद फिर से खाद उर्वरक की जरूरत होती है?
1: बाद जब वो फल तैयार होने पे आता है कि अब उसको मतलब बंदे को कसना है तो कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं 1 महीने के बाद,
0: जी, कितनी मात्रा डालते हैं इसकी?
1: 1 एकड़ में 25 किलो। जी
0: कैल्शियम नाइट्रेट 1 एकड़ में 25 किलो,
1: एक
0: इन्हें बीज लगाने के 1 महीने बाद जब फल
1: महीने
0: बनने
1: बाद,
0: लगता है तब?
1: एक से सवा महीने, हाँ, जब उसका वो बंदा बनने फूल बनने लगता है तब।
0: जी, और देखिए, सबसे अधिक नुकसान फसलों को होता है कीटों के प्रकोप से और रोगों से, तो
1: जी,
0: पत्ता गोभी में किन कीटों का प्रकोप ज्यादातर होता है?
1: पत्ता गोभी में इल्लियां आती, ब्लैक कलर की एक इल्ली आएगी, एक हरे कलर की इल्ली आएगी, जो स्टार्टिंग में ही यदि वो बैठ जाती तो वो फिर पूरे जो आपका फल बनने वाला है तो उसको ही खा जाती।
0: जी, तो इनके नियंत्रण के लिए आप कौन सी दवा का उपयोग करते हैं?
1: इनके नियंत्रण के लिए इवामेक्टिन डाल देते हैं, प्रोफेनोसाइपर रहता है वो डालते हैं।
0: जी
1: फिर यदि ज्यादा ही प्रकोप है तो फिर और जितना ज्यादा हाई टेक्निकल मिल जाए
0: जी जी
1: तो इसके साथ एक गैस पॉइजनिंग वाली दवाई डालते हैं, जैसे साइपरमेथिन डाल दिया,
0: जी
1: इनसे कंट्रोल करते हैं।
0: हाँ, ये तो आपने कीटों के बारे में बताया, रोग
1: जी,
0: कौन कौन से होते हैं पत्ता गोभी में?
1: पत्ता गोभी में एक रोग ज्यादा देखने को आता है, सड़न वाला, जो नीचे से ही उसमें पत्तों में सड़न लग जाती है और वहीं के वहीं पूरा वो सड़ जाता है।
0: जी
1: तो
0: जी
1: उसके लिए मैंकोजेब जैसे फंगीसाइड तो डाल देते हैं, और फिर कॉपर सल्फेट डालते हैं,
0: जी हाँ,
1: एजोक्सोस्ट्रोबिन जैसा कोई सा फंगीसाइड। यदि कंट्रोल नहीं हो रहा है मैंकोजेबिन से तो एजोक्सोस्ट्रोबिन एक फंगीसाइड आता है, टेबुकोनाजॉल
0: जी हाँ,
1: और एजोक्सोस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन, उसका स्प्रे कर देते हैं।
0: जी हाँ। पाटीदार जी, ये तो आपने कीटों रोगों के बारे में बताया, बिक्री की क्या व्यवस्था होती है?
1: बिक्री की एक व्यवस्था तो या तो हमारे यहाँ के किसान इंदौर ले जाते हैं,
0: जी
1: इंदौर और खंडवा, यहाँ पे वैसे कमी जाती है, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ ये है कि बाहर के व्यापारी हमारे यहाँ खरीदने यहीं पे आते हैं,
0: जी
1: तो हमारे यहाँ से डायरेक्ट खेत से माल ले जाते हैं और तुलाई हो जाती है और पैसा भी हमारे घर पे यहीं पे दे जाते हैं।
0: जी हाँ, यानी पत्ता गोभी की खेती यदि आप करते हैं तो किसी भी तरह की बिक्री की कोई समस्या ही नहीं आती, आसानी से बिक्री हो जाती है?
1: हाँ, हमारे गांव से होती, मिर्ची की हुई, टमाटर की हुई, सारी सब्जी भाजी की यहीं से हो जाती।
0: जी हाँ, पाटीदार जी, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके अलावा आप हमारे किसान भाइयों को और क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: मैं किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहूंगा कि हम खेती कर रहे हैं और सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो हमें अब ये रोगों से बचने के लिए प्राथमिकता से हमें गोबर के खाद पे ध्यान देना चाहिए, और केचुआ खाद का उपयोग करेंगे तो हमारे यहाँ कम रोग आएंगे, कम से कम पेस्टिसाइड का भी उपयोग होगा ताकि फिर वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हो। तो मेरी तो यही किसान भाइयों को सलाह है कि
0: जी
1: ज्यादा से ज्यादा हम पशुपालन पर ध्यान दें और गोबर के खाद का उपयोग करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितना रासायनिक खादों का उपयोग हम खेती के अंदर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जमीन हार्ड होती जा रही है,
0: जी
1: और जो अभी जो रोग भी हो रहे हैं तो उसी वजह से हो रहे हैं, जितना हम रासायनिक उपयोग कर रहे हैं तो कहीं हम ये फिक्स नहीं हो पाता कि कितना जमीन में नाइट्रोजन गया, कितना फास्फोरस गया, और उसकी अत्यधिक मात्रा की वजह से ये फंगस और ये बीमारियां आ रही है।
0: तो अच्छी बात है पाटीदार
1: जी
0: जी, वास्तव में क्योंकि हमारी मृदा की

0: उपजाऊ क्षमता तो कम हो ही रही है, साथ ही ये रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक जो है ये हमारे पर्यावरण को भी दूषित कर रहे हैं, हमारे जल स्रोत भी दूषित हो रहे हैं और फसलों की पौष्टिकता भी कम होती जा रही है।
1: कम होती जा रही है
0: जी हाँ बिल्कुल। संजय पाटीदार जी, आपने पत्ता गोभी की उन्नत खेती विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
1: जी, नमस्कार जी, धन्यवाद।
2: भाई बहनों, अभी अपन सुनी रहा था भेंटवार्ता, जिको विषय थो पत्ता गोभी की उन्नत खेती। इना विषय पर जानकारी दे रहा था ग्राम सिरसुत का प्रगतिशील कृषक संजय पाटीदार जी। भाई बहनों, आओ सुना एक निमाड़ी लोकगीत, जेखा गायो मेवा राम नायक न साथी नंद।

भाईपनहोड़ अभ्यपन मेवा राम नायक नशा थी नको गायल निमाड़ी लोकगीत सुनियो। अमो बारी छे आज का समाचार के। खंडवा जिला में खरीफ सीजन का मद्देनजर कृषि विभाग बिजली विभाग ने बीज निगम की एक समीक्षा बैठक हुई। एमं किसान भाई ने का गुणवत्तापूर्ण बीज न पक्का बिल उपलब्ध कराने पर जोर दियो गयो, ताकि फसल खराब होने की स्थिति में किसान उचित शिकायत दर्ज कराड़ी सके। कपास पर मंडी शुल्क 1 रुपया से घटे न 50 पैसा प्रति सैकड़ा करी दियो, जिगासी खंडवा सहित पूरा निमाड़ क्षेत्र का किसान भाई नख न जीनिंग फैक्ट्री संचालक नख बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। ये था आज का समाचार। न अव कृषि उपज मंडी खंडवा से मिली जानकारी का अनुसार अनाज मंडी में उपज नका भाव ही रहा। सोयाबीन न्यूनतम भाव 3000 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 7335 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं को न्यूनतम भाव 2003 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 2471 रुपया प्रति क्विंटल। चना को न्यूनतम भाव 5125 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव रहो 5773 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का को न्यूनतम भाव 1850 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1973 रुपया प्रति क्विंटल। तुअर को न्यूनतम भाव 5201 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 7090 रुपया प्रति क्विंटल। ज्वार को भाव रहो 2127 रुपया से 2140 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग को भाव 5901 रुपया से 7311 रुपया प्रति क्विंटल। डॉलर चना को भाव रहो 6125 रुपया से 7400 रुपया प्रति क्विंटल। लोकवन गेहूं को न्यूनतम भाव 2587 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम भाव 2699 रुपया प्रति क्विंटल। ये थी मंडी भाव की जानकारी। न अम मौसम की जानकारी। आज सूर्योदय सुबह 5:40 पर हुयो न सूर्यास्त शाम 7:07 पर हुयो। आज का दिन को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहो न रात को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ये तो मंडी भाव और मौसम की जानकारी। आओ सुनी लेवा एक निमाड़ी लोकगीत जेख गायोत स्नेहलता भटोरेन।

अभी आप सुन रहे थे खेती गृहस्थी कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अगला कार्यक्रम भोपाल से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: इस संदेश के पहले चित्रलोक कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अक्सर फिल्म का गीत, हिमेश रेशमिया की आवाज थी, समीर के बोल थे और हिमेश रेशमिया का संगीत था। और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद

0: मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वह आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही। और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर, सही स्थान पर, सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडो

0: राइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

तो बदन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। शकील बदायनी का लिखा गीत था और रवि का संगीत था। विविध भारती से समय सुन रहे हैं आप, आपके लिए कार्यक्रम।

आपके लिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लव इन टोक्यो। फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज थी, हसरत जयपुरी की रचना शंकर जयकिशन की तर्ज। अब आपको सुनवा रहे हैं कन्यादान फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की तर्ज है।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता जीवन पर।
1: मेरी शक्ल सूरत तो आप जानते हैं, एन गैन सी है। कद्रदानों ने मुझे बना दिया विलान, बैड बॉय, खराब आदमी।
2: मैंने सुना है बाबू की कमी भी पूरी कर दी उस आदमी ने जिसका नाम जॉनी है।
3: जॉनी से जलते हो? वो तो तुम्हारा अपना आदमी है।
2: जॉनी मेरा आदमी नहीं है, जॉनी तुम्हारा आदमी है। मैंने राय के बराबर भरोसा किया था उस पर, तुमने पहाड़ के बराबर भरोसा कर लिया। मैंने राय के बराबर धोखा खाया था, तुमने पहाड़ के बराबर धोखा खा लिया। जॉनी खुफिया पुलिस का आदमी है। क्या तकते हो? जॉनी उसका एक नाम है जुगल किशोर, दूसरा उस्मान अली, तीसरा ऐसे चौथा पांचवा छठा नाम भी है उसका। वो हर नए काम के लिए एक नया नाम रख लेता है। और उसका वो बाप जो तुम्हारे आदमी को धोखा देने के लिए कभी कभी जोशी बन बैठता है, वो उसका बाप नहीं है, वो पुलिस वाला है जो हवालात के बाहर मेरा पहरा दिया करता था। जॉनी का हवालात तोड़कर भागना पुलिस की एक चाल थी, जिसमें मैं तो आ गया लेकिन तुम भी आ गए। तुम जो हम सबको बेवकूफ समझते हो और अपने आप को तीस मार खा।
1: नारायण नारायण कल्याण हो। जिस तरह नारायण नारायण कहते हुए आज मैं आपकी सेवा में आ पहुंचा हूं।
0: आज के इस कार्यक्रम में जीवन साहब के कुछ संवाद सुनवाए जाएंगे।
1: ये मैं खाना है, जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है।
0: सुनवाई जाएंगी जीवन साहब की बातें और उन फिल्मों के नगमे जिनमें जीवन साहब ने अभिनय किया। हालांकि इनमें से ज्यादातर गाने जीवन साहब पर नहीं फिल्माए गए।
4: मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती।
0: दोस्तों सन 1967 में जीवन साहब विविध भारती के स्टूडियो में तशरीफ लाए थे। नफीस सवान, जिंदा दिल शख्सियत, बातें ऐसी कि दिल जीत लें। उनके पास थे कभी ना खत्म होने वाले किस्से। हमें गर्व है कि इस बेशकीमती आवाज को आज तक हमने संभाल कर रखा है।
1: मुझे याद है कॉलेज में छुट्टियों के दिन थे, बंबई नगरी देखने का विचार हो गया और सोचा कि फोटोग्राफी में थोड़ी सी और महारत पा जाऊं ताकि अगले बरस बीए पास करने के बाद कश्मीर में एक फोटो स्टूडियो चलाने में जरा और आसानी हो जाए। आया तो था कैमरे के पीछे खड़ा होकर काम करने और पहुंच गया कैमरे के सामने। मतलब ये है कि फोटोग्राफर तो ना बन पाया, एक्टर जरूर बन गया। ये कैसे हुआ मैं मुख्तसरन आपको सुनाता हूँ। बम्बई में मेरे बड़े भाई मरहूम डार कश्मीरी साहब रहा करते थे। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त और मेरे मोहतरम डीएन मधोक साहब से कहकर मुझे एक फिल्म कंपनी में फोटोग्राफी में और तजुर्बा हासिल करने की खातिर लगवा दिया। नई भाषा, नए नए लोग, स्टूडियो की हैरत अंगेज एटमोसफियर, भाई मैं तो बुखला जैसा गया। दूसरी तरफ फोटोग्राफी का तजुर्बा जो मैं हासिल करना चाहता था, मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई खाला जी का घर नहीं। उस स्टूडियो में दाखिल होने के 1.5 महीने बाद, जब मेरे कॉलेज की छुट्टियों में सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए, आखिरकार मुझे एक इम्पोर्टेंट काम मिल ही गया।

0: ख्याल रहे इस बात का कि मैं अभी तक फोटोग्राफी सीखना तो दरकनार, कैमरे को हाथ भी नहीं लगा सका था। हाँ, तो वो इंपॉर्टेंट काम था प्लाईवुड के दो रिफ्लेक्टरों पर सिल्वर पेपर लगाकर उन्हें साए में सुखाना। कंपनी के कंपाउंड में एक घना सा आम का पेड़ हुआ करता था। वहां पहले से ही एक नई तैयार की जाने वाली फिल्म की टीम जमी हुई थी। सब के सब नए थे, बिल्कुल रंगरूट। मैंने सुन रखा था कि यूपी पंजाब के लड़के हैं और थोड़े ही दिनों पहले भर्ती हुए हैं। दो या चार लड़कियां भी थीं। सब लड़के पृथ्वीराज या इंडियन डॉगलेस मास्टर विट्ठल, और लड़कियां बनना चाहती थी दुर्गा खोटे या कम से कम उमा शशि। वाह रे जमाने। कहानी या किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी। मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। डायरेक्टर मोहन सिन्हा नए लड़कों को डायलॉग बुलवा रहे थे बारी बारी, तो पता चला कि रमेश नाम का रोल करने वाला लड़का आया ही नहीं। डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। वाह क्या समय था। किस्मत की राइफल मेरे भविष्य को बुलाइट टारगेट बना रही थी और मैं कह रहा था अजी मुझे एक्टिंग से क्या सरोकार, मैं तो टेक्निकल साइड का आदमी हूं। उधर भविष्य सुधारने के लिए डॉक्टर मोहन सिन्हा जिद किए जा रहे थे। खैर, मैंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में शेक्सपियर के ड्रामे पढ़े हुए थे। इसके अलावा कॉलेज में बहुत से फंक्शनों के मौके पर जनाब आगा हशर और पंडित बेताब के खेल भी स्टेज पर करने में मैं हिस्सा ले चुका था। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बेताब जी की महाभारत में दुर्योधन चौसर में पांडवों को जीतकर कहता है ना, क्या कहता है, बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। रंग जमता हुआ देखकर मैंने नाटक को जारी रखते और आवाज को पुरदर्द बनाकर आगा आशर साहब का नेक परवीन में से एक शेर कह डाला, वो है, अरे बेनवा उठ अपने शहीद अदा को देख, ओ बादशाह हुस्न भला हो गदा को देख, मेरी तमाम ख्वाहिशें दुनिया को छोड़कर अब सामने खड़ी है तेरे हाथ जोड़कर। ये कहते कहते मेरी दाई आंख जो सब हाजरीन को दिखाई दे रही थी जनाब, उससे तो मूसलाधार आंसू बह रहे थे क्योंकि रिफ्लेक्टरों की रोशनी अब काफी तेज हो चुकी थी। खत्म होते ही एक सन्नाटा सा छा गया और फिर वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे, बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। कहो दोस्तों, है ना किस्मत का खेल, मैं एक्टर बना दिया गया। फिल्म थी फैशनेबल इंडिया 1936 की बेहतरीन तस्वीर। ये होता है विधि का लेख और भगवान की माया।
1: चंगेज खान के शेर दिल सिपाहियों, आसमान की मुकद्दस रूहों ने चंगेज खान को मंगल कौम में पैदा किया। आज हम तुम्हें हिदायत देते हैं कि जिस तरह आज तक तुम चंगेज खान के वफादार रहे हो, इस मुतबर्रक कला की कसम खाकर उसी तरह हमेशा वफादार रहने का इकरार करो, ताकि हम चंगेज को दुनिया का फातिहा देखें, तुम्हारे शम्मन की आरज़ू पूरी हो।
2: अपने फिल्मी करियर में जीवन ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। नायकों की पीढ़ियां भले बदलती गईं, पर जीवन की खलनायकी का मौसम कभी नहीं बदला।
0: दस्त तो दस्त थे, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, अपने जमाने के अफलातून मास्टर शिराज और चंद्राव कदम के साथ विलन, पृथ्वीराज के डॉक्टर दीपक में जेलर और जयराज के स्वामी में याकूब भाई की कंजूस मक्की चूस बाप के बुढ़े रोल मैं उसी जमाने में कर चुका हूँ। प्रेम अदीप, भारत भूषण, मियां नजीर, वास्ती, पहाड़ी सान्याल, बेमिसाल गीता बाली, मधुबाला सुरैया, लाजवाब नरगिस, मेरे नारद के भगवान त्रिलोक कपूर और माता पार्वती निरूपा राय के दौर से गुजरकर जतेंद्र और राजेश खन्ना के साथ भी कुछ इसी तरह के कारदार कर रहा हूँ।
2: हम आपको बता दें कि ये रिकॉर्डिंग सन 1967 में विविध भारती के स्टूडियो में की गई थी।
0: नई हीरो ने मुमताज, शर्मिला टैगोर, बबीता के साथ भी वही हरकतें करना पड़ती हैं जो आज से पहले मिस बिब्बो खुर्शीद शांता आप्टे के मुकाबले में कर चुका हूं। सेट पर शरबत को शराब समझकर पीने एक ही कोशिश के बाद मैं जब तनुजा को अपनी तरफ घसीटता हूं तो

0: वो मुझे बदमाश कमीना वगैरह वगैरह कहते हुए जरा हिचकचा सी गई। डायरेक्टर ने बारहा कहा, मिस तनुजा गालियां जरा फोर्स के साथ दीजिए और ये भूल जाइए कि आपके सामने जीवन साहब खड़े हैं। मैंने कहा, भाई देखो कुछ भूलो या ना भूलो लेकिन अपनी मम्मी शोभना जी को याद कर लो। वो मुझे आज से 25 साल पहले ये सब खिताब अता फरमा चुकी हैं, भाई तब ना कुछ बिगड़ा था और अब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा।
1: मेरी बेटी कहां है मेरी बेटी?
2: बदतमीज, जूता खराब कर दिया, साफ करो।
1: मेरी बेटी कहां है?
2: बैठे, कौन सा बेटे?
1: उस राज्य से तुम उठाकर ले गए थे।
2: हमें कुछ याद नहीं।
1: याद करो, प्लीज याद करो।
2: ये लो, पहचाना इसी कन्नी को? ये वही कन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था।
1: माफ कर दो मुझे, मुझ पर रहम खाओ।
2: रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया हूँ और तुम मेरे कदमों में।
1: मुझे सिर्फ इतना बतला दो, मेरी बेटी कहाँ है?
2: मैंने तेरी बेटी को अपनी औलाद सर समझा, उसे पढ़ने के लिए वलायत भेजा और वो इसी हफ्ते वापस आ रही है।
1: मुझे एक बार उससे मिलने दो प्लीज।
2: मेरी तरह तू भी अपनी औलाद को देखने के लिए सारी उम्र तड़पता रहेगा।
0: गुलशन परस्त हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूँ मैं। दिलीप कुमार से लेकर जॉनी वॉकर, सुनील दत्त से लेकर राजेंद्र नाथ और राजेंद्र कुमार से लेकर महमूद तक मैंने सबसे तलवारें लड़ाई और उनका फिल्मी बाप बनकर उनके दिलों में मोहब्बत के फूल भी खिलवाने की कोशिश की। इस बापबाजी के चक्कर में हीरो हीरोइन कॉमेडियन यहाँ तक के मैंने विलन लोगों को भी नहीं छोड़ा। फिल्म स्वामी में मरहूम याकूब भाई और एक फिल्म पंजाबी फिल्म थी छई, छई में मिस्टर पुराण भी मुझसे ना बच सके। जमाने की रफ्तार को मीटर से नापते हुए मैं एक मिसाल पेश करता हूं, जरा सुनिए। आजमूदा और अपने टाइप की बेहतरीन एक्ट्रेस ललिता पवार के मुकाबले में मैंने 1937 में फिल्म राजकुमारी में विलन महामंत्री, सन 42 में फिल्म मामा जी में मैं उनका मामू, 55 में एस एम यूसुफ की फिल्म में ललिता बाई का नहायती नालायक और बेहुदा किस्म का बेटा, और फिर 65 में फिल्म फूल और पत्थर में मैं अंदर और माल बाहर वही खामिन ललिता बाई का है? और फिर 67 में हाल ही में तैयार की जाने वाली फिल्म आबरू में फिर ललिता बाई का क्या बना? छोटा भाई अफ्रीका रिटर्न दरवाजा लाल। इसी तरह की फिल्मी रिश्तेदारी मेरी और फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ भी है। मैं शर्मिला टैगोर का किसी फिल्म में बाप बना था, कौन सी पिक्चर थी, याद आया, सावन की घटा। लीजिए सावन की घटा फिल्म का एक गाना सुनिए।

0: जीवन की फिल्म यात्रा के दो पहलू हैं, एक खलनायकी वाला और एक नारद की भूमिका वाला। न जाने कितनी फिल्मों में जीवन नारायण नारायण करते रहे। जमाना अगर नारद मुनि का कोई रूप जानता है तो वो है जीवन साहब की तस्वीर।
1: क्या जौक है, क्या शौक है, 100 मर्तबा देखा फिर भी ये कहूँ जलवाए जाना नहीं देखा। मैंने भी बहुत स्वांग भरे हैं, फिल्म लाइन में आया तो ओकेदार था, चला

तो जीवन बन गया। और फिर कुछ ऐसी ऐसी हरकतें की कि किस्मत ने प्रोड्यूसरों के जरिए मुझे नारद ही बना दिया। कोई 35 फिल्मों में मैंने नारद का काम किया। नारद झगड़ा लगाने वाला नहीं, झगड़े को मिटाने वाला होता है। चोर से ये कहना चोरी कर, और चौकीदार से कहना हे भाई होशियार रहना, बताइए ये कोई बुरी बात है? चलिए, मुझे इस बात का संतोष जरूर है कि मैंने नारायण की रट इतनी बार लगाई है, करोड़ों कानों में इतनी बार नारायण शब्द का रस टपकाया है कि भगवान मुझे नरक में भेजने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकते। मगर यह ख्याल जरूर आता है कि मेरे बाकी यार दोस्त तो वही होंगे, मैं उनके बगैर स्वर्ग में बड़ा ही अकेलापन महसूस करने लग जाऊंगा। मैं अच्छा देखिए, हटाइए इन बातों को, भगवान शंकर की बारात निकली है, मैं नारद बना हुआ हूं, आइए आप भी मेरे साथ बारातियों में शामिल हो जाइए, और वही किराए की आवाज के साथ आवाज मिलाकर ये गाना गाइए।

0: ऐसे भी रोल मैंने किए हैं जिनमें विलन ही कॉमेडियन होता। सोचिए कितना मुश्किल काम है कि एक तरफ तो आदमी अपनी हरकतों से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करवाए और दूसरी तरफ अपनी बातों से उन्हें हंसाए। मजा तो ये है कि ये बेजोड़ मेल मैंने ही फिल्म मेला से शुरू किया है। मतलब ये कि रोटी भी मैं खोल लूं, दरवाजा भी मैं पकाऊं।
1: ना मालूम कौन सी चक्की का घी खाता है, दो ही हाथ मैनेजर पंजे ढीले कर दिए। कम वक्त देसी मैन जंगली
2: हाथी हाथ जरा करारा पड़ा है भैया।
1: अरे कलवा, जान पड़ता है मेरे फौज में जाने के बाद ये मोहन गांव का बड़ा चौधरी बन बैठा है।
2: और देखो ये गांव में तुहार ये छेड़छाड़ नहीं चली।
1: अरे चब बे जंगली वाला कहीं का, चल एक दो डोल पानी दुला, नहाओ के दशहरे के उत्सव में चलेंगे रे।
2: वो उत्सव में हमारे वाली परी भी आएगी या ये नहाना धोना, अरे ये साबुन की घिसाई कहीं सब बेकार तो नहीं जाएगी?
1: नहीं नहीं, नहीं मगर कौन सी परी भैया?
2: धुत,
1: अरे वही बसंती।
2: अच्छा ओ तुहार मार छुट्टिया।
1: अरे वो नहीं आएगी तो हम लाएंगे। हम
0: सौ जान से हो जाऊंगा राजी में सजा पर, पहले वो मुझे अपना गुनाहगार तो कर लें। मैं ऐसा मानता हूं कि इंसान के हक में नेकी और बदी करने की बात पहले से ही निश्चित होती है और वो इसी के अनुसार अपनी जिंदगी में चलता रहता है। इसी असूल के तहत ज्यादातर विलन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने बदी वाले हिस्से को कैमरे के सामने खर्च कर लेते हैं, बाकी नेकी ज्यादा बच जाती है रोजमर्रा जिंदगी के लिए। जरा सोचिए, फिल्म का खूबसूरत नौजवान हीरो शहर की सड़कों पर या गांव की गलियों में या खेतों में रफी साहब, मुकेश या महेंद्र कपूर की किराए की आवाज से आवाज मिलाकर आसपास से गुजरती हुई जवान लड़कियों से छेड़खानी करता है, मगर जब बेचारा विलन फिल्म की हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है और उससे बाकायदा शादी करके उसे अपनी बीवी या घर की मालकिन बनाना चाहता है तो आप सब उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात हुई ना, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दुनिया

0: तन बदन जल गया।
1: मेरे कमाल को हरगिज कोई जवाल नहीं, कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं। फिल्म लाइन के 30-32 साल के अरसे में मैंने अब्दुल रहीम सैंडो से पहलवानी, लच्छू महाराज से डांस, उस्ताद लताफत हुसैन से गाना और श्री राम बाबू से वायलन सीखने के शागिर्दी के गंडे बंधवाए, मगर ये शौक शौक ही बनकर रह गया। मैं किसी भी असूल का पाबंद ना हो सका और ना शायद हो सकूंगा। शायद बाज दफे नौकरों ने ही कह दिया हो कि साहब कह रहे हैं, साहब घर में नहीं आए। खैर, बारी बारी सब उस्ताद मुझे छोड़ गए। लोगों ने अगर बॉर्न आर्टिस्ट कहकर लपेट ना लिया होता तो मैं इस वक्त शायद कश्मीर में किसी फटीचर किस्म के फोटो स्टूडियो में मक्खियां मार रहा होता, या लोग मुझे मार रहे होते, कहते हयो ये कैसी फोटो बनाई, सूरत ही नहीं पहचानी जाती है।
2: लेकिन कारखाने वालों से तुम्हें क्या मतलब?
3: अरे मतलब समझो तो बड़ा है, बस्ती एक, बस्ती वालों के दिल एक।
2: ठीक है, लेकिन वो लोग कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते?
3: दूसरा काम क्या करेंगे बाबू, अपनी बस्ती में तो खेतीबाड़ी भी नहीं होती।
2: हाँ हाँ, लेकिन बाहर शहर में जाके काम कर लें।
3: तो तुम देश वालों को प्रदेश भेजना चाहते हो बाबू? कुंदन बाबू, अपनी गली तो कुत्ता भी छोड़ के नहीं जाता।
2: मगर काम के लिए तो मैं भी शहर छोड़कर यहाँ आ गया हूँ।
4: आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है?
5: जीवन मूलतः कश्मीर के रहने वाले थे और वे कश्मीर को कभी भूल भी नहीं पाए।
1: कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था। मैं कश्मीरी पंडित बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। महाराज अमर सिंह के राज में मेरे पिताजी वजीर वजारत के ओहदे पर तैनात थे और गिलगित के गवर्नर भी रह चुके थे। शायद कोई कह दे पिदरम सुल्तान बुद, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद बुजुर्ग बार बहुत समझदार किस्म के आदमी थे, बहुत ज्ञानी थे, और आदमी के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ ही देखिए, मुझे सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी भाषा आती है, मगर फिर भी मैंने पंजाबी, भोजपुरी और गुजराती फिल्मों में काम किया।
6: यार हमारी बात सुनो,

0: आज के कार्यक्रम में आपका ये दोस्त एक बात जोर देकर कहना चाहता है, और वो ये कि दुनिया की याददाश्त बहुत छोटी होती है, और फिल्म संसार में जितनी चर्चा नायक को मिलती है या नायिकाओं को भी मिलती है, उतनी उनके सहकर्मी कलाकारों को नहीं मिलती। पर जीवन अभिनय का वो शीर्ष हैं, वो बुलंदी हैं, जिनकी याद आपके मन में भले अब तक धुंधली पड़ चुकी हो, लेकिन ये कार्यक्रम उन यादों को फिर से ताजा कर देगा और सम्मान से आपका सिर झुक जाएगा।
1: दोस्तों, बात बाहर ना जाए, मैं और मुझ जैसे बहुत से एक्टर और भी हैं जो स्टार नहीं, स्टार से आजकल मतलब है कि जिनको मिन्नत खुशामद से प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में काम करने को राजी करता है और फिर उस बेचारे की गाड़ी चलती है। हम हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, यानी मुख्तसर जबान में CA। और भी सलीस हो जाइए, सी से बंबई की बोली में हुआ कांदा, कांदा यानी प्याज, और ए से हुआ आलू। ये दोनों तरकारियां हर मौसम में मिलती हैं, रसोई घर में और खाने की टेबल पर इनका होना बहुत जरूरी है, और इनका भाव भी कभी 10 नए पैसे इधर और कभी 5 नए पैसे उधर से ज्यादा नहीं होता। हम कैरेक्टर आर्टिस्ट रसदार मौसमी आम, यह खुशबूदार खरपूसे नहीं कि 20 रुपए दर्जन से गिरकर 1 रुपए के 20-20 बिकने लग जाएं। कहने का मतलब क्या है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ इतनी है भाइयों कि बात बाहर ना जाए, वरना
2: अरे तो

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता जीवन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन रमेश गोखले, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर।
1: आज के फनकार।

0: सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं जैसे यूं लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आदत भी नहीं, रूह का एक हिस्सा बन जाता है। तब
1: भूल गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ।

मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा, वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।

0: मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे। फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर शरारती अंदाज में कुछ कह जाते हो, कुछ कह जाते हो।
1: ए, आओ ना, दिल है बेकरार।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर कोई थोड़ा सा भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्ही ने तो कहा था बस एक को 100 तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को, कभी किसी तरह।

उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, अहा, एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राणवायु है ये तो। उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है और कभी कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है। प्रेम की वो गर्माहट, वो तपिश, आह कितना सुख।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं। सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25

0: करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिनचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, "The people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress." He said, "For the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace." He said, "The lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right."
3: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time. Earlier, the NDA today adopted a resolution lauding Prime